सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सवेरे के सुहाना मौसम में रुवाबानी ध्वनि के सुरीली धड़कन रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर। आश्रोता लोग रुवा तो पता ही बा कि अभी वक्त हो गई बा राउर आपन कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल के, जॉन की लेके आवेली राउर रेडियो दोस्त दीपाली। तो सबसे पहले स्वीकार करी हमार स्नेह भरल नमस्कार। चली अब हम अपना घरेलू नुस्खा के पोटली से निकाली कुछ नुस्खा। दोस्त लोग सबसे पहले जानल जाई सेहत खाती आसान घरेलू नुस्खा। हिचकी आवे पर अगर लगातार हिचकी आ रहल होके तो दोनों कान में उंगली डाल के सांस के थोड़ा देर खाती रोक ली, हिचकी आवल एकदम बंद हो जाई। खांसी आवत होके तो 2 से 3 चुटकी फूलल होकर सुहागा शहद में मिला के बच्चा के चटाई, ऐसे बच्चा के खांसी से छुटकारा मिल जाए। मुंह में छाला पड़े पर टमाटर के रस में पानी मिला के कुल्ला करे से जीभ या मुंह के छाला ठीक हो जाए। रक्त प्रदर में सफेद जीरा और मिश्री समान मात्रा में मिला के रोज सुबह शाम 2 से 3 ग्राम ताजा पानी के साथ सेवन करे से रक्त प्रदर में आराम मिलेला। सुरीला आवाज खातिर 1 कटोरी पानी में 1 मुट्ठी गेहूं के चोकर उबाल के छान ली। ई पानी के गुनगुना होके पर चाय की तरह चुस्की से दिन में 2 बार पी, ऐसा 2 से 3 दिन करे पे आवाज में फर्क नजर आवे लगी। दाग धब्बा पड़े पे 2 चम्मच ब्रांडी में पुदीना के चटनी मिला के चेहरा पर लगावे से दाग धब्बा दूर हो जाला। कब्ज होके पे आधा ग्लास पानी में आधा ग्लास दूध मिला के 10 ग्राम अमलतास के गुद्दा डाल के उबाली, आधा रह जाए पर उतार ली, सोते समय एके पी जाए, इसे पुराना से पुराना कब्ज दूर हो जाए। तो दोस्तों चली अब जानल जाओ एसिडिटी के घरेलू इलाज। अम्लपीत रोग में मुलेठी के चूर्ण या काढ़ा बना के पिए से ई काढ़ा रोग के नष्ट करेला। नीम के छाल के चूर्ण पानी में रात में भिंगा के रखी, छाल के पानी छान के पियल ई रोग के शांत करेला। अम्लपीत यानी एसिडिटी रोग में मरीज के तरल पदार्थ देवे के चाहिए। ए तरह त्रिफला के प्रयोग या दूध के साथ गुलकंद के प्रयोग या दूध में मुनाका उबाल के सेवन करे के चाहिए। मानसिक तनाव कम करे खातिर योग आसन एवं औषध के प्रयोग करें। पीत रोगी के मिश्री, आंवला, गुलकंद, मुनाका आदि मधुर द्रव्य के प्रयोग करे के चाहिए। बथुआ, चौलाई, लौकी, करेला, धनिया, अनार, केला आदि साग व सब्जी के प्रयोग करी। दूध के प्रयोग नियमित रूप से करी। अधिक मिर्च मसाला वाला खाद्य पदार्थ, मछली, मांसाहार, मदिरा पान, गरिष्ठ भोजन, गर्म चाय कॉफी, दही एवं छाछ के प्रयोग, साथ ही तुअर दाल एवं उड़द दाल के प्रयोग कदापि ना करे के चाहिए अम्लपीत रोगी के। रोगी के समय रहते चिकित्सा ना करवाए या रोग के अनदेखा करे पर रोग अल्सर के रूप धारण करेला। आयुर्वेद में अम्लपीत के दूर करे खातिर अनेक औषधि बा, अपना चिकित्सक से सलाह लेके एकर सेवन करी। तो दोस्त लोग ई तरह ला एसिडिटी के घरेलू इलाज। आप चले जानल जाओ छोटा छोटा बीमारी के घरेलू इलाज। गैस होके पर पीसल सौंठ में स्वादानुसार नमक मिला के गर्म पानी से या सौंठ लेवे से फायदा होला। शरीर में दर्द होके पर सोडा बाइकार्बोनेट व कच्चा फिटकरी दोनों के समान मात्रा में एक एक ग्राम पीस के एक गर्म पानी के साथ लेवे से काफी आराम होला। यदि बहुत ज्यादा हिचकी आ रहल होके तो गर्म पानी के साथ दो लौंग खाए से हिचकी बंद हो जाला। पड़ जाए ऐसे बचे खातिर सरसों के गरम तेल से सिकाई करे के चाहिए। दिल के मरीज के भोजन में सोयाबीन के तेल प्रयोग करे के चाहिए, काहे कि ई कोलेस्ट्रॉल से मुक्त होला। कब्ज दूर करे खातिर सब्जी में लहसुन डाल के पकाई, हर रोज लहसुन के प्रयोग करे से कब्ज ना रहेला। कान के दर्द दर्द सताए तो एक चम्मच तिल के तेल में लौंग डाल के एक एक गरम कर ली। आ कान में ये तेल के 4 से 5 बूंद टपकावे से कान के दर्द मिट जाला। जुकाम होके पे गुनगुना पानी में नींबू के रस डाल के ओके गरारा कईल जा सकेला या घूंट घूंट के पियल जा सकेला। तुलसी पत्ती, पुदीना के पत्ती, आधा बड़ा चम्मच अदरक तथा गुड़ 2 कप पानी में उबाली। अछान के ओसे स्नान करी। उबलत पानी में नींबू निचोड़ के वो पानी पिए से ज्वर के तापमान गिर जाला। पहले सरसों के तेल नाभी पर लगावे से होठ ना फाटेला। 250 ग्राम छाछ में 10 ग्राम गुड़ डाल के सिर धोए से अथवा नींबू के रस लगा के सिर धोए से रूसी दूर होला। बच्चा के खांसी आवत होके तो ऐसे में 2 से 3 चुटकी फुलल होकल सुहागा शहद में मिला के बच्चा के चटाई, इसे बच्चा के खांसी से छुटकारा मिल जाए। सुरीला आवाज खातिर 1 कटोरी पानी में 1 मुट्ठी गेहूं के चोकर उबाल के छान ली। आ ये पानी के गुनगुना होके पर चाय के तरह चुस्की से दिन में 2 बार पी तो ऐसे में 2 से 3 दिन में आवाज में फर्क नजर आवे लगी। होके पे 2 चम्मच ब्रांडी में पुदीना के चटनी मिला के

0: 94921 पे
1: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में
0: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजद पर।
2: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
3: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
2: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
4: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
5: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
6: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
8: तो हुआ ये कि पांडव लाक्षाग्रह से निकल भागे और दुर्योधन की साजिश नाकाम हुई। लेकिन जब पांडव वन में अपने जिंदा बच जाने का जश्न मना रहे थे, उस दौरान इधर हस्तिनापुर में जो हो रहा था, मैंने वो भी देखा है। क्योंकि मैं आकाश हूं, मैं वो आंख हूं जो सब कुछ देखती है बिना थके। धृतराष्ट्र और दुर्योधन को लगा कि पांडव जलकर राख हो गए, इसीलिए उन्होंने अपनी छाती पीटना शुरू कर दी। शकुनी और दुर्योधन की इच्छाएं भले ही अलग अलग थीं, पर उनका रास्ता एक ही था। दूसरी ओर पांडव और कुंती अनजान रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे, जहां अगले कदम क्या होगा उन्हें कुछ भी पता नहीं था।
9: हे ईश्वर, इस अंधेरे में कुछ दिख भी तो नहीं रहा।
10: कहीं कोई नदी दिख जाती। बड़ी प्यास भी लगी है।
11: भूख प्यास तो सभी को लगी होगी। 3 दिन से बिना कुछ खाए, बस हम चले ही तो जा रहे हैं।
10: जब हमारा ये हाल है तो भैया भीम की क्या स्थिति होगी?
12: मैंने एक बार भी नहीं कहा अर्जुन कि मुझे भूख लगी है, पर हाँ, सबको भूखे प्यासे देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे वो देखो, वो विशाल बरगद का पेड़, हम वहीं चलते हैं। आप सब उसके नीचे विश्राम करो, मैं कहीं से जल लेके आता हूँ। चलो माँ, थोड़ी ही दूर है।
11: यहाँ जल कहाँ मिलेगा भीम?
12: आप चिंता मत कीजिए बड़े भैया, मैं कहीं से भी ढूंढ लूंगा।
9: भीम ठीक कह रहा है, वो जिस काम के लिए निकलेगा उसे पूरा करके ही लौटेगा।

0: मैं जीवित नहीं रहना चाहता पितामह का।
1: महाराज महाराज महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप?
2: हे ईश्वर, महाराज ने खंभे पर मार मार कर स्वयं को लहूलुहान कर लिया है। अरे जाओ जाओ, कोई वैद्यराज को बुलाओ।
0: नहीं नहीं वैद्यराज नहीं।

0: तवा।
1: मैं यही हूँ तुम्हारे पास। ये तुमने क्या कर लिया है स्वयं को?
0: तवा।
1: धैर्य रखो धृतराष्ट्र, धैर्य रखो। तुम्हारे इस रुदन से पांडव जीवित नहीं हो जाएंगे। मैं जानता हूँ तुम्हारी पीड़ा को।

0: जानता हूँ। तुम्हारी पीड़ा तो आंसू बनकर धीरे धीरे बह जाएगी, पर उस पीड़ा का क्या होगा जो विष बनकर मेरे पूरे शरीर में फैलती जा रही है।
1: नहीं पितामह, नहीं, यह पीड़ा कभी नहीं मिटने वाली, कभी नहीं, कभी नहीं।
0: कभी तुमने मेरी पीड़ा के बारे में सोचा है धृतराष्ट्र? मेरी आंखों के सामने चित्रांगत और विचित्र वीर चले गए, तुम्हारे भ्राता पांडु चले गए, उनकी पत्नी माद्री की मृत्यु हो गई। यदि तुम्हारी तरह मैं भी धैर्य खो देता तो तुम्हारा पालन करने वाला भी कोई नहीं होता।
1: आप महान है पितामह, आप महान है, पर मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, बल्कि साधारण मनुष्य भी नहीं, अंधा हूँ मैं, अंधा, जिन्हें मैंने इन भुजाओं में खिलाया था, मेरे वो पुत्र मुझे छोड़कर चले गए,

0: पांडवों की मौत की खबर से हस्तिनापुर ड्रामा कंपनी बन गया। ऐसा लग रहा था ऐसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन में कंपटीशन चल रहा है कि इधर पिताजी दहाड़े मार रहे हैं और उधर बेटा।
1: हे विधाता, हे निर्दयी, अन्यायी, तू मुझे भी क्यों नहीं उठा लेता? हे काल, मुझे भी क्यों नहीं पहुंचा देता मेरे भाइयों के पास? तूने पांडवों को निगलने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं अपना प्रतिशोध किससे लूंगा?
2: अरे रे रे, बस करो भांजे, बस करो। अब तो मिट्टी डालो अपने प्रतिशोध की भावना पर। रोते रोते वो सब मत उगलने लगो जो तुम्हारे हृदय में छिपा है। मिट्टी पड़ चुकी है पांडवों पर। भूल जाओ, भूल जाओ अपने प्रतिशोध को। बस रोने का अभी नहीं करो, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह से कुछ भी निकला तो तुम्हारा वो जो बुढ़ा पितामह है ना, क्षण भर में समझ जाएगा पूरी कहानी को।
1: अरे क्या करूं मामा, रोने का अभ्यास नहीं है मुझे। अरे मैंने तो सिर्फ रुलाना सीखा है मामा।
2: रोना नहीं आता तो सीखो भांजे, सीखो। जो नहीं आता वो सीखना पड़ता है। यदि तुम अपने भाइयों की अकाल मृत्यु पर अपना दुख नहीं दिखाओगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हस्तिनापुर का जो ये राज मुकुट है ना, कब तुम्हारे सर से फिसल गया।
1: मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ मामा। छाती पीटता हुआ मैं सीधे पितामह के पास पहुँच जाऊँ?
2: पितामह के पास भूल कर भी मत जाना, क्योंकि यदि उन्हें जरा सा भी संदेह हो गया ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे।
1: ये बात भी ठीक है। तो ठीक है, मैं अपने कक्ष में ही बंद हो जाता हूँ। आप बोल दीजिएगा कि दुर्योधन ने पांडवों के शोक में अन्न जल सब त्याग दिया है।
2: वाह भांजा, वाह, तुम्हारी बुद्धि तो चल निकली। बस अब तुम द्वार बंद करके बैठ जाओ और मैं कोशिश करता हूँ कि पितामह इधर आए ही नहीं।
1: पर मामा, मेरा अभिषेक कब होगा? ये मूर्ख तो जाने कब तक ऐसे ही आंसू बहाते रहेंगे मामा।
2: तो क्या राज मुकुट को खेतों में रख कर काग भगौवा बनाएंगे? देर सवेर तो तुम्हारे ही सर पर रखा जाएगा ना भांजे। इसलिए धीरज रखो भांजे, और मेरी तरह लोमड़ी सा सोचो और पॉक सा नोचो।
3: अरे यहाँ तो सभी सो गए, अब क्या करूं? माँ, जल लाया हूं। माँ, गहरी नींद में चली गई माँ। सब भाई भी सो गए, देखा सुरक्षा की तो कोई चिंता ही नहीं है किसी को। अब मुझे ही जागना पड़ेगा।
4: अरे वाह, यहाँ मनुष्य, इस वन में तो कोई भूल कर भी नहीं आता। बहन हिडिंबा, हिडिंबा
5: क्या है? मुझे सोने दो ना भाई।
4: सोने दूँ? भूख लगी है और सामने भोजन पड़ा है, और तू?
5: भोजन कहाँ है भोजन?
4: वो देख, एक विशाल शरीर वाला मनुष्य बैठा है, जा और उसे मार के ले आ, बहुत मांस होगा उसमें।
5: वाह, इसे देखकर तो मेरी भी भूख जग गई भाई। बड़े दिनों बाद मनुष्य मांस मिलेगा। पर मुझसे क्यों कह रहे हो, स्वयं क्यों नहीं जाते शिकार करने?
4: भूख से उठा भी नहीं जा रहा है बहन, तू जाना।
5: ठीक है, मैं ही जाती हूँ। मेरी खड़क उठा के देना सामने से।
4: ये ले मेरी खड़क, लेके जा। एक बारी में दो टुकड़े हो जाएंगे, फिर दोनों जम के खाएंगे।
3: कौन कौन है उधर? सामने आओ, नहीं तो मुझसे अनर्थ हो जाएगा।
5: अरे कितना सुंदर युवक है, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा माथा, कसी हुई भुजाएं, बलिष्ट देह, इसे कैसे मार सकती हूँ मैं? ये सुंदर सजीला युवक तो मेरा जीवन साथी बनेगा। नहीं, इसे तो प्रेम से मारना होगा, अपने रूप से मोहित करना होगा, इसे स्वर्ग लोक की अप्सरा सा सच कर जाना होगा इसके सामने।
3: जो भी है चुपचाप मेरे सामने आ जा, यदि मैं उधर आया तो तेरे प्राण ही लेकर लौटूंगा।
5: लो आ गई। कैसे लग रही हूँ मैं?
3: कैसी लग रही हूँ? तो तुम इस भयानक वन में अपना रूप दिखाने के लिए टहल रही हो?
5: नहीं, अपना रूप दिखाने नहीं, तुम्हारा रूप देखने। बहुत सुंदर हो तुम, और यदि मैं भी तुम्हें अच्छी लग रही हूँ तो चलो हम एक दूसरे के हो जाएं।
3: अरे रूपसी, धीरे बोलो, वहाँ माता और भ्राता सो रहे हैं, उनकी नींद टूट जाएगी।
5: अच्छा, तो तुम्हारे साथ इतने सारे लोग हैं?
3: हाँ, पर अब ये बताओ कि तुम हो कौन और क्या चाहती हो?
5: मैं वनवासिनी हूँ, हिडिम्बा नाम है मेरा। यहाँ वहाँ भटक रही थी और अचानक तुम्हें देखा तो मेरा मन विचलित हो गया। सच कहती हूँ, तुम्हें देखते ही तुमसे प्रेम हो गया मुझे।
3: हाँ? प्रेम में पड़ गई हो? मतलब जैसे आम का फल पककर पेड़ से गिर पड़ता है वैसे?
5: मेरे प्रेम का उपहास मत करो प्रिय। जीवन में पहली बार मन में किसी पुरुष को पाने की इच्छा जगी है। मैं अपना सर्वस्व तुम पर न्योछावर करती हूँ, मुझे स्वीकार कर लो।
3: नहीं नहीं, क्या नाम बताया तुमने? हाँ, हिडिम्बा। देखो हिडिम्बा, मुझे धर्म संकट में मत डालो, मैं वैसे भी बड़े संकट में हूँ, माता और भाइयों के साथ वन में भटक रहा हूँ। ऐसे समय में मैं तुम्हारा साथी बनकर भी क्या करूंगा? अरे अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मेरे भाई और माँ देखेंगे और उन्हें बुरा लगेगा। अरे देखो, भोर होने वाली है, तुम जाओ।

0: हम तो आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं देवव्रत भीष्म, क्योंकि जीवन का अंत मृत्यु ही है। हाँ, ऐसी अकाल मृत्यु से दुख अवश्य होता है, पर हमें उसे भी स्वीकार करना चाहिए और सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो कुमारों की आत्मा को स्वयं में स्थान दे।
1: मेरे पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है महर्षि, लेकिन मैं या तो पांडवों की अकाल मृत्यु के पीछे के रहस्यों को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा, या उन रहस्यों को प्रकट करने से डर रहा हूं। और आप वनों में रहते हुए हस्तिनापुर राजमहल के षड्यंत्रों को नहीं समझ सकते।
0: मैं आपका अभिप्राय नहीं समझ पा रहा हूँ।
1: आप समझ भी जाएं तो उससे क्या होगा ऋषिवर, आप सन्यासी हैं, इसलिए मेरी पीड़ा को नहीं समझ सकेंगे। और ये पीड़ा केवल मेरी नहीं है, हस्तिनापुर की उस प्रजा की भी पीड़ा है जो नहीं चाहती थी कि पांडव वर्णावत जाएं, फिर भी पांडवों को जाना पड़ा और वहां उन्हें किसी नए भवन में ठहराया गया। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हुआ।
0: क्या आप महाराज धृतराष्ट्र पर संदेह कर रहे हैं?
1: नहीं महर्षि, नहीं, मुझे उस व्यवस्था पे संदेह है। वो भवन इतनी शीघ्रता से कैसे जल गया कि पांडवों को वहां से निकलने का भी समय नहीं मिला, उनमें से कोई एक भी बाहर नहीं निकल सका। कैसे हुआ ये सब?
0: भावनाएं दुख देती हैं, पर होनी तो होकर रहती है, यही प्रकृति का नियम है।
1: नहीं महर्षि, मैं इसे प्रकृति का खेल कहकर नहीं टाल सकता। अधर्म का ये खेल मुझे शांत नहीं बैठने देगा। मेरे जीते जी हस्तिनापुर में ऐसा अंधेरा छा जाए कि उसमें न्याय और नीति सब स्वाहा हो जाए, मैं ये नहीं होने दूंगा।
2: क्षमा करें तात, कुमार दुर्योधन ने पांडवों की मृत्यु के शोक में अन्न जल का त्याग कर दिया है, वो अपने कक्ष के बाहर भी नहीं आ रहे हैं।
1: जानता हूं विदुर, यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो प्रजा उस पे संदेह करेगी। प्रजा के सामने उसे ये सिद्ध करना है कि वो इस अनहोनी से दुखी है। वही क्यों, धृतराष्ट्र भी तो अपनी छाती पीट रहा है।
2: भला आपसे क्या छिपा है तात, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए।
1: कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है विदुर।
3: तो भीष्म तो जानते थे कि आज नहीं तो कल सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। क्या है कि वक्त के साथ बहती हवा मुर्दों पर से भी धूल उड़ा देती है और पाप सामने आ जाते हैं। वो साधारण मनुष्य होते तो हौसला हार भी सकते थे। अक्सर मुश्किल में पड़कर हम लाइफ को पिनबॉल गेम समझ लेते हैं। पिनबॉल गेम समझते हैं ना, जिसमें सब कुछ बाय चांस होता है, पर दरअसल चांस भी उसी के पास जाता है जो डटा रहता है भीम की तरह। जैसे जब हिडिंबा उसके पास आई तो वो अपने भाइयों की तरह सोया नहीं था। सुनते रहिए महाभारत।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा, मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
8: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
8: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
8: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
8: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
10: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया जनता को संबोधित। बंजारी बाईपास चौक के नामकरण पर विवाद शुरू। पोषण माह के समापन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। मध्य प्रदेश में जिले के 10 मजदूरों के फंसने का वीडियो हुआ वायरल। और चंदा वसूली में एक ट्रक पर पथराव, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा को लेकर 25 वर्ष पूरे होने पर गोपालगंज के लोगों को संबोधित किया। इसको लेकर देश भर में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, गोपालगंज में भी पार्टी के तमाम नेता इस सेवा संकल्प अभियान को लेकर काफी उत्साह के साथ कार्यक्रम के आयोजन में शामिल हुए। सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई और विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन हुआ। इस सभा को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। समर्पण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक और सराहनीय कदम इसे बताया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जन सेवा से राष्ट्र सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाते हुए प्रधानमंत्री ने हर चुनौती को अपनी तपस्या, साधना और अटूट संकल्प शक्ति से अवसर में बदला है। महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र निर्माण की इस महायात्रा को अभूतपूर्व गति मिली है। मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त और सामर्थ्य भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हम संकल्पित हैं, हम सक्षम हैं और हम मिलकर विकसित भारत के सामूहिक स्वप्न को साकार करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 140 करोड़ सपनों का, असीमित ऊर्जा का, अनगिनत आकांक्षाओं का राष्ट्र है। जब जब विकसित भारत बनाना है तो हमें देश के लिए जीना होगा। हम बढ़ेंगे तो देश के लिए, हम सीखेंगे तो देश के लिए। इस दौरान भाजपा के तमाम पार्टी के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा,
11: जो भी जिम्मेदारियां मिली मैं उन्हें निभाता चला गया। जीवन का एक ही ध्येय था, देश के लिए निस्वार्थ कर्म। मेरे लिए कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही मेरा धर्म है। गीता ने हमें सिखाया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा अधिकार मेरे कर्म पर है। इसलिए मैं कर्म को अपना कर्तव्य मानता हूं। नियतम कुरु कर्मत्वम, नियतम कुरु कर्मत्वम, और हर कर्म पूरी क्षमता से करता रहूं। योग कर्मसु कौशलम, गीता ने ये भी कहा है, तस्मात असक्त सततम कार्य कर्म समाचर, निरंतर कर्म करो, बिना आसक्ति के कर्म करो, काम रुकना नहीं चाहिए, प्रयास रुकना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे लिए कर्म सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, यह देश के प्रति, ये देश के प्रति मेरी साधना है।
10: आज भाजपा के भव्य कार्यक्रम को लेकर बंजारी नव निर्मित बाईपास चौराहा को भी सजाया गया था। वहां भी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बंजारी बाईपास चौराहा का नाम रखने को लेकर विवाद होता हुआ भी नजर आया। इस नव निर्मित फ्लाईओवर के पास बनने वाले चौक के नामकरण को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों ने इस चौराहा का नाम अपने अपने तरीके से रखने की मांग की। सभी ने अपने अपने स्तर से इसका तर्क भी दिया, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के तरफ से इस चौक का नाम सेवा ज्योति चौक रखने की बात कही गई, तो वहीं MIMIM के नेता अनस सलाम ने इस चौक का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और देश रत्न APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखने का मांग किया। तो वहीं कुछ लोग अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाने की भी चर्चा करते हुए सोशल मीडिया पर देखे गए, परंतु सर्वाधिक चर्चा इस चौराहे को लेकर काली प्रसाद पांडे के नाम पर रखने की सामने आई। भाजपा के कार्यक्रम के बाद स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे की धर्मपत्नी इस चौराहे पर पहुंच गई और वहां उन्होंने धरना दे दिया। उनका कहना था कि इस चौराहे का नाम गोपालगंज के जन नेता कहे जाने वाले स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे के नाम पर रखने की सभी तैयारी पहले से ही की गई है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का भी उन्होंने एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने भी स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे के नाम पर मूर्ति बनाने और उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग की है। साथ ही अंचलाधिकारी का भी एक पत्र उन्होंने जारी किया, जिसमें बंजारी बाईपास चौक का नाम स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे के नाम पर रखते हुए वहां उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने की बात कही गई है। इन दोनों पत्रों के साथ उन्होंने एक आवेदन लिखकर गोपालगंज के सदर SDM डॉक्टर प्रेरणा सिंह को भी सौंपा, जिसमें उन्होंने पहले से वहां स्वर्गीय काली पांडे के पोस्टर लगाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में स्वर्गीय काली पांडे के पोस्टर को यहां से हटा दिया गया है और अब सत्तारूढ़ दल के नेता स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे के नाम को बदलकर इस चौक का नाम बदलने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से निवेदन किया कि गोपालगंज के सबसे मशहूर ख्याति प्राप्त रहे सांसद और विधायक स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे, जिन्होंने देश और गोपालगंज के लिए काफी काम किया है, उनके नाम से इस चौक का नाम रखा जाए। हालांकि अब तक इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, परंतु विवाद को देखते हुए लोग अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आज 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के समापन पर अंबेडकर भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त गौरव कुमार सहित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और ICDS के कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न उपलब्धियों को लेकर स्टॉल भी लगाया गया था। जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त ने स्टॉल का निरीक्षण किया। मंच संचालन संजय गुप्ता ने किया। जिले के अलग अलग प्रखंडों से आए आंगनबाड़ी के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। सभी बच्चों के साथ जिला पदाधिकारी ने फोटो खिंचाई, बच्चों को खिलौने इत्यादि देकर सम्मानित किया। साथ ही आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका, जिन्होंने पोषण माह के अंतर्गत बेहतर योगदान दिया है, उन्हें भी प्रशस्ति पत्र देकर जिला पदाधिकारी ने सम्मानित किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया,
12: तो पोषण माह का समापन किए, आप लोगों को जानकारी होगी कि हर साल में सितंबर महीने में पोषण माह मनाया जाता है, आज आखिरी दिन है उसका। हम लोग जो विभिन्न गतिविधियां करते हैं, मुख्य रूप से इसमें यह रहता है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं, इनका विशेष ख्याल रखा जाता है। इनके लिए जो बेसिक सुख सुविधाएं की जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और प्रथम 1000 दिन जो एक बच्चे के लिए होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, कि उसी 1000 दिन में जो बच्चे का मानसिक विकास होता है वो आगे चल के इसका ओवरऑल पर्सनैलिटी बनाता है। तो हम लोग उस बात को ध्यान में रखते हुए पोषण माह का हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजन कराया था और आज उसी का समापन हुआ।
10: बैकुंठपुर प्रखंड के लगभग 10 मजदूरों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मजदूर अपने आप को बैकुंठपुर प्रखंड का बताते हुए मध्य प्रदेश के रतलाम में बेच देने की बात कह रहे हैं। मजदूर वीडियो में साफ कहते हुए देखे जा रहे हैं कि उन्हें एक व्यक्ति द्वारा वहां मजदूरी के लिए ले जाया गया था, परंतु 1 लाख रुपए में वहां उन्हें बेच दिया गया। अब उन्हें ना तो भोजन दिया जा रहा है, ना ही उन्हें सही मजदूरी मिल रहा है और दिन रात उनसे काम कराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए मजदूरों ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से सहायता करने की गुहार लगाई है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, परंतु यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लगभग 10-12 मजदूर एक गाड़ी में बैठकर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मजदूरों ने जो कुछ भी सोशल मीडिया पर जारी करते हुए कहा है, उसे आप भी सुनिए।
13: देखो लो भाई, हम दिखवा दिखोली बैकुंठपुर घर गोपालगंज के डोमा हता के धर्मेंद्र यादव आके हमके 1 लाख में बेच के 10 आदमी के भाग गए बा। हमके ना खाए के ठीक बा ना अथी के, आज जबरदस्ती हमसे ही काम कराओ तरह से जो पैसा ले ले बड़ा सो भाई, ऐसा वीडियो शेयर कर लो जो हमके कॉल जाए सो भाई।
14: कंपनी बोला दिया जाए तुम लोग पैसा देकर जाओ, तुम लोग पैसा दे।
15: पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा,
13: पुलिस प्रशासन
15: SB
13: कुछ सब हमारा है,
15: विधायक MP कुछ नहीं करेगा,
13: विधायक MP सब हमारा है। ये हमारे गांव का मिथिलेश बाबा से अनुरोध है, शिक्षा मंत्री से, जो हम लोग को यहां से ही काला जाए।
10: पंचदेवरी प्रखंड के नटवा में महावीरी अखाड़ा मेला को लेकर DJ संचालन के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें अंचलाधिकारी के आवेदन पर दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पक्षों से DJ को भी जब्त किया गया है। हथुआ के SDPO ने कहा है कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कुचायकोट में नेशनल हाईवे पर चंदा वसूली के दौरान एक ट्रक पर पथराव करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक के चंदा देने से इनकार करने पर ईंट पत्थरों से उस पर हमला कर दिया गया, ट्रक के शीशे को तोड़ दिया गया। इस मामले में 20 अज्ञात समेत एक नामजद

0: अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया। बताया जा रहा है कि भ्रामक रिपोर्ट देने पर बरौली और कुचायकोट के अंचलाधिकारी पर 2,000 रुपए का अर्थ दंड जिलाधिकारी समीर सौरभ ने द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान की। अतिक्रमण मामले में गलत तथ्य देने पर अधिकारियों को फटकार लगाया गया और भविष्य में दोहराव पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। विजयपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में 5 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने आकाश चौहान, विजय चौहान, ये दोनों राजेश चौहान के पुत्र हैं, और एक महिला, ये सभी अमवा घाट थाना विजयपुर के निवासी हैं। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और एक दूसरे मामले में एक महिला और एक कृष्णा चौहान जो बलराम चौहान का पुत्र है, ये भी अमवा घाट थाना विजयपुर के निवासी हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। मारपीट के मामले में दोनों पक्षों से हुई इस 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में हुई एक सड़क हादसे में 3 लोग घायल हैं। घायलों में चंदन राम मरवा गांव की सलोनी कुमारी और आशा खैरा की अनामिका कुमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हथुआ के चैनहा पोखरा में गंदा नाले का पानी गिराने को लेकर ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए एकजुट होकर आंदोलन की चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 13 हथुआ नगर के स्थित चैनहा पोखरा में गंदे नाली के पानी को गिराने की तैयारी चल रही है। वहां नाला निर्माण कर तालाब में गिराने को लेकर लोगों को आशंका है, तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस तालाब के किनारे छठ घाट भी बना हुआ है, जिसको लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन और भी उग्र है। लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने कहा कि तत्काल अगर यहाँ नाला को गिराने के लिए जो योजना बन रही है उसे नहीं रोका गया तो लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। कुचायकोट थाना की पुलिस ने 293 लीटर से अधिक देशी शराब को बरामद किया और एक कार को जब्त किया गया है। पुलिस की यह कार्रवाई शीतल बरदाह नहर पुल के पास हुई है। इसमें तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि तस्कर पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस गाड़ी का पीछा कर रही थी, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पोल से टकरा गई और चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने चालक का पीछा किया लेकिन वह भागने में सफल रहा। गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर से 293 लीटर से अधिक शराब मिली, जिसके बाद गाड़ी और शराब को जब्त किया गया है और गाड़ी के मालिक और चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जादोपुर थाना की पुलिस ने 30 लीटर देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी सुनील यादव, पिता रामजी यादव, जो जादोपुर के नवादा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया जनता को संबोधित। बंजारी बाईपास चौक के नामकरण पर विवाद शुरू। पोषण माह के समापन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। मध्य प्रदेश में जिले के 10 मजदूरों के फंसने का वीडियो हुआ वायरल। और चंदा वसूली में एक ट्रक पर पथराव, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर X 1,02,000

0: 784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
2: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: बॉलीवुड को अगर हीरोवुड या मेलवुड भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। यहाँ एक्ट्रेसेस का रोल सेकेंडरी माना जाता है। मोस्टली हीरो के इर्द गिर्द घूमती कहानियों में हीरोइंस रोमांस, डांस और बाई चांस कहीं कहीं फिट की जाती है। लेकिन एक एक्ट्रेस ने इस प्रथा को तोड़ा और खुद फिल्म की हीरो बनी। और ये सिर्फ बाई चांस नहीं हुआ था, ये साबित करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक कई लीड रोल्स के साथ सुपर हिट्स डिलीवर की। यह है आज के दौर में बॉलीवुड के सबसे सशक्त रोल निभा चुकी विद्या बालन।
10: हाय, मैं हूँ विद्या बालन और आप सुन रहे हैं ये है मेरी कहानी।
9: तो आइए जानते हैं विद्या बालन की कहानी बिल्कुल शुरुआत से।
10: मैं बॉम्बे में चेंबूर में पैदा हुई थी। मेरे घर के बहुत पास एक हॉस्पिटल है, वहीं पैदा हुई थी मैं। और मेरी सारी बचपन की यादें जो हैं चेंबूर से जुड़ी हुई हैं। मैंने स्कूलिंग जो है सेंट एंथनीज गर्ल्स हाई स्कूल में की। सारे दोस्त वहाँ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मंदिर है, सब कुछ तो वहाँ है। और वो जुड़ाव रहता ही है जहाँ आप बड़े होते हैं उस जगह से। केरला हम कभी कभार जाते हैं, पर हमारे सारे रिलेटिव्स जो हैं बॉम्बे में ही हैं, तो केरला कभी कभार बस हॉलिडे के लिए जाते हैं। ना घर है वहाँ, ना कुछ है। तो न जाने क्यों लोग सोचते रहते हैं कि मैं केरला में पैदा हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं। 5-6 लैंग्वेजेस बोल लेती हूँ। अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, थोड़ा बहुत मलयालम, बंगाली और थोड़ी बहुत मराठी। मराठी तो यहाँ पैदा हुई, यहाँ बड़ी हुई हूँ, तो मराठी बोलती हूँ। एक्चुअली मैं मराठी बोल लेती हूँ, पर ऑन एयर या फिर कैमरा के सामने नहीं बोल पाती। मैं थोड़ी सी यू नो ऑकवर्ड हो जाती हूँ। पर तमिल घर पे बोलते हैं हम लोग। और हम लोग पालक्काड से हैं, वी हेल फ्रॉम पालक्काड, एंड पालक्काड इज इन केरला, बट इट्स द वन प्लेस वेयर टमिलियंस हैव सेटल्ड, सो वी स्पीक बोथ तमिल एंड मलयालम। और अंग्रेजी तो ऑब्वियसली। हिंदी का हमेशा से शौक रहा है मुझे, आई लव द लैंग्वेज। और बंगाली का हमेशा से शौक रहा है। मैंने सीखा है फिल्मों से, मैंने सीखा है दोस्तों से। जहाँ जहाँ किसी बंगाली को मैं मिलती तो कहती कि अच्छा कुछ सिखा दो मुझे। तो उस तरह से ये लैंग्वेजेस मैंने सीखे हैं।
9: ये है मेरी कहानी विद्या बालन के साथ, बस थोड़ी ही देर में सुनिए।
10: यू नो जब मैं एक्टर भी बनना चाहती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यू नो एक्टर का मतलब सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं होता, एक्टर का मतलब एक्सप्रेस करना होता है, जिसके लिए फील करना होता है। तो आई थिंक जिंदगी में सभी कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है।
9: सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में विद्या बालन को। अपने सशक्त किरदारों से विद्या कई फिल्मों में हीरो बनी है, पर क्या आप जानते हैं कि उनकी खुद की लाइफ का सबसे बड़ा हीरो कौन है? आइए जानते हैं उनकी अपने इस हीरो के साथ की यूनिक इक्वेशन और अटैचमेंट के बारे में।
10: मेरी सिस्टर जो है मेरी हमेशा से हीरो रही है। हम दोनों के बीच 4 साल का अंतर है, वो मुझसे 4 साल बड़ी हैं। एक्चुअली वो बड़ी शैतान थी, अब भी वो शैतान है। एक्चुअली उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। बहुत ही बदमाश है वो। हमारे बिल्डिंग में दोपहर के वक्त सभी के घरों में जाके वो बेल बजा के आ जाती थी, सभी को उठाती थी। और ये सब जो आवाज बदल के बात करना, वो सब मैंने उन्हीं से सीखा है, क्योंकि वो फोन करती थी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और आवाज बदल के वो कुछ ना कुछ प्रैंक खेलती थी। तो वो बस मस्ती खोर है। पर हाँ, हम दोनों बहुत क्लोज रहे हैं। शी इज ऑलवेज बीन इंडल्जेंट। झगड़े भी होते थे जैसे लड़कियों के बीच होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हूं मैं, तो उस बात को लेके बहुत झगड़ा हो जाता था, क्योंकि वो ऐसे ही कुछ पुल करके लेके चली जाती थी, बाकी सब कपड़े मेरे बिखर जाते थे। मैंने जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। यू नो जब मैं एक्टर भी बनना चाहती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यू नो एक्टर का मतलब सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं होता, एक्टर का मतलब एक्सप्रेस करना होता है, जिसके लिए फील करना होता है। तो आई थिंक जिंदगी में सभी कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है। और फिर जब उनकी शादी हुई, तो मैं कहने लगी कि मेरे 2 सेट्स ऑफ पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ दोनों। तो मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ अपनी फैमिली से, और एक बहुत ही मॉडेस्ट अपब्रिंगिंग रहा है मेरा, बट अ चाइल्डहुड आई'ड से वेयर आई फेल्ट कंप्लीटली अनकंडीशनली लव्ड एंड एक्सेप्टेड, और उस वजह से शायद ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। टचवुड।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6550।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको, जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
9: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
10: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
6: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
11: ये है मेरी कहानी विद्या बालन के साथ, बस थोड़ी ही देर में सुनिए।
12: जब माधुरी को मैंने देखा 1-2-3 में, तब मुझे प्यार हो गया। मैं जूनियर माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी और तब से ये भूत चढ़ा है कि एक्टर बनना है।
11: सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में विद्या बालन को। एक्ट्रेस बनने के बाद विद्या बालन के बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी तो सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि विद्या के मन में एक्ट्रेस बनने का ये बीज किसने बोया था? आइए जानते हैं।
12: बचपन में तो हम टीवी नहीं देखते थे और उस दौर में वो वीडियो रेवोल्यूशन चल रहा था, तो हम लोग थिएटर में भी नहीं जाते थे। मुझे याद है मेरी पहली फिल्म, हिंदी फिल्म थी हाथी मेरे साथी, जो मैंने संडे इवनिंग मूवी के तौर से देखा था। और मॉम अलाउड अस टू वॉच इट बिकॉज इट वॉज अबाउट एनिमल्स एंड इट हैड अ हाथी एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिल्मों का तब से शौक नहीं था, पर जब माधुरी को मैंने देखा 1-2-3 में, तब मुझे प्यार हो गया। मैं जूनियर माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी और तब से ये भूत चढ़ा है कि एक्टर बनना है।
13: कहानी, ये है मेरी कहानी।
11: विद्या बालन के साथ।
12: एक्चुअली मैंने एक्टिंग शुरू कर दी थी एट द एज ऑफ 15 and a half। स्कूल से निकल के मैंने अपना पहला सीरियल किया, तो तब पेरेंट्स को लगता था कि अच्छा शौक है, पर टीवी क्लीन मीडियम है तो चलता है, पर मम्मी जो है हर जगह मेरे साथ आती थी। फिर उनको रियलाइज हुआ कि सब जगह अच्छे ही लोग हैं, ये आप पे निर्भर है कि लोग आपके साथ कैसे पेश आते हैं। तो फिर उनको जब वो विश्वास होने लगा तो शी स्टार्टेड लेटिंग मी गो अलोन एवरीवेयर। एंड वो शो जो मैंने किया वो कभी निकला नहीं। फिर बालाजी में हम सब भेजे गए, 30 एक्टर्स थे, नए एक्टर्स इस शो में, तो हम सब बालाजी गए एक डेली सोप के ऑडिशन के लिए। वहां से मैं हम पांच के लिए चुनी गई। तो ये सिलसिला जारी रहा। तो मैं पहले से मैंने एक्टिंग की है, तो पढ़ाई के साथ साथ ये चल रहा था। उस वजह से मेरे पेरेंट्स को लगा कि अच्छा एटलीस्ट पढ़ाई कर रही है। एक वक्त में मैं पढ़ाई छोड़ना चाहती थी, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो पढ़ाई खत्म करना बहुत जरूरी है। एंड आई कांट टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम दैट दे पुट डाउन दैट कंडीशन, बिकॉज जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे कॉलेज लाइफ के, और जनरली पढ़ाई करके जो दिमाग जो खुल जाता है वो किसी और चीज से नहीं होता।
11: ये है मेरी कहानी विद्या बालन के साथ, बस थोड़ी ही देर में सुनिए।
12: मुझे बस परिणीता के होते होते मुझे लगने लगा था कि अगर ये नहीं होना है ना तो भगवान मुझे किसी तरह से एक कोई साइन दिखा दो कि ये नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं थक गई हूँ, पक गई हूँ।
11: सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में विद्या बालन को। सिर्फ सपना देख लेना काफी नहीं होता, सपने को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए होती है चाहत, डिजायर। विद्या की सपने बुनती आंखों में भी कई बार आंसू भर आते और रास्ते कुछ धुंधले धुंधले से नजर आते। वो कई बार लड़खड़ाई, कई बार गिरी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
12: बहुत जैसे कहते हैं जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है, और कभी कभी बहुत आसानी से आपको ब्रेक भी मिल जाता है, तो मुश्किलें बाद में भी आती हैं। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, अभी भी स्ट्रगल्स होती हैं, तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जब मुझे लगा कि शायद मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगी, शायद मैं एक्टर बनने के लिए नहीं बनी। तब तक मेरे साथ इतने एक्सपीरियंसेस हो चुके थे साउथ में, जहां मैं फिल्मों से निकाली गई थी, मैंने बिना शूटिंग किए आई बीन साइंड ऑन फॉर अ लॉट ऑफ फिल्म्स, कई कई फिल्मों में मैंने काम भी किया था, फिल्में रुक गई थी बीच में, मुझे जिंक्स लेबल किया गया था। निराश होती थी, मायूस होती थी, फिर जाके हमारे घर के पास एक साई बाबा मंदिर है चेंबूर में, मंदिर में जाके बहुत रोती थी और कहती थी कि आप मुझे यहाँ तक लाए हैं, आपकी जिम्मेदारी है मुझे आगे ले जाना। तो फिर कहीं ना कहीं से हिम्मत मिलती है, और आई थिंक कहीं ना कहीं वो भूख, एक एक्टर की भूख होती है, वो मुझे प्रोत्साहित करता, और उस वजह से मैंने अपना ये सपना जो है बरकरार रखा। मुझे बस परिणीता के होते होते मुझे लगने लगा था कि अगर ये नहीं होना है ना तो भगवान मुझे किसी तरह से एक कोई साइन दिखा दो कि ये नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं थक गई हूँ, पक गई हूँ। ये बस अपने आप को हमेशा एनकरेज करते रहना और टू पुट अ ब्रेव फेस टू इट, इट्स वेरी टायरिंग। पर आई थिंक मैं ये सब कहती भी थी, पर कहीं ना कहीं अंदर ये भी मेरा विश्वास था या डिज़ायर था, मैं मुझे नहीं पता क्या था, कि मुझे एक्टर बनना ही है, और अगर एक मौका मिला है तो चाहे वो 100 टेस्ट क्यों ना ले, एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, और बस मैंने वही किया।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
10: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
7: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
10: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
7: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
10: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुँच कर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
7: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
10: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AM Z पर।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
10: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
11: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
12: ये है मेरी कहानी, बस थोड़ी ही देर में सुनिए।
13: पहले मेरे साथ होता ये था कि अगर मैंने सुना कि कोई गुजर गया है तो मुझे हंसी आती थी। तो मेरे साथ ये बहुत हो चुका है। कभी मेरी मम्मी कहती थी कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, यू नो कोई गुजर गया, हंसने की क्या बात है इसमें।
12: सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में विद्या बालन को। भूल भुलैया में एक साइको की भूमिका निभा चुकी विद्या रियल लाइफ में भी खुद को कुछ मामलों में पागल मानती है। यकीन नहीं होता ना, तो खुद सुन लीजिए।
13: मेरा तो पहले मन करता था कि सारे BEST बसेस को एक होस पाइप लेके मैं साफ कर दूं। उस हद तक मैं क्लीनलीनेस की पागल हूँ। कोई भी चीज गंदी होती है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे आई बिगिन टू फील वेरी अनकंफर्टेबल। ऐसा भी हुआ है कि मैं मीटिंग में बैठी हूँ और एक पेंटिंग वॉल पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है और मैं बस सोच रही हूँ कि अच्छा आप ब्रेक ले तो मैं जरा जाके वो पेंटिंग सीधा कर दूँ। थोड़ा सा ऑब्सेसिव कंपल्सिव हूँ।
12: विद्या बालन के साथ।
13: पहले मेरे साथ होता ये था कि अगर मैंने सुना कि कोई गुजर गया है तो मुझे हंसी आती थी, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, नर्वस लाफ्टर। मुझे कैसे रिएक्ट करूं ये समझ में नहीं आता था। और उस वजह से कभी तो मेरे साथ ये बहुत हो चुका है। एंड कभी मेरी मम्मी कहती थी कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, यू नो कोई गुजर गया, हंसने की क्या बात है इसमें। एंड पर वो जब तक द फीलिंग सेटल्स मैं हंसी थी, तो अब मैं थोड़ी सी पागल हूँ।
12: ये है मेरी कहानी रेडियो सिटी 91.1 पर विद्या बालन के साथ, बस थोड़ी ही देर में सुनिए।
13: सभी कनेक्टेड होते हैं अपनी फैमिली से, पर आई थिंक एज एन एक्टर होता क्या है कि आप जो बचपन के दोस्त हैं स्कूल कॉलेज के वो सब तो रह जाते हैं, पर यहाँ दोस्त बनाना या फिर रिश्तों को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है।
12: सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में विद्या बालन को। रियल लाइफ में कई रोमांटिक रोल्स अदा कर चुकी विद्या रियल लाइफ में भी काफी रोमांटिक है। इनफैक्ट वो कई लोगों की मदद भी कर चुकी है उनकी लव लाइफ में।
13: कॉलेज के दिनों में तो वी यूज्ड टू डू दैट ऑल द टाइम विद ईच अदर। दूसरे लोगों ने मुझे मदद की, मैंने दूसरों को मदद की, पर आई डू थिंक दैट लव इज व्हाट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड एंड राउंड। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग रोमांटिक लव, ऑल टाइप्स ऑफ लव, बट हाँ एक रोमांटिक लव का एक्सपीरियंस जो है, फीलिंग वो बहुत ही अलग है। एंड वो जब आप एक दूसरे को देखते हैं जो होता है, वो फीलिंग अनपैरेलल्ड है। तो आई डू थिंक आई एम इन लव विद द आइडिया ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लव।
12: विद्या बालन के साथ।
13: आई थिंक फिल्म फेयर अवार्ड्स के स्टेज से उतर के मैं मिली, मुझे पहला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था पा के लिए, और मैं स्टेज से उतरी ही थी कि किसी ने मुझे सिद्धार्थ से इंट्रोड्यूस किया, तभी हमारी पहली मुलाकात हुई। फैमिली सपोर्ट अगर हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जब यू नो बाहर कभी कभी चीजें वर्क कर जाती हैं, कभी नहीं कर जाती, जब आप घर जाते हैं व्हेन यू फील दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर सक्सेसफुल और नॉट यू आर लव्ड, दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू गो ऑन, द करेज टू गो ऑन। सभी कनेक्टेड होते हैं अपनी फैमिली से, पर आई थिंक एज एन एक्टर होता क्या है कि आप जो बचपन के दोस्त हैं स्कूल कॉलेज के वो सब तो रह जाते हैं, पर यहाँ दोस्त बनाना या फिर रिश्तों को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक जो क्लोजनेस है फैमिली के साथ बढ़ जाती है। एंड आई एम अ होम बर्ड, तो मैं फैमिली के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताती हूँ।
12: ये है मेरी कहानी

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: दादी आप घुटने पकड़,
6: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चितारी की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
7: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। ये कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों, स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार GST व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चन
5: आसनों को स्वचलित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
8: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
9: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
8: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
10: जालिम लोशन, दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
11: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है, जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैक वाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
2: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही हैं। वाटर मेट्रो एयर कंडीशन्ड और बैटरी से चलने वाली नाव है, जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबुधाबी में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा आउट उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबुधाबी में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
5: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वहीं अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, एसी है नहीं, बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना घर में, हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ी बीच में हम बैठते हैं।
1: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
6: न भाई न बहन न बीवी न बेटा, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। अब्दुल
1: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
7: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
1: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
8: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
1: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेइचिंग में मनोज शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मनोज और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और

0: है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना। 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानु शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
4: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
3: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार ना करे तो?
4: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
3: कहाँ?
4: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
5: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
6: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
5: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
6: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
5: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
6: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
7: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
0: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज, और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
5: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
4: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
5: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
4: कहाँ?
5: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
1: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
0: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
1: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
0: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
1: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
0: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़।

0: जिसमें लाभुकों को योजना की प्रक्रिया, राशि का उपयोग, उद्योग संचालन और परियोजनाओं से जुड़े आवश्यक पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा मंत्री रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, जमा खान, सीता गुप्ता और श्रेयसी सिंह भी मौजूद रहेंगी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों के लिए 152 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 12 पर्चे रद्द कर दिए गए। निर्वाचन आयोग के अनुसार 152 उम्मीदवारों में 8 महिला उम्मीदवार भी हैं। उम्मीदवार कल तक नामांकन वापस ले सकते हैं। विधान परिषद की 8 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव को लेकर कल मुख्यमंत्री आवास में एनडीए के घटक दलों के नेताओं की बैठक हुई। मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव को लेकर समन्वित रणनीति बनाने और साझा चुनाव प्रचार के मुद्दे पर विमर्श हुआ है। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और घटक दलों के अन्य प्रमुख नेता मौजूद थे। इससे पहले जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा समेत पार्टी के प्रमुख नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की और चुनाव के मुद्दे पर बातचीत की। चुनाव को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक कल होगी। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला एवं बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। सम्मेलन में तय किए गए प्रमुख फैसलों और कार्य योजनाओं को समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पटना सिटी स्थित श्री तख्त हरिमंदिर जी साहिब द्वारा एमआरआई, सीटी स्कैन और पैथोलॉजी सहित अन्य आवश्यक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस संबंध में बिहार मातृ एवं शिशु कल्याण समिति, राज्यपाल सचिवालय और श्री तख्त हरिमंदिर जी पटना साहिब प्रबंधक कमेटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस केंद्र की स्थापना पटना सिटी के मंगल तालाब परिसर में अवस्थित लेडी स्टीफेंसन सेंटर में की जाएगी। इसका संचालन श्री तख्त हरिमंदिर जी पटना साहिब द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने राज्य के सभी 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों की सीनेट और सिंडिकेट में सदस्यों का मनोनयन कर दिया है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। राज्यपाल ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय समेत 14 विश्वविद्यालयों की विभिन्न कमेटियों में भी सदस्यों का मनोनयन किया है। इन मनोनयनों में अलग अलग विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को दूसरे विश्वविद्यालयों की सीनेट और सिंडिकेट में प्रतिनिधित्व दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमत में कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है। फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। मंत्रालय के अनुसार बिहार समेत कई राज्यों में प्याज की कीमतों में नरमी देखी गई है। उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि जिलों में भूमिहीन अगड़ी जातियों का ब्यौरा एकत्र किया जाएगा। उन्होंने जिलों के नोडल पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में कहा कि इन आंकड़ों के आधार पर भूमिहीन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने में मदद मिलेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। एक श्रद्धांजलि।
1: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वहीं अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, एसी है नहीं, बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना घर में, हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ी बीच में हम रहते हैं।
2: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
3: न भाई न बहन न बीवी न बेटा,
4: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं जा अब्दुल।
2: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
5: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो, तो कौन सा तीर मारा?
0: दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी रेखा राज्य के उत्तर पूर्वी भागों से होकर गुजर रही है, साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर भागों में वर्षा और वज्रपात की स्थिति बनी हुई है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है।
6: दिनांक 8 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटे के दौरान बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, नालंदा, पटना, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली जिले के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना जिले में नवनिर्मित 20 किलोमीटर लंबे नेवरा जल डुमरी रेलखंड का आज निरीक्षण किया जाएगा। पूर्वी रेल परिमंडल कोलकाता के संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण के दौरान विशेष ट्रेन द्वारा स्पीड ट्रायल भी किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह परियोजना नेवरा दनियावा बिहार शरीफ बरबीघा शेखपुरा नई लाइन का एक हिस्सा है। यह रेलखंड दानापुर पटना क्यूल झाझा मुख्य लाइन की बाईपास लाइन के रूप में कार्य करेगा। रेलवे ने लोगों से निरीक्षण के दौरान रेल लाइन से दूर रहने की अपील की है। पूर्व मध्य रेलवे त्योहारों के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 12 जोड़ी विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा। इन ट्रेनों का परिचालन अक्टूबर और नवंबर के महीने में किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि दानापुर से मुंबई, पुणे, वलसाड, जोधपुर और कोटा के लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जबकि पटना से मदार के बीच विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। कई विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। बिहार क्रिकेट टीम घरेलू सत्र की शुरुआत रणजी ट्रॉफी के पहले मुकाबले में उत्तर प्रदेश के खिलाफ करेगी। ये मैच 11 अक्टूबर से राजगीर में खेला जाएगा। रिंकू सिंह, ध्रुव जुड़ैल जैसे भारतीय टीम के खिलाड़ियों से सजी उत्तर प्रदेश की टीम आज पटना पहुंचेगी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सीके नायडू क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए बिहार अंडर 23 टीम की घोषणा कर दी है। आदित्य राज की कप्तानी में यह टीम 12 अक्टूबर को गोवा के खिलाफ मुकाबले से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। बिहार विधान परिषद सभागार में आज खेल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के नेतृत्व में प्रदेश में खेल के विकास और खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा अवधि के 25 साल पूरे होने पर उनके संबोधन को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, विकसित भारत हमारा संकल्प है, हम करके रहेंगे। दैनिक जागरण लिखता है, 3.5 वर्ष बाद रेपो रेट में वृद्धि, महंगे होंगे ऑटो और होम लोन। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है 72वीं बीपीएससी पीटी फिर टलेगी, अब छठ के बाद नवंबर अंत में होगी। प्रभात खबर ने मौसम से जुड़ी खबर पर लिखा है पटना में बारिश के बाद फ्लाईओवर पर जमा पानी, सड़कों पर भी फजीहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित 9,347 लाभुकों को पहली किस्त की राशि का वितरण करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में होगी जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में गोवा में निधन। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी, अगले कुछ घंटे में बेगूसराय, मधुबनी, नालंदा, सहरसा और वैशाली समेत आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश और वज्रपात का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: आप चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा, मिला ही नहीं
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
14: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बाली मार्केट, गोपालगंज।
14: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
15: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
16: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
15: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
16: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
15: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
16: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
15: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
9: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
17: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
18: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
19: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
20: Hello. Namaste.
11: नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबके दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029494 जी हाँ 8029494। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
19: हेलो
20: नमस्ते मैडम
19: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम
20: में। फोन लगा लो जो अभी कल लागल बा।
19: अच्छा जी,
20: हमार फोन एक हफ्ते के बाद लागे जाल में तो बात करेंगे सर, बिजी बिजी में बानी है वो कितना सही पता नहीं।
19: अच्छा अच्छा, ना ऐसा कोई बात नहीं के ऐसे बता दिया। अपन नाम कहाँ से बोला था? इंदुवा
20: कला महीने से बोलते हैं।
19: अच्छा, नाम?
20: परमात्मा कुमार।
19: अच्छा जी, हाँ जी, बहुत काफी देर से बात फोन के लिए बानी।
20: हाँ, एक हफ्ते के बाद कॉल हम करेंगे पास।
19: अच्छा जी, तो हेलो माई
20: बाजी
19: का है ना, बोलिए ना। तो कॉल कभी भी बात सकता जी राव, तो कॉल बात सकता। हेलो माय चॉइस में
20: आज शाम को ना बाजी ने लाइट में कॉल लगा लो तो सोनू सरगम गाना बजा रहे हैं। सोनू सरगम
19: गाने के
20: गाना के नाम पे सुना है इसे कॉल में पर।
19: अच्छा, और गाना क्योंकि सुनवाई की भी चाहता नहीं?
20: रेडियो रेडियो सुनने वाला के सबके रोक है संतोष और बिजली रंजी सब कोई।
19: चलिए तो फिर और गाना हम प्ले करता नहीं जी।

0: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: क्या हाल है
1: जी? हाल तो ठीक है, आप बताइए।
0: मेरा भी ठीक है, हो गया है।
1: हाँ जी हो गया है। नाम बता दीजिए अपना।
0: उज्जवल।
1: उज्जवल
0: जिला ये जगह में। उज्जवल।
1: अच्छा, और कहाँ से?
0: गोपालगंज
1: में। कहाँ?
0: सुनना है
1: जी। जी गाना हम आपको सुनवाएंगे, पहले ये बता दीजिए कि आप गोपालगंज में कहाँ से बोल रहे हैं?
0: कबीलदासपुर से।
1: अच्छा, तो फिर कौन सा गाना सुनिएगा? और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं? ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू,
1: वेलकम। चलिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
1: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
1: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पार

0: के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो नमस्कार।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। आप भक्ति जी बोल रहे हैं?
0: नहीं,
1: आज तो मनोरमा जी का गाना हम सुने हैं। आज मनोरमा जी को बज रहा था
0: जी।
1: तो आप कौन सा गाना सुनवाइएगा?
0: आप जो बताएंगे वही गाना।
1: और बोलिए जी, हमको एक खबर है। हम मनान बोल रहे हैं कपूरा से
0: जी। जी कैसे हैं आप?
1: आज मनोरमा जी का आज हम गाना सुने हैं।
0: अच्छा,
1: पवन झकोरा मेरे संग आए तो गुनगुन गुनगुन आवाज के लिए।
0: जी जी, आप तो गाना सही बजा था ना आपका।
1: अभी सुने हैं, साफ तौर पर घर में बैठे हैं, मेरा गाना आया, हम सुन लिए, बहुत हुआ हमारा।
0: अच्छा जी, तो फिर फरमाइश बता दीजिए।
1: और फरमाइश मनोरमा जी, आप कोई अपने मतलब से बजाइए ना कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाइएगा? आपका मतलब सुन लिए हैं, मनोरमा जी कबीर का मतलब से गाना हम नहीं सुना है अभी।
0: अच्छा जी,
1: कौन गाना सुनवाइएगा? यानी हमको चाहिए हिंदी गाना, में चाहिए नहीं भोजपुरी, चाहिए नहीं और कुछ नहीं, वो फिल्मी सॉन्ग होता है ना वही हमको चाहिए। और हम तो कड़े उम्र दराज, अब बच्चे वाले गाना नहीं चाहिए, और उसी में से कोई एक गाना सुनाइए जो कि एजेड लोगों का अच्छा लगे।
0: जी जी, वैसे मैं बता दूँ तो आप बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश करते हैं, तो आप ही बता दे तो ज्यादा बेहतर होता।
1: अरे मनोरमा जी के मतलब से जो हम अपना सुनना चाहते हैं तो फिर आप हमसे कह रहे हैं, गाना सुनाइए हमको याद आता है। माँ मुझे तुम अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं, ये कह रहा हूँ। बहुत
0: तो इस गाने की मतलब मूवी नेम आपको याद है?
1: जी जी,
0: मूवी
1: का शायद ही नाम जाते हैं, किसका कौन सा फिल्म का पता नहीं, और ये शायद लता का गाना है।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ। माँ मुझे तुम अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा ले, और मेरा कोई
0: डेडिकेट भी कहना चाहेंगे?
1: गाना
0: सुनाइए
1: ना
0: मेरा। जी जी, चलिए तो यही
1: गाना सुन, यही गाना सुना दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा।
0: जी जी बिल्कुल, और डेडिकेट भी करिएगा।
1: ये डेडिकेट क्या था, दूसरे के नाम पे किसी को अच्छा लगे तो उसके नाम पे डेडिकेट है, वरना तो मैं तो अपने यादगार के हिस्से से मैं ये गाना को चूज कर रहा हूँ ना, तो अब डेडिकेट किसके रहेगा? हमारे नाम पे रहेगा उसका, है ना, और किसी का तो नहीं है जिसने लेकर के प्राप्त किया।
0: चलिए फिर इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते,
1: कैसी है आप?
0: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम तो ठीक है मैम। अभी तो फोन लगा रहा हूँ, कॉल भी होता है नहीं बजेगा।
0: अच्छा जी, तो कॉल भी लग गया, वैसे नाम बता दीजिए अपना।
1: कोयला गई बोल रहे
0: हैं। कौन सा गाना सुनिएगा?
1: गाना में सुना दे दीजिए। गाने में तो नहीं है फिर गाना कपूर का बुरा है बोल रहा है जैसा भी है मेरे पति देवता है।
0: एक बार और बता दीजिए।
1: और एक गाना हमको सुना
0: दीजिए। कौन सा? एक बार और बता दीजिए
1: गाना। सुंदरदान में सुंदर में गाना सुना दीजिए, कोई भी बताए है वही सुंदरदान में। भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति देवता है।
0: और ये गाना आप किसी को सुनवाइएगा?
1: किसी को सुनाएंगे? हम सुनेंगे, डेली सुनते हैं।
0: गाना आपका प्ले करते हैं
1: जी।
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकिंग 90.4 FM।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM-Z पर।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
10: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
5: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
11: Now pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: Jab phone kehte hai to kehte hai hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
14: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
16: हेलो मैम।
15: हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना।
16: मेरा नाम सोनम है।
15: जी
16: जी,
15: नाम एक बार और बता दीजिए।
16: मेरा नाम सोनम है।
15: और कहाँ से बोल रही है सोनम जी?
16: मैं गोपालगंज से।
15: गोपालगंज में कहाँ?
16: बंजारी से।
15: अच्छा जी, वो सोनम जी और बताइए क्या है आज की फरमाइश?
16: मुझे सॉन्ग सुनना था।
15: बता दीजिए
16: सॉन्ग का नाम। मैं खिसाड़ी का सॉन्ग सुनना चाहती हूँ।
15: कौन सा बता दीजिए?
16: और जो एक गाना है ना, किसी का दिल टूटल हो तबे डोली उठल हुई।
15: जी जी
16: हाँ, वही।
15: तो क्या ये गाना मुझे गा के बताएंगे? ये दो लाइन
16: बस, एक नहीं मुझे याद है।
15: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं है। और गाना किसी को डेडिकेट भी करेंगे?
16: यस, मेरी बहन है, छोटी बहन है।
15: ओके, वैसे क्या आप हेलो मैचेस में पहली बार कॉल की हैं?
16: जी।
15: अच्छा जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको रेडियो रिमझिम का?
16: अच्छा लगता है।
15: सबसे सुनते हैं नहीं है आप ये कार्यक्रम?
16: अभी तो फिलहाल जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से सुन रही हूँ, 10-15 दिन से।
15: अच्छा जी, वैसे कहाँ रहती हैं आप?
16: मैं यूपी रहती हूँ।
15: अच्छा जी, चलिए तो फिर इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।
16: जी
15: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम में।
1: जी मैम, मैं सुरभि बोल रही हूँ, गोपालगंज में वाले से।
0: जी सुरभि जी, कैसी हैं?
1: अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: मुझे तो लग रहा था आप कॉल नहीं लगेगा।
0: चलिए कॉल भी लग गया और आपसे बातें भी हो गयी।
1: भारती मैम कैसी है?
0: जी भारती मैम भी बढ़िया। जी जी, और आप ठीक है?
1: हाँ मैं भी, बातें करके बहुत ही अच्छा लगता है।
0: चलिए मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता
1: है। आपको
0: बता दीजिए,
1: हमको तुम से प्यार है।
0: तो सुरभि जी जाके बताएंगे मुझे।
1: मुझे गाने नहीं आता लेकिन मुझे आज बता दूंगी।
0: कोई बात नहीं, जो गाना अभी बताएंगे वही गाना प्ले करेंगे।
1: हाँ खा के कहो यही बताएंगे। आपको मेरी बहन है तृप्ति, और आपको भारती मैम को, टेलीफोन को, जितने भी
0: ओके सुरभि जी, थैंक यू मैम। जी वेलकम। तो चलिए श्री श्री के साथ आपके गाने को हम प्ले करते
1: हैं।
0: जी बाय। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
11: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070 32042 पे।
12: प्रसाद क्लिनिक,
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
4: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
14: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
15: जी, और कोई ना रानी मुखर्जी जी, क्या हाल चल रहा?
16: जी जी ठीक बा, अपन सही रहो, कैसे बानी?
15: हम ठीक है बानी, कोनियो के यही देर ले माने जीजू जा कर लो कोई, हम कोनियो तो उठे हैं हराज बानी, अब जा कर लागल बटे क्या
16: करें, जी को कॉल कटेला तब तक दूसरा आ जाना।
15: हाँ, तो यही समय में ना उठ लो कर ऐसे कोनियो की रुकत रहा, इमार चल रहा है बेचारा। अच्छा चला था कि आज बात करवा रानी मुखर्जी से, तो और सब का हाल चल रहा?
16: हाल चाल तो सब ठीक एक बार और दुआ से आपन बताएंगे
15: बानी। हम बहुत बढ़िया बानी, आप सब ठीक है तो हम भी ठीक है। मान लिया सामने वाले का ठीक है, देख के और भी आदमी का खुश रहता है इंसान की। हाँ चलो, पूरी खुशी में खुशी है। बढ़िया से खाना खा के आई है ना, गाय की पेड़ पर कॉल लेना है ना आपको।
16: जी जी।
15: और मौसम कैसा है आपने?
16: मौसम बताई तो धूप निकल रहा बहुत तेज।
15: हवा चलाता की
16: ना? हवा तो बिल्कुल नहीं चलता
15: यहाँ तो। हवा दिल्ली में बहुत ज्यादा तेज चलाता है, गर्माहट में बदला ही ना सांस की रात्रि का टाइम ही बैठे। अच्छा वो गाना बैठे, जो गाना बैठे गाना बैठे छोड़ी ना आचारा हो गई हो रे या जाना बहर या ये खुशी कपर के गाना। खुशी कपर के छोड़ी ना सरिया के को रहे या जाई बहरिया
16: बता
15: सकते हो तो कोई तो हमें गाय के कहा था छोड़ी ना पिया को रहे पिया को रहे पिया जाई ना बहरिया। ऐसा ही कुछ बात लेकिन लय कर रहा था हमारा। तो सबसे पहले अपने वाणी भारती जी वाणी ओकरा सुमन सिद्दीकी जी वाणी अमर भाई ओकरा कमरान भाई अत्यारी जी सोनू भाई और जितना कहीं सुनी वो सब तो सुनाते हैं। सब कोई जितना हमारे नाम से जाने पहचाने वाले बात सब को और जितना साथ कर सब को सुनाती। तो ये बात रानी मुखर्जी जी सब बढ़िया से अच्छी बना रही और एक स्ट्रॉन्ग बना रही और आगे के जो काम वगैरह के देखते रही ताकि फिर हमी के कॉर्नर मोड़ पर मुलाकात हुई।
16: जी जी बिल्कुल। तो चलिए फिर एक के साथ गाना हम प्ले करते हैं।
15: जी नमस्कार, अपना ख्याल रखें।
16: जी नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार,
0: हर भाषा से बोल रहा हूँ
1: जी। कैसे हैं आप?
0: ठीक है।
1: वो क्या हो रहा था?
0: क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, दुकान चल रहा है, दुकान चल रहा है
1: जी। तो कौन सा गाना सुनिएगा आज
0: मैडम? मुझे खेसारी का नौका गाना नहीं है।
1: कोई भी गाना, खेसारी लाल का नया गाना?
0: जी जी जी।
1: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-75।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94.4 FM में।
8: नमस्ते दीदी
7: जी। नमस्ते,
8: क्या हाल है?
7: जी ठीक बा, आप बताइए।
8: अरे मस्त है एकदम, झटपा फोन करने उठा नहीं आवा, बिजी खाली बता रहा था।
7: क्या करी अब, भगवान से पहले लोग कॉल कर चुका बात तो का ही कर सकता है।
8: नहीं 11 बजे में 5 मिनट बाकी है ना, 4 मिनट सवेरे रहा हूँ यहाँ, तो उधर सीए चौप आ जाओ, मोबाइल जो खोल नहीं है तो एकदम जगह दिन की फ्री होता है, व्यवस्थित बता रहा हूँ।
7: जी जी चले भाई, तो कोई बात नहीं।
8: और सब बताएं?
7: जी सब बढ़िया बात। तो कौन सा गाना सुने मार
8: जब फोन कर रहे कौन हो याद नहीं कर,
7: मतलब इतना खुश हो जाने के लिए वो गाना ही
8: बात करके बहुत खुशी हो रहा हूँ।
7: अच्छा
8: ही बताएंगे काम करते दिन भर काम में बोल रही है।
7: अच्छा,
8: हम सोचे नहीं की रोज रिकॉर्डिया हो तो सही है, आपसे मैं 3 दिन बातें करे के बाद
7: तो रोजा भी बहुत ही अच्छा बोले, बात करके भी अच्छा लगे
8: ना। हाँ बस बात ना रोज समय बात करे बहुत अच्छा लगे ना, कैसे बहुत अच्छा बोले।
7: हाँ तो बताए, खाना वाना खाने की ना?
8: जी खाने तो खा ले लगा नहीं।
7: चलिए ठीक बात है।
8: हाँ तो फरमाइश बजाती भक्ति संग बन सको तो नहीं
7: बताती,
8: टुंटुलाल के यार से टुंटुलाल यादव के गाना बजाती छठ पूजा के, कर छठी मैया हम आर्मी लभर।
7: और गाना के सुनाए के भी चाहता नहीं
8: डेडिकेट करना चाहते हैं सबसे पहले आपको भारती दीदी को, सोनी दीदी को, दिव्या दीदी को और ऋतु दीदी को और सोनू सर के, अक्षर सर के, पंकज सर से, डेरेकर सर के
9: और रानी जी है ना, रानी जी
10: जी
9: उसको भी सुनवाना है, रेशमा जी को सुनवाना है, राघव जी को सुनवाना है और धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली सुनते हैं सुनवाना है, दिलीप राम को सुनवाना है, उत्तम सोनी को सुनवाना है और करिश्मा जी को सुनवाना है, मेरा भाई एक छोटा वाला व्यक्ति को सुनवाना है और मेरे गांव का एक मनीष भैया है उसको भी सुनवाना है।
10: गाना हम प्ले करते नहीं सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
8: नमस्ते दीदी
10: जी। नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में। जी नमस्ते। हम तो बिल्कुल ठीक बानी, रउआ बताएं कि रउआ कैसन बानी।
0: हमारा तो ठीक है भैया, की बिल्कुल ठीक बानी। अभी आप और मत पौधे के लगाए तो दुए बार में लग गए, एकरा पहिले ट्राई ना कोई लोग।
1: अच्छा तो ट्राई करम तब न लागी।
0: गाना सुना दू भोजपुरी गजल, मतलब के बाजबान देव कुमार सिंह के हो। ये गजल तो सुने के बते
1: रउआ, वैसे बताई तो रउआ खूब सुनेनी गाना।
0: सोने तो रोजा कर ले, गाने तो हमारे जिंदगी के सहारा है। सुबह से लेके जब तक रात तक नींद ना आए जब तक गाना ही सुनेगा।
1: अच्छा अच्छा
0: लगे, गाना याद रही ना।
1: बिल्कुल
0: अपना विश्वास दायक गाना है हमारा।
1: जी बिल्कुल, डेडिकेट भी करे के चाहता नहीं।
0: डेडिकेट रही पार्सी जी के, मनोरमा जी के और अनिल भाई के, जोधपुर वाले रंजन बाबा के भी डेडिकेट रही। और कितना सारा जाने वाला बाबा सब के
1: जी का फिर के साथ ही गाना प्ले करता नहीं। जी सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज।

0: नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी मैम, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम में।
2: जी मैम, थैंक यू। क्या हाल है?
1: जी हाल तो ठीक है, आप बताइए।
2: मेरा भी ठीक है। आप मलेरिया में बोलेंगे क्या?
1: हाँ जी।
2: बताइए, हम आपसे पहली बार बात कर रहे हैं, आपका नाम को पता करनी है।
1: अच्छा जी, कैसे आपका नाम?
2: मैं शाजिया नवादा से बोल रही हूँ।
1: जी शाजिया जी, तो आप कैसी हैं? ठीक है ना?
2: हाँ बढ़िया है, आपने बताइए।
1: जी जी मैं भी बढ़िया हूँ।
2: नाश्ता वगैरह हो गया है?
1: हाँ जी हो गया है। और आपका?
2: जी हो गया है।
1: तो वैसे साजिया जी, मैं आपको एक बात बता दूँ कि
2: जी जी
1: आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है।
2: माशाल्लाह, आपको ही तो आवाज़ बहुत प्यारी है। आप तो बताइए, सब बढ़िया है ना?
1: जी जी सब बढ़िया। तो साजिया जी, क्या है आपकी आपकी फरमाइश?
2: आज की फरमाइश, आज का फरमाइश है ना, तो है राजा तो भर बोली है मिठाई में हम लागे।
1: नीतीश पांडे की आवाज में है?
2: हाँ शायद मैं वही वाला सुनाना चाहती हूँ।
1: अच्छा जी, तो क्या आप मुझे गाके बताएंगे दो लाइन ये गाना?
2: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: सुना दीजिए।
2: की राजा तो भर बोली है मिठाई में हम लागे। आपको ना ही आता है गाना?
1: अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम आप गाना सोच के रखिएगा, हम आपसे गवाएंगे। ठीक है,
2: चलिए ना दूसरा गाने का दे।
1: जी बिल्कुल,
2: चलिए गाते हैं।

0: बस
1: वाह सादिया जी, आपने तो बहुत ही अच्छा गाया।
0: थैंक यू।
1: तो सादिया जी जो गाना आप बताई थी वो गाना डेडिकेट भी करिएगा।
2: सबसे पहले आपको और भारती मैम को, सोनू भाईजान को और लिस्नर को और मेरी भाभी है चंदा, उनको भी सुनाना चाहती हूँ। दिलीप राम भाई को, शबनम को, गुड़िया को, रोशनी को, निशा भारती एंड निशा चौहान, देहरादून वाले भैया को और समीर भाई को, आजाद भाई को, कमरान भाई को और सुनने वाली और लिस्नर को सुनाना चाहती हूँ।
1: ओके सादिया जी, तो चलिए फिर इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।
2: थैंक यू मैम, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो इंचिंग
1: 90.5 से। बोलता नहीं रमा जी प्रसाद
0: जी। जी का हाल चाल बा?
1: हाल चाल ठीक बा। हम तक बहुत भाई बा।
0: हाँ,
1: गाना सुना दू
0: का भी
1: बनवारी हो हमारे बलमा जवान।
0: भाई गाना रुआ गा के बता सकते हैं लाइन?
1: हाँ तो पहलिया उठा बनवारी हो बलमा हमारो जवान।
0: अच्छा, और क्योंकि सुनाए के भी चाहते नहीं गाना।
1: अच्छा, रेडियो सुनकर सबको
0: सुनिए। गाना हम प्ले करते नहीं।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते, सुनत रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjhim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99349-51551 पे।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
1: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM पर।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करे 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick your phone up.
10: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो,
3: हेलो मैम नमस्ते
10: जी नमस्ते बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के रेडियो 90.4 FM
3: जी मैम धन्यवाद मैम बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम और मैम वहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है
10: जी मौसम बता दूँ कि धूप निकला हुआ
3: जी जी जी बारिश हो रही नहीं है हमारे यहाँ भी बारिश नहीं है हम तो सुनील कुशवाहा बात कर रहे हैं मैम मैं RMP से
10: जी जी जी और बताइए आप ठीक ठाक हैं
3: जी जी बस बैठे थे मैम बस ठीक है मैम अभी तो चाय नाश्ता हो गया है आपका मैम
10: जी जी मेरा भी हो गया
3: जी मैम तो आज सरवाइज बता दो मैम
10: जी बिल्कुल बता दीजिए
3: फिल्म परदेश का गाने के बोल है नहीं होना था हो गया मुझे प्यार यही सुनवाएंगे और कितना रेडियो लोग सुनते हैं सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं और सुनते हैं मैम बहुत अच्छा लगता है आपका रेडियो रिमझिम सुनते रहते हैं बहुत अच्छा लगता है मैम दोस्तों को फरमाइश अपनी फरमाइश शामिल हो जाता है तो बहुत
10: अच्छा धन्यवाद करते हैं चलिए सुनिए तो फिर आपके गाना को हम प्ले करते हैं
3: धन्यवाद

0: हेलो
1: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम में।
0: जी सलाम मैम, कैसे हैं?
1: जी वालेकुम अस्सलाम, हम तो ठीक बन।
0: जी और सब खान नाश्ता बने हो गए?
1: हाँ हाँ हो गई। आज आवाज में चेंजिंग कैसे आ गई जी?
0: चेंजिंग ऐसे आ गई की भोजपुरी बाज बोलता नहीं है वजह से।
1: अच्छा,
0: कुछ नहीं रंगो से भोजपुरी में बात करने।
1: हाँ हाँ वैसे रघु बड़ा अच्छा बोल लेता नहीं।
0: जी मैम, कोशिश तो करता नहीं भोजपुरी बोलने के।
1: हाँ हाँ अच्छा लागत है।
0: जी मैम, रंगवा से आज तक मतलब भोजपुरी में बात ना भेल।
1: हम तो कंफ्यूज बनी की आज आवाज में अचानक से चेंजिंग कहाँ से आ गई। खाली तो आप ये फरमाइश का बार आओ।
0: फरमाइश से पहले बताइए नाम का बारा।
1: नाम बता दी
0: सरस्वती
1: ना?
0: जी चलिए सही बताइए, लेकिन सोचिए बताइए। जी मैम, तो बताइए कैसा लगा था भोजपुरी में और गाना का फरमाइश करिए।
1: जी जी रघु, आप भोजपुरी में बोलते हैं तो बहुत ही नीक लगा था।
0: उम्मीद करता नहीं सभी दोस्तों की अच्छी लगी।
1: जी जी लोग
0: तो गाने का फरमाइश बाला दुल्हनिया से गाना की बोल रहा उदित नारायण का आवाज बा। गाने का बोल रहा हो गया है तुझको तो प्यार सजना। चलिए मैम, तो ये वाला गाना बताइए गाना कैसे सुनवा।
1: जी गाना तो बहुत ही अच्छा बा, और ये बताइए गाना क्योंकि सुनवाए की भी चाहत बनी।
0: सुनवाए के साथ ही रेडियो दोस्त के बाद रघुओं के बाद कहें की रघुओं का अच्छा लगे। उम्मीद करता नहीं गाना बहुत अच्छा बा।
1: जी जी चलिए ठीक बात, तो फिर अब गाना हम प्ले कर पानी।
0: ओके मैम
1: जी,
0: बाय मैम,
1: बाय। के साथ रेडियो 90.4।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,
7: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
12: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: Hello. हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
13: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
14: जी सुनील जी, क्या हाल चाल है?
13: बस बढ़िया है, रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं और आपसे बात चल रही है।
14: चलिए
13: जी,
14: तो और बताइए, खाना वाना हुआ?
13: हाँ हो गया ना।
14: चलिए बढ़िया, तो कौन सा गाना सुनिएगा आज?
13: जी मैडम, पिक्चर का नाम है हम, और गाने के बोले कागज कलम दबादला लिख दूं दिल तेरे नाम करूं।
14: जी गाना तो बहुत ही अच्छा है
13: जी, और कुछ दोस्तों को भी याद करना चाहूंगा जो उसके लिए ये गाना डेडिकेट रहेगा।
14: जी बिल्कुल
13: जी, भारती मैम को, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जी है, जीतेन धाकड़ जी है, अमर सिंह गिल है दिलवाली पठार से, और सत्यनारायण गहलोत जी है उज्जैन से, और कैलाश राजपूत जी है बिचिया से, इन सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
14: ओके सुनील जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
13: ठीक है ठीक है।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिन 90.4 असम।
1: नमस्कार बेटा, मैं
0: जी नमस्कार। जी
1: सचिन कुशवाहा बात कर रहा हूँ।
0: सचिन जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ। वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: अभी तो मेरा गांव पड़ेगा बिहार में, अभी मैं पुणे में हूँ, पुणे में काम करता हूँ।
0: अच्छा जी, तो सचिन जी क्या आप हेलो मैच में पहली बार कॉल किए हैं?
1: नहीं, बहुत बार जुड़ चुका हूँ।
0: अच्छा जी,
1: जब
0: तो
1: मेरे को टाइम मिलता है तो जुड़ता हूँ, अभी 1 महीना बाद जुड़ा हूँ।
0: अच्छा जी
1: हाँ, मेरे को टाइम मतलब कंपनी में मोबाइल अलाउ नहीं है मेरे,
0: जी
1: आज छुट्टी पे हूँ तो सोचा जुड़ जाओ।
0: जी जी वैसे क्या करते हैं आप?
1: काम करते हैं वेल्डिंग का, आर्गन वेल्डिंग।
0: चलिए बहुत अच्छी की बात है। तो और बताइए कौन सा गाना सुनिएगा आज?
1: गाना सुनना है मेरे को छठ पूजा का, कोई भी कौन सिंह का आवाज में।
0: जी, और गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: सबसे पहले आपको जितने भी रेडियो सुनते हो सभी श्रोताओं को
0: ओके जी, वैसे तो
1: अभी
0: सचिन जी आप रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनते हैं, मोबाइल ऐप के जरिए या फिर एफएम के माध्यम से?
1: मोबाइल ऐप के जरिए मेरे को जब टाइम मिलता है सुनता हूँ, नहीं टाइम मिलता है नहीं सुनता। मेरे कंपनी मतलब मोबाइल अलाउ नहीं है, पहले अलाउ था उसके बाद बंद कर दिए। ठीक
0: अच्छा चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: है, धन्यवाद।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगटोन 90.4 एफएम।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8029494911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
5: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
5: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
5: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797-06-575।
10: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
11: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
10: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
12: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
14: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने के फरमाइश करें तो आप पुराने गाने के फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप गाने के फरमाइश करें और नए गाने की वजह से आपकी फरमाइश हम ना सुनाएं और अच्छे गाने की आप लोग फरमाइश करेंगे तो गाने तो बिल्कुल बजेंगे। कल एक हमारे श्रोतागण हैं जिनका नाम है संदीप, और उन्होंने मैसेज भी किए होते, कॉल भी किए होते और गाने ऐसे गाने के फरमाइश किए थे कि हम उसको कभी नहीं बजा सकते और ना ही वो कभी रेडियो पर बज सकता है। उस गाने के फरमाइश कर दिए थे जिसकी वजह से उनकी फरमाइश तो जाहिर है कि प्ले नहीं होगी, तो नहीं प्ले हो पाया। तो आप लोग गाने जैसे कार्यक्रम चले वैसे गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, आई एम सुरभि फ्रॉम नवादा गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है एंड सॉन्ग का बोल है मैं नागिन तू सपेरा, डेडिकेट मेरी दी को एंड आपको। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सर नमस्ते, मैं राजेश प्रजापति जौनपुर उत्तर प्रदेश से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की खुशी है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है, हम आलिशा माहिरा गोपालगंज से। तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना सुनना है पवन सिंह का ओल्ड सॉन्ग। बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन आप कौन कहां से मैसेज कर रहे हैं अपना तो परिचय दें, फिर गाने तो हम सुनाएंगे ही। और आगे मैसेज पहुंच रहे हैं अभी, तो चलिए गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहले गाने के फरमाइश सुरभि की प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

रेडियो रेम झीम 94.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं, उस जगह का नाम बताना है, फिर अपने गाने के साथ इंजॉय करना है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सर। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमझम सुनने के लिए और सुनते रहे, बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय नमस्ते, आई एम बिट्टू शर्मा फ्रॉम पिपराही से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कहते हैं कि ऊपर वाला अपने साथ है। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय कैसे हैं आप, और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम पलक कुमारी बढ़िया से जुड़ी हैं, बिल्कुल बढ़िया, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मधुसरिया से, राजू कुमार जी कहते हैं कि सॉन्ग सुनना है भोजपुरी गोलू राजा की आवाज़ में, स्वागत है आपका। और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान से, मुझे गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, बने रहे हमारे साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले गाने हम प्ले करते हैं। और अगले गाने के फरमाइश हमारे पास जौनपुर उत्तर प्रदेश से पहुँचा हुआ है, और गाने के फरमाइश किए हुए हैं रजेश जी, बीत गए जो लम्हे लौट के ना आएंगे। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सब।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76555।

0: 4545 67 666।
1: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8009294921 पे,
1: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एम जी एम 94.4 एफएम पे। शो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं और मैसेज में एक पूछा जा रहा है कि सर कल मेरा गाना बजा था कि नहीं, मैं शो सुनते सुनते सो गई। तो कल तो आपके गाने हम बजा चुके हैं आलिशा मेहरा और आप नहीं सुन पाई, अफसोस रहा। और आगे मैसेज पहुँचे हुए हैं तो आगे मैसेज को शामिल करते हैं। यहाँ पे मैसेज पहुँचाए हुए हैं बिट्टू शर्मा जी और गाने के फरमाइश किए हुए हैं कि ऊपर वाला अपने साथ है। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे रिपीट मैसेज कर रहे हैं अजय कुमार मिश्रा जी, तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची, एक एक करके सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है, थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है। फिलहाल हम गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सब रेडियो एम जी एम 94.4 एफएम पे।

कमाल के सॉन्ग रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे सुन रहे हैं और ऊपर वाला अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। बिल्कुल। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ, लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग ना बजेगा का, मधुसरिया से राजू कुमार जी का। बिल्कुल बजेगा, थोड़ा सा वक्त दें हमें। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज वीरेंद्र भैया दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओपनिंग सॉन्ग में तेरा दुश्मन सुपर दिलीप राम, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में दिलीप जी, और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है तो अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। और इस गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है भेड़िया से पवन सिंह की आवाज़ में, और इस मैसेज को पहुंचाने वाली पल्लवी, तो चलिए सॉरी पलक, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
6: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
6: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
6: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
6: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम छेम 94.4 FM पे शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई गाने की फरमाइश हमारे पास हैं और आगे मिसेज भी कुछ पहुँचे हुए, तो मिसेज देखा जाए। आगे मिसेज पहुँचा हुआ है नाई सॉन्ग मिसेज करती हैं शुरबी, और आगे मिसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सही बात है सोनू बाबू कि जब ऊपर वाला हमारे साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है, पर कैसे भाई। चलिए सोनू बाबू मेरा भी हाजिरी ले ले, लेट है भाई, अभी हम घर पहुँच कर जुड़ गए हैं, हमें याद करने के लिए शुक्रिया दिलीप भाई। इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर अक्सल ने पाल बटर से, और आगे कहते हैं कि पर पवन जी का जिंदगिया अपने के प्रति गुलाम नहीं खे, सावधान रहें। बिल्कुल सही बात बा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि रानी हमरो जिनेगिया नीलाम हो गई, सुपर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ गई सोनू भाई। बिल्कुल ऐसा ही एनर्जी लेते रही। और मिसेज करता ने दिलीप जी, और आगे मिसेज पहुंचा हुआ है कि मेरा गाना नहीं बजेगा क्या, चलिए आपके गाने हम बजाते हैं। और अजय कुमार मिश्रा जी गणेश स्थान माझा से भेजे हुए गाने का नाम देते हैं, आंगन में बाबा दूरे पे माँ कैसे आऊँ गोरी अब तोहरी घरवा। तो चलिए सुनते हैं, यदि गाने ऐसे वैसे होंगे तो हम बीच में रोकेंगे और दूसरे गाने हम प्ले करेंगे। फिलहाल सुनते हैं।

कमाल के शौक रेडियो 98.4 FM पे सुन रहे। आगे मैसेज और कमेंट करते हैं कि सुनो भाई, आजकल घर पे मिलना उचित नहीं है, बाहर ही मिल ले वही बहुत है। लेकिन सॉन्ग अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, सुपर सॉन्ग। मैसेज करते हैं दिलीप जी, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग ना बजेगा का मधु सरिया से, तो बिल्कुल आपके सॉन्ग तो बिल्कुल आपके सॉन्ग ही बजाते हैं। और इस मैसेज को करते हैं गाने को चेंज करते हुए राजू जी, और आप लोग से हम हर रोज कहते हैं कि आप अच्छे गाने के फरमाइश करें, चाहे भोजपुरी ही सुनना चाहते हैं तो उस गाने के फरमाइश करें जो हम बजा सकें। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और गाने का बोल देते हैं, आजा आजा सनम दिल पे तेरा नाम लिखा दूं, सुनवाना चाहते हैं सभी दोस्तों को। तो चलिए आपकी वो फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि जब अपने के परमिट मिल ही गई बात तो बाबा तो डर का है, लेकिन डर रहेला कुछ कुछ बात में। और मिसेस करता नहीं वीरेंद्र गुप्ता भैया, अभी बहुत सारा कुछ बात बाजे में डर लगेला। और आगे मिसेस पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा गाना तो बिल्कुल लेके करके फरमाइश पूरी कर रहे हैं, हमारे पास बहुत कम समय बचे हुए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिश रहेगा कि आपका भी गाना हम बजा दें। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं राजू जी की फरमाइश रेडियो 98.4 FM पे।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं आप सब और रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे बने हुए हैं और शो की समाप्ति का समय हो गया है। तो आगे अभी गाने हैं, तो आज अंतिम गाने प्ले करने का मौका नहीं, सो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, अंतिम गाना यही रहेगा। आप सब बने रहें, एंजॉय करते रहें गाने के अंत तक और हमें दीजिए आप सब जाने की इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जब तक हमारे लिसनर हमसे जुड़ रहे हैं तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूंगी और गाने की बोल है डिंग डोंग डोले और मूवी है कुछ तो है। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

अभी आप सभी हमारी तरफ से एक गीत सुन रहे थे और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि हाय, हेलो भारती जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा। और हम भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं वाओ क्या सॉन्ग है और नाइस ओपनिंग सॉन्ग। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम नमस्ते, और मैसेज करने वाले हैं शंकर पंडित जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती दी, गुड आफ्टरनून सब लोगों को बोल दीजिएगा मेरी तरफ से, और मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और प्लीज दीदी बजा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं भारती मैम नमस्ते प्रणाम, राजू सोनी हरपुर से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं मुझे सॉन्ग सुनना है, और यहाँ गाने की बोल पहुंची हुई है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि राधे राधे मैडम जी, मैं देवराज कुमार रेशम नगर बगैया जिला गोंडा झारखंड से आज के प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ, और रेडियो रिमझिम के सभी दोस्तों को मेरे तरफ से राधे राधे बोलिएगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी हम लोग की तरफ से राधे राधे। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते भारती मैम, मनोरमा मैम क्या हाल है, मैं संजय यादव दुबई से, और नाइस सॉन्ग मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम लोग भी जुड़ चुके हैं बेंगलोर से, सजाद आलम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून दी मैर रोशनी भारद्वाज और अपने हस्बैंड साहुल भारद्वाज के साथ जुड़ी हूँ, और मुझे भी गाना सुनना है, और कुचायकोट के रहने वाले हैं और लिख रहे हैं नमस्ते नमस्ते। तो जी आपको भी हम लोग की तरफ से नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि नसीम अंसारी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और एक गाने की फरमाइश पूरा कीजिएगा। लिख रहे हैं कि गाने की बोल है दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है बरसात मूवी का। तो चलिए बिना देरी किए आपके इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम, नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
6: छोटे से ब्रेक के बाद जो अभी हमसे जुड़े हैं उनका एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91 और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुप्रभात, सुबह की किरणें खुशियों को लेकर आए, हर पल आपके चेहरे पर मुस्कान सजाए, महक उठे आपकी ज़िंदगी फूलों की तरह, हर दिन नई खुशियों से भर जाए, आपका दिन शुभ, सुंदर और मंगलमय हो। शुभ

प्रभात। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और काफ़ी बढ़िया लाइन के साथ जुड़े हुए हैं नीरज सिंह जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है और क्या हाल खबर है, ठीक है ना। हम फरीदा बंगला से और बोल रही हूँ, मुझे भी शामिल कर लीजिएगा, थैंक यू। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नैन टेलर शिवराजपुर से जुड़े हुए हैं और मुझे भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा भारती जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी गुड आफ्टरनून, मनीष रजाक फाजिलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, लिख रहे हैं कि मेरा आज एक हफ्ता पूरा हो गया है और मैम आज फरमाइश कर रहा हूँ, बजा दीजिएगा, गाने का लिंक भेज रहा हूँ। तो जी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके भी गाने की फरमाइश को आज पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, हम मुरारी शर्मा दुबई से बोल रहे हैं और हमारे भी गाने मुझे भी गाना सुनना है पवन सिंह की आवाज़ में, और दुर्गा मैया का अच्छा वाला कोई सॉन्ग सुना दीजिएगा। और रहने वाला हूँ गोपालगंज बिहार, पत्रा ओला कोइनी बाजार माधवगढ़ थाना से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें भक्ति गाने प्ले नहीं होते हैं। अगर आप हिंदी गाने और भोजपुरी गाने की फरमाइश करें तो मैं बजा सकती हूँ, और गाने ऐसा फरमाइश करें भोजपुरी में भी जो कि अश्लील ना हो और मुझे बजाने में कोई दिक्कत ना हो। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, भारती मैम नमस्ते, प्रणाम, राजू सोनी हरपुर से, और मुझे गाना सुनना है और गाने की बोल है दुल्हन हम ले जाएंगे टाइटल सॉन्ग। तो चलिए बिना देरी किए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में सभी के साथ।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:31 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके रेडियो रिमझिम के सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है राजू सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं, भारती मैम जी आपको दिल से शुक्रिया और थैंक्स। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम बा गोर छू के भारती जी, हमो आविल वानी और हमरो हाजरी लगा दी, हम कुन्हवा मोड़ घर से जुड़ल वानी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम कमलेश जी, मुझे भी गाना सुनना है और यहाँ काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरे प्यारे आरजे भारती जी नमस्कार, कैसी हैं आप? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी लिख रहे हैं कि आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत अच्छे कलाकार नाना पाटेकर आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे और आज और उनके लिए भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैसेज करने वाले हैं धनीश कुमार मिश्रा दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और ये बात तो सुन के काफ़ी दुख हुआ और काफ़ी बेहतरीन कलाकार थे नाना पाटेकर जी। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुन्ना खान घर बंजारी बड़ा मस्ताना लिख रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने की भूल पहुँची हुई है जो कि गाना सुनना चाहते हैं और लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं कि हम शिव शंकर टेलर पटना बिहार से हैं और हम बराबर आपका शो सुनते हैं और मेरे मैम हमारे तरफ से भी रेडियो दोस्तों को राम राम जी। और हमारा एक फरमाइश है भारती मैम दिलवाले फिल्म से, और गाने की बोल है जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं, और गीत के बोल हैं। और मेरे मैम बहुत बहुत धन्यवाद, हम शिव शंकर टेलर पटना बिहार से हैं और आपका शो सुनकर सबसे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं और बाद में सभी रेडियो रिमझिम दोस्तों को सुनवाएंगे, और धन्यवाद गाना बजाने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
6: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
7: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि, और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया है वॉइस के माध्यम से, फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
9: ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। भारती मैम, हम शिव शंकर टेलर पटना बिहार से बोल रहे हैं, गाना सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
8: और यहाँ थैंक यू का मैसेज पहुंच चुका है, और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि क्या हाल है भारती जी, खाना वाना खाई है कि नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा खाना हो गया है, आप बताइए आपका हुआ या नहीं। और इसी के साथ यह मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हम अहमद अली सारे अवार्ड नंबर 1 से, गुड आफ्टरनून मैम, सभी को बोल दीजिएगा और मेरे गाने का टाइम हुआ है या नहीं जरूर बताइएगा। तो जी, आप अपने गाने की फरमाइश कर सकते हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, क्या हाल चाल है जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल चाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर जी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मैं जम्मू से उपेंद्र कुमार, और आपके शो में जुड़े हैं और शो सुन रहे हैं, आप कैसी हैं, मुझे एक गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खबर है, ठीक है। और लिख रही हैं कि माँ ना होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा, या खुदा सलामत रखना सदा सबकी माँ को, वरना हमारी ज़िंदगी की दुआ कौन करेगा। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं फरीदा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, और मुझे भी गाना सुनना है। और मैसेज करने वाले हैं रंजीत कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। मनीष रजाक फाजिलगढ़ से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, और गाने की बोल है लाल दुपट्टा मलमल का। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना लाल दुपट्टा मलमल का, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मनीष रजाक फाजिलगढ़ से जुड़े हैं, जिनकी तरफ से मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहे हैं, गाना बजाने के लिए भारती जी आपका दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास सन्यासी रंजन जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि गांव में बनी सब्जी में जो पानी बचा रहता है, शहरों में उसी को सूप कहते हैं। और ये आपकी बात तो बिल्कुल सही है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, प्रदीप चौहान कुशीनगर दुबई से जुड़े हैं और मुझे भी गाना सुनना है, तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दिनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से मैसेज पहुंचा है, लिख रहे हैं, सारे लिसनर से निवेदन है कि आज आप नाना पाटेकर का न्यू सॉन्ग बजवाएं, अच्छा लगेगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा है जो कि लिख रहे हैं मोतिहारी हिंगरी बाजार से एमडी मीना गाना सुना दीजिएगा मैडम जी। और यहाँ काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची है, तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले करेंगे। और यहाँ मैसेज पहुँचा है जो कि लिखा है, गुड आफ्टरनून मैम, करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, हेलो दी, गुड आफ्टरनून, सबके प्रणाम बा। और लिख रही हैं कि मैं प्रीति कुमारी पिपरा नारायण से, और का हाल बा भारती जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम जी, रहीम आलम बेंगलोर से, और कल आपने जी भोजपुरी गाना, मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मुझे गाना सुनना है, और हेलो हाय नमस्ते भारती दीदी, मैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से, और मुझे गाना सुनना है, और इनकी तरफ से लिंक के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: चोरी चोरी छुपके छुपके इंसान लड़के, पहले तो आपके लिए और पूरा रेडियो रंजन ओरिजिनल के लिए।
0: और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमजिम 90.4 FM में।

0: मनोज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुँच कर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:57 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको बता दूं कि आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम जी, प्रदीप सहानी दिल्ली से सॉन्ग सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, और हमारा भी गाना बजा दीजिएगा मैम, दुबई से मुरारी शर्मा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा करूँगी। और उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो गुड आफ्टरनून भारती जी, राजसो लाल सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि दिल में रखते हो और दिल पे ही वार करते हो, खुश दूसरों के साथ रहते हो और कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो, और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि न जाने क्यों आप हमसे मुस्कुरा कर मिलती हैं, अंदर के सारे गम छुपा कर मिलते हैं, आप जानते हैं शायद नजरें सच बोलती हैं, इसीलिए आप हमसे नजरें झुका कर मिलते हैं। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं साहू जी राइस मिल से मैं भी जुड़ गया हूँ। मैम नमस्ते, नमस्कार भारतीय जी, मैं राजकुमार राय बाय एमपी से पंकज ठेकेदार जी हैं और हमारे साथ और शंभु शुभम भैया जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी गोल लागत बानी हम हो जुड़ गई बानी दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और मेरी तरफ से भी आपको प्रणाम है। और यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि प्रदीप चौहान कुशीनगर दुबई से जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है दुपट्टा सरक रहा है और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना कौन है जो सपनों में आए मूवी का दुपट्टा सरक रहा है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है प्रदीप चौहान जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं वाओ सुपर सॉन्ग। और यहाँ मैसेज पहुँचा है कि हमारा भी डिमांड बजा दीजिएगा, तो जी बिल्कुल आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा करेंगे। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय, और इनकी तरफ से भी मैसेज पहुंचा हुआ है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास कॉल के माध्यम से जो कि अभी फिलहाल कट चुका है, और यहाँ पे हमारे पास इंस्टाग्राम के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं दीपक जी, और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, और मुझे गाना सुनना है हनी सिंह का न्यू वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा। और गाने की बोल है कसका टुक्का। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमझम 90.4 FM में।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कार्यक्रम की तरफ, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज पहुँचा है और लिख रहे हैं दीपक जी की थैंक्स मैम गाना प्ले करने के लिए एंड रेडियो रिमझिम को। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दुपट्टा सरकत, दुपट्टा सरकाती है हवाएं अपनी रुख बदल लेती हैं, और कमबख्त ये इश्क कैसा है जो धड़कते दिल को बेबस कर देती हैं। और दुपट्टा सरक रहा है सुपर सॉन्ग दिलीप राम। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो लिख रहे हैं कि कहीं हो न जाए मोहब्बत किसी से सुपर सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर जी। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, कैसी हैं आप? और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
5: नमस्ते दी
4: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: थैंक यू दी।
4: नाम बता दीजिएगा।
5: नेहा कुमारी सासामुका से।
4: जी जी,
5: आप कैसी हैं?
4: जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
5: हम ठीक है, अपना बताइए।
4: जी हम सब भी ठीक हैं।
5: सब कुछ ठीक है?
4: जी जी। कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए।
5: भोजपुरी सॉन्ग सुनना है, कमर में दागी है ना, वो वाला गाना सुनना
4: है। और गाना किसी को सुनवाना भी है?
5: आपको, सबसे पहले आपको, सुनने वाले सभी को।
4: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: ठीक है।

0: लिख रहे हैं कि हाय नमस्ते सिस्टर, मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह है और जिला सिवान महाराजगंज के छोटे से गांव पकवलिया टोला बलुआ से हूँ। और लिख रहे हैं कि केहू चांद से प्यार करेला, केहू सूरज से प्यार करेला, हम ओकरा से प्यार करनी जे हमसे प्यार करेला। और लिख रहे हैं मेरे गाने का फरमाइश है पवन सिंह की आवाज़ में। और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है, तो चलिए बिना देरी किए आपके लिए आपके गाने को प्ले करते हैं। और गाने की बोल है सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है, तो गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: काहे गुनगुनाऊं जब गा

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा, मिला ही नहीं
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:25 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का, और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि धनंजय कुमार सिंह जी लिख रहे हैं कि थैंक यू सिस्टर सॉन्ग बजाने के लिए, और लिख रहे हैं कि दर्द दे के दर्द बढ़ावल न जाला, दीपक जला के दीप बुझावल न जाला, प्रेम कितनों बढ़ी पर बेगाना ना हुई, दिल लगा के दिल हटावल ना जाला। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है मैडम जी, लिख रही है कि मैडम जी बहुत ही अच्छा गाना लगा, पवन सिंह का गाना बजाया, इसके लिए शुक्रिया। और मैं रिश्मा पठानपटी से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैडम, लाडली नवादा से जुड़ी हैं, और क्या हाल है, सब टीम कैसे हैं, और मुझे भी एक गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, रानी मुखर्जी उर्फ मनोरमा जी, भारती मैम जी, मैम मुझे भी गाना सुनना है, आज मैं लेट से जुड़ा हूँ, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, नया पारा विरही जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, इसर राज, पप्पू ठाकुर जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, गोविंद कुमार जलंधर पंजाब से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है मोतिहारी से, एंडी मीनू मीना जी जुड़ी हुई हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और गाना सुनना चाहती हैं, और गाने की बोल है काली तेरी चोटी परांदा तेरा लाल, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
9: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड गोपालगंज।
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91 और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैडम मेरा भी बजा दीजिए। तो जी आप सबको बता दूँ यहाँ काफ़ी सारे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और सबके गाने को मैं एक एक करके प्ले कर रही हूँ और नाराज़ नहीं होना है, थोड़ा इंतज़ार करना है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं खुशियाँ कम और अरमान बहुत हैं, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखो तो निकला रेत का घर, मगर दूर से देखा तो इसकी शान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं रोहित जी देहरादून से और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है अहमद अली सारे अवार्ड नंबर से जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं और इनकी तरफ से वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद अली सारे अवार्ड नंबर 1 से। कैसी हैं मैम? हम लोग तो अच्छे हैं, आप कैसी हैं? आज गाना सुनना है आज हमको संग्राम मूवी से, जिसका बोल है दिल में मोहब्बत है आंखों में प्यार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार। आज सुनाना है सबसे पहले आपको अख्तरी को, कमरान रसिद को, राघव जी को, दिलीप भाई को और जितना भी लोग रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं सभी को। ओके मैम, बाय।

0: अभी हम लोग सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना दिल में मोहब्बत है आंखों में प्यार। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि अहमद अली जी की तरफ से यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि वॉइस के माध्यम से पहुँचा हुआ है फीडबैक मैसेज। तो जल्दी जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
1: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी की, अच्छा है फोन बैटरी से चलता है, नहीं तो पेट्रोल डीजल भराते भराते कंगाल हो जाते। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हमारा गाना नहीं बजेगा क्या, मैसेज करते करते थक गए हैं। और मनीष कुमार गुप्ता आलमपुर सासाराम बिहार से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी ये सभी अपने बारी की इंतज़ार कर रहे हैं, आप तो अभी जस्ट मैसेज किए हैं और आपसे पहले से लोग यहाँ मैसेज किए हुए हैं काफ़ी सारे हमारे लिसनर, और वो सब भी तो इंतज़ार ही कर रहे हैं। और सभी के गाने मैं एक एक करके प्ले कर रही हूँ। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है धनंजय कुमार सिंह जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं खलियो शीशा में निशान रह जाला, टूटल दिल में भी अरमान रह जाला, जवन खामोशी से गुजर जाला वो दरिया भी अपन दिल में तूफान रखेला। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है रवि जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, मुझे भी एक गाना सुनना है, सुना दीजिएगा, बताइए, लिंक भेज दें। तो जी बहुत बहुत स्वागत है, और जी आप भेज सकते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है और फिल्म का नाम है सपने साजन के घर का, और बोल है कभी भुला कभी याद किया। और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। और रंजीत कुमार मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजिम 90.4 FM। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं संजय जी, धनंजय जी, और लिख रहे हैं कि बिन बातों बात के रूठे के आदत रहे, केहू आपन का केहू आपन के साथ पावे के चाहत रहे, तू खुश रह हमरा के, तू खुश रहा हमरा का, हम तो आईना हैं, हमके टूटे की आदत रहे। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहे हैं कि मैम, गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं रंजीत कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी, मेरा गाना नहीं बजेगा क्या, कब से वेट कर रहा हूँ। तो जी बिल्कुल, आपके भी गाने की फरमाइश को पूरी करूँगी, पर उससे पहले यहाँ कुछ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। और रहीम आलम बेंगलोर से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की फरमाइश है कल्पना जी की आवाज़ में, गाना सुनना है। और गाने की बोल है, भौजी हो कति कहीं लव लाइटिस भैलवा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ए भौजी एकरा कुछ नहीं खे भइल
1: तब पियराइल का है बाड़न
0: भौजी हो काथी कहीं
1: बोला बोला

0: ए भौजी, अरे एकरा कुछौ नइखे भइल।
1: त दुबराइल काहे बाड़न
0: भौजी? हो काथी कहीं
1: बोला बोला।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
3: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
4: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
3: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
5: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
6: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो आप सबको बता दो कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके आप रेडियो रिमझिम के सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है गणेश जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं सुपर स्ट्रॉन्ग भाई और मेरा गाना नहीं बजेगा क्या। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है और मैसेज करने वाले हैं मुन्ना खान और घर बंजारी बड़ा मस्ताना। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है और गाने की बोल है पागले बना दे लो। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे प्रमोद प्रेमी का गाना पगले बना दे लूँ, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना था। और मैसेज करने वाले थे मुन्ना खान, और उनकी तरफ से थैंक यू का मैसेज पहुंच गया है। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पत्नी ने अपने पति को फ़ोन लगाया, पत्नी कहाँ हो, ऑफिस पहुँच गए क्या, पति अरे मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया है, मेरी टांग टूट गई है, अस्पताल जा रहा हूँ, पत्नी अच्छा ठीक है जाओ, टिफ़िन का ध्यान रखना टेढ़ा ना हो जाए नहीं तो दाल गिर जाएगी। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुँची हुई है धनेश कुमार जी की तरफ से, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है। तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। हेलो जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा तेज़ बोल सकती हैं या फिर नेटवर्क एरिया में जाइए। हेलो हाँ बोलिए जी। जी आदिति जी, कौन सा गाना सुनना है आपको? हाँ थोड़ा आप तेज बोलिए, आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है। जी जी, तो गाना मुझे सुनाई देगा तब तो मैं बजाऊंगी ना।
1: तो

0: और गाना किसी को सुनवाना भी चाहती हैं? तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: एक से बढ़के एक सुपरहिट

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
1: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
1: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
1: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
3: छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम में और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं कार्यक्रम की तरफ और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनीष कुमार गुप्ता, आलमपुर सासाराम बिहार से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और गाने की बोल है काला टीका। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी समय होने वाला है दोपहर न्यूज़ का, तो हमारी मुलाकात आप सबसे होगी फिर दोपहर न्यूज़ के बाद। तब तक जिनके गाने को मैंने प्ले नहीं किया है उनके गाने को दोपहर न्यूज़ के बाद फिर प्ले करूँगी। तब तक आप सभी सुनते रहें ये

0: 150,000 से अधिक 20 स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया, कहा पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है, इसलिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5

0: लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
1: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेत्र निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक एआई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने एआई को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा क्या है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे

0: और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
1: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
2: जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे, आने वाली पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
3: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है। यहाँ पे इवनिंग में लाइटिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस होते हैं। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
4: मेरा नाम आशीष मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुँह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे वो देखे कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपने मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला और काफी चीजें देख को हमको ये लगा कि उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया है जिससे ये चीजें देख के जाने के बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
1: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।
5: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
6: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
7: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
6: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद ने विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
9: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
10: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
9: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
10: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
9: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
10: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
9: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
10: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
11: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
12: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
11: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
12: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
11: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
12: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
11: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
9: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
13: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
14: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
15: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
16: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
17: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
18: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
17: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
18: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
19: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
20: रेडियो रिमझिम,
19: सुनो दिल से।

0: कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
5: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
4: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
5: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
4: कहाँ?
5: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
2: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023-35876 या 95-999-27-982।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।
7: रेडियो रिमझिम,
6: सुनो दिल से।

0: मेरे साथ डांस करोगे?
1: नहीं।
0: ए, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। अब तुम वही करोगे।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
7: छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं कि सन्यासी रंजन जी की तरफ से मैसेज पहुंचा है जो कि लिख रहे हैं, वो बोलती थी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, और आज धान काटने का समय आया तो फोन नहीं उठा रही है। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत, हमारे पूज्य श्री अभिनेता नाना पाटेकर जी, रेडियो रिमझिम के जितने श्रोता सब साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, न्यायपारा विरही जिला बालोद छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू और लीला साहू, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम, मेरा नाम अखिलेश मेहताब है, अखिलेश महतो है, और मैं इजरा नवादा पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से हूँ, और भारती जी मैम को मेरा प्रणाम है और मनोरमा मैम को भी मेरा प्रणाम है। भारती मैम तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मेरी फरमाइश नहीं बजी है, कहीं बच गया हो तो कार्यक्रम के माध्यम से मुझे बोलकर बता दीजिएगा, अगर नहीं बजा हो तो बताइएगा और फरमाइश करूँगा तभी। नमस्कार, प्रणाम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती दीदी, न्यायपारा विरही जिला से लीला साहू, हम भी जुड़ गए हैं रेडियो रिमझिम के पूजनीय श्री, रेडियो रिमझिम से पूजनीय श्री नाना पाटेकर जी हमारे बीच नहीं रहे, हम सब श्रोता श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पूरे रेडियो रिमझिम को ओम शांति कह देना सुनने को सब श्रोता को। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और ये काफ़ी दुख की बात है। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार मैडम जी, भारतीय मैम, सोनी मैम और नाम बोलना बता रहे हैं कि मिथिलेश कुमार चौहान हिजरा नवादा तथा संग्रामपुर से बोल रहा हूँ, और यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, करिश्मा जी की तरफ से मैसेज की। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है प्रीति कुमारी, जो कि पिपरा नारायण से जुड़ी हुई हैं और गाना सुनना चाहती हैं, और गाने की बोल यहाँ पहुंची हुई है, और गाने की बोल है पिया जी के मुस्की, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना पिया जी के मुस्की, और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और यहाँ मैसेज पहुँच गया हमारे पास प्रीति जी की तरफ से, जो कि लिख रही हैं थैंक यू दी गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं उत्तम सोनी जी की, वाओ सुपर सॉन्ग। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि क्या हाल है जी, अजीत कुमार शाह उर्फ हिटलर बिहारी हरियाणा से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि कौन कहता है लड़कियां सिर्फ पैसे पे मरती हैं, चाउमिंग बर्गर मोमोज गुलगप्पे और तू क्या दांत निकाल रही है।

दिख रहा है कि और तू क्या दांत निकाल रही है, तू तो कुरकुरे के लिए मरती है। और काफी मजेदार लाइन पहुंचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है दिनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि गुनगुनाए इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है, राधे राधे मैडम जी, मैं जितेंद्र धाकड़ गुना जिला ककवासा मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और मुझे लिख रहे हैं गाना सुनना है। और गाने की बोल है मस्त कुड़ी मस्त मुंडा है और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके लिए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92-899-22567 या 97-714-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 96-56-59-536 या 96-56-57-902।

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और कार्यक्रम चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। यदि आप सब इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 98527 88291। यदि कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72776 1698। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, मुझे भी ये गाना सुनना है, सुना दीजिए। और जो कि लिख रहे हैं कि और इनका नाम मेंशन नहीं किया, तो चलिए सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश जो कि वॉइस के माध्यम से है।
1: तिरंगा मूवी का सॉन्ग पीले पीले वो मोरे राजा, ये गाना सुनवा दीजिए। ये गाना धनेश मिश्रा को सुनाना है।
0: तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, जो कि गाने के बोल थी पीले पीले हो मेरी रानी, और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि रवि जी की तरफ से था, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि दिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम मनोरमा मैडम जी, और लिख रहे हैं कि क्या मेरा भी गाना बज जाएगा क्या, और मैसेज करने वाले हैं मिथिलेश चौहान जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, अपनी फरमाइश भेज दीजिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम आपकी आवाज़ में कितना मिठास भरा हुआ है, और लिख रहे हैं अजीत कुमार सा उर्फ हिटलरी बिहारी हरियाणा से, और लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम आपकी आवाज़ कितना मिठास से भरा हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और शुक्रिया। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी नमस्कार, और लिख रहे हैं कि मैं इरशाद मास्टर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है एक बार फिर से। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम नमस्ते, अमरजीत कुमार तिवारी दिल्ली से, और हमारा गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरे जान से प्यारी आरजे मनोरमा जी यानी रानी मुखर्जी, आपका बेसब्री से इंतजार था। तो ओह ये बात है। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है एक बार फिर से, और इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि दिल का हाल बताना नहीं आता हमें, ऐसी किसी को तड़पाना नहीं आता, सुनना तो चाहते हैं इस मनोरमा जी यानी रानी मुखर्जी की आवाज़ को, पर हमें कोई बात करने का बहाना नहीं आता। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए धनेश कुमार मिश्रा जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम प्लीज़ मेरा भी गाना बजा दीजिए, और मैसेज करने वाले हैं मिथिलेश चौहान जी जो कि लिंक के माध्यम से फरमाइश भेजे हुए हैं। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM की सारी गामा का सुपर हिट सॉन्ग फॉर योर लव्ड वंस।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
5: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
5: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
4: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
5: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
4: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
5: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
5: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
4: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
5: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
4: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा जी लिख रहे हैं कि जी मनोरमा मैडम जी नमस्कार, प्रणाम। गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरा रेडियो रिमझिम में भी काम करने वाले लोगों को भी धन्यवाद, और हमारे दोस्त लोग भी बोल रहे हैं धन्यवाद नमस्कार। और अभी इनकी फरमाइश को हम पूरी किए थे जो कि मिथिलेश चौहान जी हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैं इरशाद मास्टर, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। भी लिख रहे हैं जी, तो आपके कॉल को भी उठाया जाएगा। और उससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना नहीं बजेगा क्या, उस टाइम से वेट कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल, आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम बा मनोरमा जी, कैसन बानी रहूँगा। तो जी नमस्कार, हम भी ठीक बानी। और अब बहुत बहुत स्वागत।

और भी हाजिर दोबारा लग गई। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यार यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम गुड आफ्टरनून आपको एंड सभी दोस्तों को। और लिख रहे हैं कि मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से, अभी दुबई से सुन रहा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम कौन सा स्वीट खाती हैं कि इतना मीठा बोलती हैं। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, सब आप लोग का प्यार है और आप लोग के प्यार दुलार से ही हम भी शो कर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि क्या हाय शायरी है। लिख रहे हैं कि भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। ले गई जिंदगी उन राहों में जहाँ हमें जाना नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था। हमने खो दिया सब कुछ वहाँ जहाँ कुछ पाने नहीं था। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और लाइन पहुंची थी मुकेंद्र कुमार जी की तरफ से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैं सोनू कुमार बोल रहा हूँ, मेरा भी एक सॉन्ग है बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और यहाँ पर फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैडम मैं लाडली नवादा से। और लिख रहे हैं कि क्या हाल है और सभी लिसनर लोग कैसे हैं लोग। और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, प्लीज़ मैम बजा दीजिए, कब से वेट कर रहे हैं। तो चलिए लाडली जी आपके गाने को हम बिना देरी किए प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM की आप प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम नमस्ते, क्या हाल है मैम, और लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी जो कि दुबई से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यार यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि मैं सत्येंद्र कुमार, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि रेडियो रिमझिम के संग आज फिर लिख रहे हैं कि रेडियो रिमझिम के संग आज फिर दिल मुस्कुराया, मनोरमा मैम की सुरीली आवाज ने महफिल को सजाया, दोस्तों की प्यारी बातें, हंसी और प्यार का सिलसिला इस खूबसूरत शो में हर पल लगे जैसे खुशियों का काफिला। और लिख रहे हैं कि दोस्ती यूं ही बनी रहे, प्यार यूं ही बरसता रहे, रेडियो रिमझिम का ये सफर यूं ही दिलों में बसता रहे, मनोरमा मैम की आवाज़ सुनकर दिल से बस यही कहे, सो चलता रहे, दोस्त मिलते रहे और खुशियां बरसती रहे। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं ओम साई टेलर राघव जी की तरफ से। तो मैं बता दूँ आप बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, जो कि बहुत ही मज़ेदार जोक के साथ जुड़े हुए हैं। लिख रहे हैं कि एक शराबी और औरत के बीच झगड़ा हो गया, शराबी तू मोटी काली कलूटी दांत दतली कहीं की, और औरत तू नशेड़ी शराबी कहीं का। शराबी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो कल सुबह ठीक हो जाऊंगा पर तू सारी उम्र ऐसी ही रहेगी। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि दिल दिल से मिलता है, दीवाना बड़ा मुश्किल से मिलता है, जो डर डर के ठोकर खाता है वही एक दिन मंजिल से मिलता है। तो बात सही है आपकी। और मैसेज करने वाले हैं अजीत कुमार सिंह जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते नमस्कार मनोरमा जी, हम राम कुमार राम MP बाय से, और मुझे भी एक गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि पवन सिंह की आवाज़ में, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM के प्यारा सा सॉन्ग।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 पे जुड़ सकते हैं, और कॉल करने के लिए भी नंबर है 7277161596। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यार यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी गाना प्ले करने के लिए, और मैसेज करने वाले हैं राम कुमार जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मेरा नाम लिख रहे हैं कि मेरा नाम विद्या निवास मऊ जिला से हूँ, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि आपकी कमी से मेरा दिल उदास है, आपकी कमी से मेरा दिल उदास है, पर मुझे तो आपसे मिलने की आस है। जख्म नहीं पर दर्द का एहसास है, ऐसा लगता है जैसे दिल का एक टुकड़ा आपके पास है। तो अच्छा जी, ये बात है, तो आप अपने दिल का एक टुकड़ा आप वापस लेके जा सकते हैं। और लिख रहे हैं कि मैं पाजी यूपी चौवन से, और लिख रहे हैं कि हाजिरी लगा दीजिएगा मनोरमा मैम जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, हम भी जुड़ गए हैं, और लिख रहे हैं कि क्या हाल है मैम। तो जी मैं तो ठीक हूँ, और प्लीज़ नाम मैंशन करिए। और मैसेज करने वाले हैं सरफरोज अली जी जो कि गोपालगंज के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैडम जी मेरा और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि और लिख रहे हैं कि मैम मेरा गाना बजा दीजिए, और लिख रहे हैं कि तो जी आपके गाने को हम प्ले करेंगे, तो प्लीज़ आप अपना नाम मेंशन करिए ताकि नाम लेने में दिक्कत ना हो। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4।

0: अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि गाने के बोल थी रंगदारी बिहारी के खूने में ओला। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरे भी गाने की फरमाइश पूरी कर दीजिए। और क्या आप मेरे से गुस्सा हैं क्या जी? तो नहीं, मैं आप लोग से क्यों गुस्सा होंगी, आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि चादर जितनी लंबी हो पैर उतना ही फैलानी चाहिए, नहीं तो मच्छर काटते हैं। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सन्यासी रंजन जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे मैसेज पूछा है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, तो जी बहुत बहुत स्वागत है और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि और लिख रहे हैं कि क्या गाना चल रहा है, गाना बहुत ही अच्छा है और शो भी अच्छा चल रहा है। और मैसेज करने वाले हैं कृष्णा कुमार जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर फरमाइश पहुँची जो कि लिख रहे हैं कि मैं सालू कुमारी और मैं गोपालगंज से जुड़ गई हूँ और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पूछी हुई है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश जो कि वॉइस के माध्यम से है।
1: हेलो मैम, नमस्ते, मैं चौकी से बोल रही हूँ और पहली बार जुड़ी हूँ। मेरा नाम मिंटू है। और आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और मेरे को गाना सुनना है, मेरा एक बाबू हुआ है उसी पर। ठीक है भारती मैम, इसमें हाजिरी भी लगाना पड़ता है तो मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, मैं आज ही जुड़ी हूँ।
0: बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में वॉइस पहुंची हुई थी। और चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे प्यारा सा सॉन्ग।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यार यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। हर श्रोताओं समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, और सबके तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच गया। और उससे पहले बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, जो कि लिख रहे हैं कि सासों का पिजरा किसी दिन टूट जाएगा, ये मुसाफिर किसी राह में छूट जाएगा। सासों का पिजरा किसी दिन टूट जाएगा, ये मुसाफिर किसी राह में छूट जाएगा। अभी जिंदा हूँ तो बात कर लिया करो, क्या पता कब हमसे खुदा रूठ जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि इसी के साथ बाय बाय और फिर कल मिलेंगे, और सबकी तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुंच रहे हैं। तो श्रोताओं समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और अगर कॉल करने के लिए अगर आप कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप 72 77 16 65 96 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं लूँगी आप सभी से विदा, और सुनते रहिए मेरी तरफ से आप सभी के लिए प्यारा सा सॉन्ग जिन्होंने आप लोग मुझे इतना प्यार दिया, और आप ही लोग के लिए है मेरे तरफ से ये प्यारा सा सॉन्ग। तो चलिए इसी के साथ लूँगी बिंदा, नमस्कार।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
12: रेडियो रिमझिम,
11: सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4। रेडियो रिमझिम, सुनो दिल।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन

0: लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
1: जी हाँ, कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करे 85070-32042 पे।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
0: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
10: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
11: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
12: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
11: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
12: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
11: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
12: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
11: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
13: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम।
13: सुनो दिल से।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029 94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम।
6: सुनो दिल से।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651

0: है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डीलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89793।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
7: ठक ठक
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम,
10: सुनो दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
6: Now pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार
2: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
1: हाँ मैडम, मैं 11 बजे से ट्राई कर रहा था, आई लव यू। मैं भी डेली रेडियो रंजीम सुनता हूँ और बहुत इच्छा थी कि मेरी भी एक गाना बज जाए, लेकिन आज वो इच्छा पूरी हो गई। मेरा गाना है प्रसन्न बदनम सौभाग्यदा, संस्कृत श्लोक है
2: जी।
1: इसको प्लीज बजा दीजिएगा, मैं ये खुद सुनना चाहता हूँ और रेडियो रंजीम के ऑल लिसनर को मैं सुनाना चाहता हूँ।
2: नाम बता दीजिएगा अपना।
1: मेरा नाम धनंजय कुशवाहा, कैलगढ़ बिहार।
2: गाना किसको सुनवाना है?
1: गाना मैं रेडियो रिमझिम के ऑल लिसनर को सुनाऊंगा और मैं खुद सुनूंगा और आपको भी सुनाऊंगा।
2: तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: शुक्रिया।
2: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके ड्यूरिंग 90.4 FM में।
0: नमस्ते,
1: नमस्ते। जी, कैसी हैं सुरभि जी?
0: आप कैसे हैं?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप क्या कर रही हैं? जी, आज कौन सा गाना सुनना है आपको? और गाना किसी को सुनवाना भी है? जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, बहुत सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: Now pick your phone up. Hello. जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, सलाम अलैकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
5: रेशमा बोलते हैं पठानपट्टी से।
6: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
5: कैसन बन जी?
6: हम ठीक बनी, रोवा बताई, रोवा कैसन बनी?
5: ठीक बनी हम।
6: अब का होता हुए है?
5: रियल देखा था नहीं।
6: अच्छा?
5: याद कर तो नहीं। और सब बताई?
6: और सब तो ठीक
5: बाकी बाटा की।
6: अच्छा, आज तो बेटा गई नी?
5: आज तो बेटा आ गए। हाँ,
6: नाश्ता पानी हो गई बा। तब बता दी आज कौन सा गाना सुने?
5: गाना सुने के बाद नसीब फिल्म के।
6: अच्छा, गाना के बोल?
5: गाना के बोल बा, हमको मिला नहीं जो नसीब में नहीं था, ये लग सुना दे।
6: अच्छा जी, चले ठीक बाबे।
5: बाल से भोजपुरी में आजकल बात होता जी?
6: सब क्यों भोजपुरी के डिमांड करे तो का कर जाओ।
5: सुन रहे करनी है, बड़ा भोजपुरी से बात होता रहा से। सही बात बोलो तो भोजपुरी सही लागे ला। बोले सबके हिंदी बोलते बाले की जैसे अपन भाषा बतियाओ तो सही रहे।
6: तो गाना क्यों सुने को करे हम
5: गाना रबरा सुने हम नॉर्मल मेम सुने रानी बाड़ी करिश्मा बाड़ी हरि के नाम रखता मुस्लान बड़न नेशार बड़न पप्पू बड़न और सब कोई जितना लोग हमारा किन था सब कोई सुनी सब कोई नाम याद नहीं थे उतना
6: हाँ जी जी कोनो बात नहीं है सब हरिये बोल दे
5: हाँ सब हरे बोल दे तनिक सब कोई हमारा गाना सुनी जे जे हमारा किन था जाना था रबरा तो बोलने वाला सुनने वाला
6: चलिए ठीक बताओ रेडियो रूम से कॉल करनी है खाती बहुत बहुत

0: हाँ सलामकुम मैम
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: मैम हम जाकिर हुसैन बिहार गोपाल जादवपुर से।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: सब ठीक है मैम, अपना बताए।
1: मेरा भी ठीक है
0: जी मैम। आज हम भी सोचिए रहे थे कि और कॉल लगाएंगे तो कॉल लगाएंगे, कॉल लगाते लगाते कभी भी थक जाते हैं ना। हाँ तो इसीलिए कॉल लगाइएगा, मानेंगे तो 11 बजे 1 मिनट तो लगा रहे हैं।
1: तो अभी तो लगातार कॉल आए जा रहे हैं, आप जिसका आ जाए।
0: कोई टाइम नहीं दे
1: रहे। हाँ
0: जी मैम, गाना सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा।
0: जी मैम, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया।
1: जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: जी मैम, हमारे दोस्त लोग हैं सूफी आलम, मेरा आलम और कृष्ण शर्मा और गोविंदा शर्मा, संदीप और सुशील और रेडियो जितने परिवार हैं वो। और
1: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: ओके मैम,
1: रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470309092 या 9765665750।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065775।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो,
9: हेलो मैडम
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
9: मैडम, मेरे को गाना सुनना है। सलाम को मैडम।
8: वालेकुम अस्सलाम, आप अपना नाम बता दीजिएगा।
9: ठीक है, शमशेर
8: जी। शमशेर जी, कहाँ से हैं आप?
9: पानीपत से।
8: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
9: मैडम, मेरे को उतना भी गाना सुना आता जितना मैं अपना गाना सुनता है। शीशे का दिल मेरा पत्थर का जवान टूट गया।
8: यही गाना सुनना है?
9: ठीक है।
8: और गाना किसी को सुनवाएंगे?
9: हाँ, सबसे पहले आपको, उसके बाद मम्मी को, उसके बाद में भाई को, जितने तमाम सुनने वाले उन सबको।
8: तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
9: मैडम मैं गाना कब सुनाऊंगी?
8: ये आपको गाना कल शाम को 5 से 7 के बीच में सुनने को मिलेगा।
9: ठीक है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत रेडियो रूम जिम 90.4 असम में।
0: हाँ नमस्ते मैडम
1: जी। नमस्ते
0: जी।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: मेरा बताइए, आप सुनाई क्या हाल चल रहा है?
1: हमारे तो ठीक बार रुआ बताई। खाना पीना हो गए?
0: खाना पीना हो गए मैडम। तब कैसन बनी मैडम आप?
1: बस एक पानी।
0: और सब बताई, खाना वाना हो गए?
1: हाँ खाना हो गए।
0: आज भी कौन सिंह के छठ के गाना सुनूंगी?
1: कौन सिंह के छठ के?
0: छठ के हाँ।
1: गाना के बोल भी बताए?
0: जोड़े जोड़े फालावा जो कैसे ना कौन सिंह गावे हम।
1: हाँ
0: हाँ वही
1: गाना के होते सुनेबो करे।
0: आती लोग सुनवाए घर में मम्मी पापा के बस।
1: गाना प्ले करता नहीं रेडियो रंजीम में कॉल करे खाती। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4
9: जी। रोजी भाई प्रणाम, कैसे मानी
8: जी? जी हम ठीक बानी, रहो बताई रानी जी कैसे मानी?
9: राधे राधे।
8: राधे राधे।
9: और बताई नाश्ता वास्ता हो गई बा?
8: हाँ नाश्ता हो गई बा।
9: चलिए अच्छी बात बा, नाश्ता कर ले लेवानी का। और बापरे बापरे, हमने की कहीं नहीं तो ना गावे नहीं, और दिन बड़ा गावत रंग मन तो कवे जो सामने रहती तो खूब जागरा कर।
8: ना ना, कभी कभी मन कर ला गाना अच्छा लगे
9: काय मन करे काय मन करेला। हम कहीं तो काय ना गई बताई ना काय ना गई हमने के मन ना करेला रे मुझसे गाना सुनने के। हमने के बेखादी बदी के गावे नहीं, हमके तो काफी गुस्सा हुआ। बाकी गुस्सा आते हुए बड़ा अच्छा लगे, हम कहीं रहेंगे तो बड़ा हंसत रहेंगे। चला आज तो कसर पूरा कहीं नहीं ना, और काफी अच्छा अंजाद में गाना गई। वो तो गाना काफी प्यारा रे भजोरी, जाए चंदा ले आओ खबरिया। बाप रे धीरे धीरे गावत रहेंगे हम, कितना कहीं नहीं, कितना दिन से कहीं नहीं गीत गाई रहूंगा। बाकी अच्छा लगे, पूरा सपोर्ट बा हमारा तरफ से रहूंगा करते। और सच में दी जब से रोवालो दोनों आदमी आयल वानी लो पूरा माहौल के बदल दिले वानी लो। और सच में एक बात और हम बताओ चाहते नहीं और हम हर चैनल पर पकड़ आ जानी हंसी से और जो नाम शब्द बार राधे राधे सब कोई पकड़ लेला कि हाँ ईरानी है
10: आवाज राउर सब राउर हंसी जनबावे पहले ही पकड़ में आ जाला
9: जी। और खुल के हाथ से हमारा गाड़ी आज हिट दे देता नहीं रोवा की। और एक बात और बताते नहीं और जो मैसेज पढ़े के अंजाद बा काफी बड़ा झकास लगेला तो कहीं तो नीक लगेला रानी की तरफ से बहुत मस्त मैसेज पढ़ेंगी। और जो ये नया फोन आई बन कम्बक ऐसा टाइम पर मोबाइल हमारा हाथ से जला हम छटपटा के रह जानी। और देखी वो दिन रिकॉर्डिंग भेज के रुआ गाना हम छोटी सी अपन आवाज रिकॉर्ड करके भेजे ना चलू थे हटा दी देनी तुरंत और का बोबे तुरंत हाथ से फोन चला गए उमा शंकर जी मैसेज के लिए रही तमसली जी के लिए रही किल की जवाब हम ना दे पा चली बात तो बड़ा झकास भाई तब आज गाना रवे ऊपर छोड़े भाई तो कौन कसर ना छोड़े सबरी रवे ऊपर आज गाना
10: फरमाइश हमने ऊपर
9: हाँ और न तो कहा हमेशा हम अपने फरमाइश सुन ले बनी रहो लोग तो नहीं पता चली
10: ना चले ठीक है।
9: और ऐसे में तो गाना सिलेक्ट करे के और अभी नहीं लो स्टार्टिंग में गाना काफी अच्छा अच्छा होना
10: तो गाना जन सुने डेडिकेट करें
9: जी खास करके रहुआ के और मुरमना दीवानी और सोनू सर वानी और कुछ रेडियो दोस्त वानी दो सुतम सोनी जी के ना सुना बाकी के और आरजे भास्कर जी वानी दिवेंद्र जी वानी बड़जी जीवानी आजाद अंसारी जीवानी संदीप जीवानी और करिश्मा जीवानी रेशमा जीवानी और दोनों भाई बहन वानी लो और पप्पू जीवानी और बाकी जितना छूट गए लो रानी की तरफ से सबको ये सिखा ज्यादा बात कर ले वानी। और सॉरी क्योंकि अगर नाम ना ले लो कि हमारा नाम तो काफी चर्च में चलेला तो सब लोग के और उमा शंकर जीवानी और ऐसे ऐसे बहुत चली प्ले करी और पानी पिए तो रानी तो ज्यादा बात करा के रहे
10: गाना रहा प्ले करता नहीं
9: प्ले करी और छोड़ के तो दिल नहीं के करत बाकी छोड़ देते मजबूरी और खुल के आसे के बाद और दी और ये गाना तो फिर जाली जी भी सुन ले
10: अच्छा जी चलिए ठीक हो
9: और अच्छा चलिए और कोई मोबाइल मिली था जरूर वैसे जीड़े में ना मिली तो वही तेरा मुका मार के तूने मन मार के
10: जी रेडियो रंजन में कॉल करने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजन 90.4।
0: मैं सुधीर कॉल कर रहा हूँ, कोरिंगीवा जिला देवर झारखंड से है।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
1: जी हम भी ठीक हैं।
0: जी सदर गोपालगंज का मौसम का क्या हालचाल है?
1: गोपालगंज का मौसम तो अभी काफी सुहाना बना हुआ है।
0: जी इधर भी थोड़ा मौसम धूप वाला है, लग रहा है जैसे बारिश होगी।
1: तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है?
0: ये सुना दीजिए फिल्म धरती के पुकार के, लता मंगेशकर और मुकेश आवाज में। गीत के बोल है कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ये हजूर।
1: सुनाएंगे
0: जी, इससे पहले मैं माको और रेडियो के जितने भी लिसनर हैं देश विदेशों में सबको सुनाना चाहता हूँ मैं।
1: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम।
2: जी हम

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
7: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
6: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
7: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
6: कहाँ?
7: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
0: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
1: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
0: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
1: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
0: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
1: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
10: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
11: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
1: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
1: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
1: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
1: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: Jab phone din din bajte hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
14: Break.
2: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो,
15: नमस्ते मैडम
14: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
15: मुनर्मा मैम की भाटी में
14: जी, मैं भाटी बोल रही हूँ।
15: अरे मैम, कब से फोन कर रहे हैं, बिजी बिजी बिजी बता रहे हैं।
14: जी जी, तो कॉल आएंगे तो बिजी तो बताएगा।
15: बोलिए, खाना हो गया?
14: जी जी, मेरा खाना हो गया। वैसे आपका नाम बता दीजिएगा।
15: मेरा अर्चना देवी।
14: और कहाँ से हैं आप?
15: जी, संतूर से।
14: अच्छा जी, आप पहली बार जुड़ रही हैं या दूसरी बार?
15: दूसरी बार जुड़ रहे हैं। एक बार सोनी मैम से बात हुआ था।
14: अच्छा जी,
15: हमको गाना सुनना है।
14: बता दीजिए कौन सा।
15: मैया का गाना, जो चंदा चंदा वाला नहीं है, चंदा उसने के लिए पर्ची।
14: कौन सा?
15: पवन सिंह का गाना है।
14: पवन सिंह का नया है या पुराना?
15: पुराना है।
14: गाने की कुछ लाइन याद है?
15: नहीं, यही चंदा का टाला भौजी, यही सही है। ठीक है, मैं यही सुना
14: बोल रही हूँ। गाना किसी को सुनवाना है?
15: हाँ, सब कोई, हाँ सब कोई सुनेगा।
14: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
15: आज बज जाएगा मैं?
14: कल बजेगा?
15: आज नहीं बजेगा। ठीक है मैं, नमस्ते।
14: नमस्ते।

0: हेलो,
1: स्वागत है आपका रेडियो 94.4
0: जी। नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार जी। मैडम जी, मैं सुनील साहू, गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, सुन रहे हैं रेडियो
0: जी। तो अभी कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: जी, पिक्चर का नाम है सिर्फ तुम।
0: और गाने की बोल?
1: गाने की बोले पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझना है क्या करूँ।
0: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: भारती मैम को, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, गोपाल होता है जितेंद्र धाकड़ और अमर सिंह गिल, इन सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 94.4।
1: धन्यवाद मैडम।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: है आपका रेडियो रिंगिम 9.4।
1: जी नमस्कार, क्या हाल चाल है जी?
0: नमस्कार, मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम भी बढ़िया हैं। और सब कैसे हैं? कल तो बारिश करवा दिया आपके गोपालगंज में, मौसम आपका सुहाना हो गया है।
0: जी जी
1: बताइए, हम लोग गर्मी से परेशान है महाराज।
0: नहीं, इधर थोड़ा सा भी ज्यादा गर्मी पड़ता है तो बारिश हो ही जाता है।
1: बताइए, दिल्ली है पहाड़ी इलाका, आज गर्मी पड़ रहा है गोपालगंज में, आप बारिश हो रहा है, ये तो अन्याय कर रहे हैं हम लोग के साथ ऊपर वाला।
0: पॉल्यूशन ज्यादा है, क्या ही खींचेगा।
1: कम से कम पॉल्यूशन जहाँ पे ज्यादा होता है तो वहाँ पे ना रखना चाहिए, ताकि पॉल्यूशन खत्म हो जाए और आदमी अच्छे स्वच्छ और साफ वातावरण में रहे। आप बताइए, जहाँ पे खुला एरिया है वहाँ पे बारिश हो रही है, वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी हो रही है तो बारिश हो रही है, हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं।
0: कोई नहीं, आपके यहाँ पे होगा।
1: आंसर कीजिएगा तब ना होगा जी। हम सर कहाँ कर रहे हैं आप लोग? ये हो गल बाकी भैया के साली वाला कहाँ, वैसे ही मौसम महाराज बादल आके चेहरा दिखा के चला जा रहा है। और सब बताइए, तो काफी देर से हम लगा रहे हैं, कम से कम 160वां बार लगा है ये नंबर मेरा। और बताइए,
0: आज गाने की फरमाइश।
1: गाने की फरमाइश है, आज जिंदगी इतना तौबा कहते हैं नादान घुंघरू पायल की।
0: कौन सा?
1: तौबा कहते हैं नादान घुंघरू पायल की।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी
1: है? आप हैं रानी मुखर्जी जी हैं, कबीर भाई हैं, सोनू भाई हैं, मामा भाई हैं, अक्सरी जी हैं, गाटा भाई, मुकेश भाई, उसके बाद भाई हैं रजत सिंह भाई हैं, उसके बाद जो है सरिता जी हैं, बबीता जी हैं, गुड़िया जी हैं, नेहा जी हैं, रोशनी जी हैं, और बाकी सबकी सहेली जितना है लोग उनको सुना दीजिएगा, सभी को सुना दीजिएगा। चलिए ठीक है।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते। इसके
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन 90.4 FM में।
1: लिए भी धन्यवाद। मैं संजय कुमार शाह, ग्राम पोहा मनसुनिया, पूर्वी चंपारण बिहार के।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: मेरा हम बहुत बढ़िया है, अपना सुनिए, आप कैसी हैं? आप पूरे रेडियो रिमिशन संपूर्ण परिवार कैसे हैं?
0: हमारे अच्छे हैं।
1: जी जी, मौसम का हाल बताइए, उधर के मौसम कैसे रहता है? बारिश होता है कि नहीं अभी?
0: जी, बारिश हुआ था और इस समय काफी सुहाना मौसम बना हुआ है।
1: जी जी, इधर भी यही है, अभी धूप को भी छांव चल रही है।
0: हाँ हाँ, तो कौन सा गाना सुनना है आज?
1: आज गाना सुना दीजिए, कितनी दिनों के बाद मिले हो, जरा मुझे बताओ सनम।
0: ओके, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: और दोस्त में हो गया, सबसे तो पहले आपको रेडियो इंजन संपूर्ण परिवार को, और दोस्त में हो गया खाना से मोहम्मद सादी जी, कहे तो उत्तम कुमार जी, राम रास्ते सब कुशवा जी, कृष्ण बगान से राजेंद्र कुमार, कला बलपुर से नरेश सोहनी, दीपक दास उदय भंड ठाकरे, झिल्ला साहब भगन रैया देव मिथुन, खंगाल तथा कुशवाहा, राम भगन राम जी भैरूगंज से, हमारे नाम से जाने पहचान तमाम दोस्त को विशेषकर रचना दीजिए, मोहम्मद सलाय अंसारी मझोलिया को, रामचंद्र कुमार मुखिया, शंकर प्रसाद शंभू लगाए, हमारे नाम से जाने पहचान तमाम दोस्त को विशेषकर रेडियो इंजन से मोहब्बत करने वाला संपूर्ण परिवार रचना करिए। अभी आप फिर करेंगे, नमस्ते
0: जी। नमस्ते, रेडियो रमजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो।
12: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
12: जी प्रणाम।
11: प्रणाम,
12: कैसन बने?
11: हम तो ठीक बने, रोगा बताए, रोगा कैसन बने?
12: हमारे बाप भारती से होता नहीं। अरे हमारे बाप तो भारती जी से होता ना।
11: हाँ,
12: आवाज ये एक जैसा रोका जाता ना।
11: अच्छा,
12: धीमा बार थोड़ा तेज बार, इतना ही बस ना तो मिलता है।
11: तब और सब बताए, हाल चाल सुनाई?
12: ठीक बा, बहुत परेशान बने, कम से कम 300-350 बार कौन कौन।
11: अरे बाप रे बाप, लागत लाइन बहुत ज्यादा
12: 350। अब कहनी की अब लास्ट करत नहीं, अब एक बाद देखे 12:30 बजे तक चलो। फरमाइश का दिया ध्यान में नहीं किया।
11: फरमाइश ध्यान में नहीं किया,
12: हमारे कुछ अलग डिमांड रहे।
11: तो गाना भुला गई नहीं का?
12: ना, हमारे कुछ अलग डिमांड सोच ले रही
11: ना। बताई
12: हम सोच ले बनी की आज रोड़े से सुनी, रोड़े चॉइस से वो ऐसे ना बताएं कि कौन गाना सुना है। ये तो आई डिमांड भाई पूछे के भाई, सब लोग कहेंगे तो कौन से कर ला कि अपना पसंद तो सुना दें, ताकि आज रोड़ा पसंद से या रोड़ा मुंह से सुने के चाहते नहीं कि भाई गाना
11: गाने से बोल तेरी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है।
12: हमारा सुना ना, और जितना लोग सुने सब लोग सुन ली।
11: बिल्कुल,
12: कुमार मिश्रा दिल्ली से।
11: चले फिर एक बार गाना प्ले कर दो। मुझे मैं कल कहीं था तो बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो जी,
1: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते
1: बिल्कुल नमस्ते
0: जी, आपको प्रिपेयर चुके पढ़ना
1: छोटा पढ़ चुके पढ़ना ना कही चले
0: सिखा हो भाई, बता इतना चले लानू क्यों क्यों के पैर छू सकता।
1: गोपालगंज का मौसम कैसे हुआ
0: जी? गोपालगंज के मौसम बढ़िया बा,
1: धूप निकल बा।
0: हाँ, एकदम हल्का धूप निकल बा।
1: भी हल्के धूप निकल बा। काल थोड़ा लेट से जुड़े ने, थोड़ा काम ज्यादा रह गई वही से।
0: अच्छा,
1: चलिए कल 3 बजे जुड़े में। और सब बताए?
0: और सब ठीक पावे।
1: खाना खा के हिलवानी की ना?
0: हाँ हाँ, खाना खा के हिलवानी।
1: ऐसे आवाज बहुत सुनो आवाज़।
0: ना कोनो बात नहीं। कौन सा गाना के फरमाइश है?
1: गाना के फरमाइश बजा दी चंदन चंचल के बारे में बजा दी।
0: गाना के
1: सीखली सतले वाली।
0: और गाना के ऊपर सुना होंगे बा?
1: सबसे पहले तो रजा के सुनाए के बाद।
0: अच्छा।
1: और मनोरमा दीदी के और रानी जी के सुनाए के बाद, करिश्मा जी के, राघव जी के, उत्तम सोनी के और रेशमा जी के और सोनू सर के, पंखा सर के, अफसर सर के, सोनी दीदी के, दिव्या दीदी के और स्पेशल में डायरेक्टर सर के।
0: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
6: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
8: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM
11: में। दीदी प्रणाम। भारती दीदी है क्या? रहुआ
10: आवाज में की पहचाना
11: ना बदल
10: पहचाना ना ऐसा कोनो बात नहीं है।
11: ऐसा बात भल ही बाबे
10: ना, सब बढ़िया बा रहुआ। बताए रहुआ कैसन बानी?
11: हम ठीक बनी। खाना ना हो गल बा?
10: हम
11: निर्मा दीदी कहाँ बनी? गाना सुने गुआ हमारा एगो।
10: बिल्कुल बता दी कौन सा?
11: सुन के बजा दी कौन
10: हो और गाना क्यों के सुनवाजू करे?
11: सबसे पहले रहुआ के और मनोरमा दीदी के, सोने दीदी के और अफसर सर के और सोनू सर के, गणेश सुनिहान और रानी दीदी और उत्तम सोनी और राघव जी, रेशमा जी, काजल जी और हम हमारे बिटू भैया और हम माई पापा सबके सुन ला। जे जो छूटल बस सबके सब हरे कहा देता
10: जी। तो और गाना प्ले कर जानी, सुनते रहिए रेडियो रंजीन 90.4 FM।
11: थैंक यू।

0: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिन 90.4 FM में।
1: क्या हाल है मैम?
0: जी मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम तो अच्छे हैं। धरती मैम बोल रही हैं ना?
0: जी
1: मैं अहमद अली सारिया वार्ड नंबर 1 है।
0: जी जी
1: दिनों बाद में याद किए हैं, लगता नहीं है जल्दी कॉल, इतना ट्रैफिक जाम रहता है आपकी गाने की गाड़ी के पटरी पे, पूछिए मत।
0: कभी कभी हो जाता है,
1: बहुत कभी कभी नहीं, हमेशा। बहुत मुश्किल से कॉल लगता है। आज हमको सॉन्ग सुनना है,
0: बता दीजिए।
1: सॉन्ग सुनना है हमको, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: हाँ हाँ, सबसे पहले तो आप दोनों लोग को, आपको और मुनर्मा मैम को
0: जी,
1: और अख्तरी को, राघव जी को, कमरान भाई को और दिलीप भाई को, आज जो भी रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को है।
0: तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
1: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए। आज बज जाएगा क्या?
0: कल बजेगा।
1: कल बजेगा, ठीक है, ओके, शुक्रिया मैम गाना बजाने के लिए।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: श्रोता लोगिन नमस्कार। रवा सभे सुनत बानी आपन बोली के पहचान यानी कि रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हम राउर दोस्त आज फिर से रेडियो रिमझिम पर हाजिर हो गल बानी लेके अपना माटी के सुगंध से सरोबोर कार्यक्रम भोजपुरी बिरहा। तो चलिए आज के कार्यक्रम के हमने क्या आगाज कर जाओ और सुनल जाओ ई बिरहा।

ए बाबू, तमाम घटना कांड आप लोगन हमरा आवाज में सुनत बानी। का बतावल जाओ, का कहल जाओ, का गावल जाओ। एक एक थे नया नया चीज दृश्य सामने आ जात बा, सुनल जाता न्यूज के तहत, देखल जाता कि ओकरा पर सोचे पर आदमी मजबूर हो जाता। जवन ना देखले रहल आदमी उ अब चीज देखे के मिलत बा। ए समय में जवन हमन के बचपन से ये सब चीज ना देखले रहल उहे आज चीज देखे के मिलत हो। एक और तत्काल का घटना बा जवन की पूरा विश्व के हिला के रख देले बा। कैसन घटना हो आप लोगन न्यूज पेपर में भी देखत हुई हैं, सुनत हुई हैं। चार लाइन कवि जी एक बात लिखलन का, जल गई जिंदगी जल गया आसियां, चल गया ऐसा कुदरत का कातिल कहर, रो रही है धरा रो रहा आसमां, मौत की खाई बनी है हवाई सफर, खौफ में है सभी शोक में।

0: एक लाइन तर्जबा मास्टर तनि बढ़ के दब यह तरज हो
1: बा

कहानी कहाँ से लिहल गई, कैसन कहानी बा बाबू। आज पूरा विश्व, पूरा देश, सब देश सोचे पर मजबूर बा का घटना घटल बा। नजम के लाइन बा मास्टर।

0: तनी बात समझ ले बाबू।
1: बा
0: 12 जून सन 2025 12 जून का एक विमान हवाई जहाज इंडियन एयरलाइंस
1: बा
0: अहमदाबाद से लंदन खातिर तैयार भइल चले के
1: बा
0: ओ हवाई जहाज में 242 लोग यात्री केवल 242 यात्री 242 यात्री बैठलन अपना अपना सीट पर बैठ गइलन। जब उनकी सोशल मीडिया पर तहियो देखावत बा कि जब विमान में 242 लोग बैठल हुन विमान के ऐसी कामना करत बा लोग अपना कपड़ा से हवा हाकत बड़न वो विमान में।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
0: सोशल मीडिया पर भी देले हुए कि लोग कंप्लेन कहलन कि भाई हम लोग इतना पैसा दिए हैं और एसी नहीं काम कर रहा है, तो लोग बताए विमान के कर्मचारी कि ऊपर जब विमान जाएगी हवा में तब एसी काम करेगा। खैर जो कुछ भी हो। 242 लोग सफर करने के लिए, लंदन जाने के लिए तैयार हैं, विमान में बैठे हैं।
1: वाह।
0: लेकिन बूढ़ा, नौजवान, बच्चा, सब लोग, एक एक परिवार के तीन तीन चार चार लोग बैठल हूं विमान में। लेकिन भैल का बाबूजी तरज बा का तर्ज कला।

विमान के अंदर केहू इंजीनियर, केहू डॉक्टर, केहू खिलाड़ी, सब लोग, सब तरह के लोग बैठल हूँ, बूढ़ा नौजवान, बीबी बच्चा सब। मतलब हम आप लोगों से पहले में बतौली कि 242 लोग में हर तरह के लोग बैठल हूँ। एक एक परिवार के इतना तक प्रमाण मिलल बा कि एक एक परिवार के तीन तीन चार चार छह लोग, पच पच छह लोग, एक ही परिवार के लोग बैठल हूँ। लेकिन बाबूजी जब विमान उड़ान ले ले बा, उड़ान ले ले बा तो भयल का बाटे, तरज बा मास्टर का तरज बा।

0: फीट से नीचे विमान गिरने लगा बाबू। देखते ही देखते एक मिनट के अंदर, डेढ़ मिनट के अंदर वो जहाज नीचे आकर के एक मेडिकल कॉलेज था बाबू, और उसी मेडिकल कॉलेज के जो मेस होता है उसी मेस के ऊपर आकर के वो जहाज गिरी है। जमुना मेस में मेडिकल के बच्चे, मेडिकल के पढ़ाने वाले प्रोफेसर, तमाम तरह के लोग खाना खा रहे थे, और उसी समय ये जहाज जब क्रेश हुई है उस पर, मेडिकल कॉलेज पर गिरी है, कोहराम मच गया, आग की लौ धधकने लगा उस मेडिकल कॉलेज के ऊपर और उस जहाज के अंदर, जिस जहाज में 242 लोग बैठे थे। भयल का बाबू,
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।

0: संपर्क करें 9939356923।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंद स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
9: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
10: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
11: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
12: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

0: ने पहुंचा दूरदर्शन।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को सौंपी पहली किस्त की राशि। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर आज पटना में विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन। मतदाता सूची से छूटे हुए और युवा मतदाताओं के लिए प्रदेश में शुरू हुआ विशेष पंजीकरण अभियान। और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अब से थोड़ी देर बाद पुणे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाया जाएगा। श्री चौधरी आज पटना में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों के लिए आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। श्री चौधरी ने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा दिए बिना बिहार को विकसित राज्य नहीं बनाया जा सकता है।
2: हम लोगों ने बड़ा टारगेट लिया है, ये बड़ा चैलेंज है साथियों, कि सम्राट चौधरी की सरकार ने तय किया है कि बिहार में 1 करोड़ परिवार को उद्यमी बनाने का काम हमारी सरकार करेगा साथ। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, मैं जानता हूं। इसके बावजूद हम लोगों ने तय किया है कि बिहार को बदलना है।
1: कार्यशाला को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बिहार के उत्पादों को वैश्विक बाजार मिले।
3: हमारी मंशा है कि बिहार के किसी भी छोटे गांव में बनने वाले उत्कृष्ट उत्पाद केवल स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, वह देश के महानगरों से होते हुए विश्व के बाजारों तक अपनी पहचान बना सके। हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक इन बिहार की भी चिन्ह गुणवत्ता, विश्वास और उत्कृष्टता के साथ पहचान बने।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना के तहत चयनित 9,000 से अधिक लाभुकों के बीच पहली किस्त की राशि का वितरण किया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आज पटना में विपक्षी दलों राजद, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वामपंथी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और VIP प्रमुख मुकेश सहनी समेत विपक्षी दलों के कई वरिष्ठ नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। बाद में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। श्री यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि लोगों को मताधिकार से वंचित करने के खिलाफ विपक्षी दलों का आंदोलन जारी रहेगा।
4: जिस हिसाब से फर्जीवाड़ा पूरा इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, ये चलने वाला ज्यादा देर तक नहीं है। पोल जो है खुल चुका है, इनका जाने की शुरुआत जो है हो चुकी है।
1: जिला मुख्यालयों में भी विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में मतदाता सूची से छूटे हुए और युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 1 महीने के विशेष पंजीकरण अभियान की शुरुआत हुई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारी पात्र युवाओं की पहचान कर फॉर्म 6 भरवाएंगे और मतदाता सूची में उनका पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे। जरूरत के अनुसार मतदान केंद्रों पर भी शिविरों का आयोजन किया जाएगा। विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवार कल तक नामांकन वापस ले सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच में 4 शिक्षक और 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 152 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। इधर निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए कुल 5,32,847 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। सकेंगे। इनमें 4,92,594 मतदाता स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के, जबकि 40,253 मतदाता शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के हैं। एनडीए विधानमंडल दल की कल शाम पटना में बैठक होगी। बैठक में गठबंधन के सभी विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में विधान परिषद चुनाव की रणनीति और आपसी समन्वय पर विचार विमर्श होने की संभावना है। प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के कारण निर्वाचन विभाग ने शिक्षा विभाग को प्रक्रिया स्थगित रखने का निर्देश दिया है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्थानांतरण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। वस्तु और सेवाकर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म करने और कर अपराधों में अभियोजन की सीमा 5 करोड़ रुपए करने का फैसला किया है। पहले यह सीमा 1 करोड़ रुपए थी। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि जीएसटी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और मौजूदा दर संरचना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानक अपनाने की भी सिफारिश की है। वैशाली में 11 से 13 दिसंबर तक पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होगा। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप परिसर में होने वाले इस सम्मेलन की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में वैशाली की जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ी, जबकि पर्यटन, कला और संस्कृति तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अब से थोड़ी देर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ पुणे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 75 वर्षीय नाना पाटेकर ने आज सुबह गोवा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली, एक श्रद्धांजलि।
1: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
2: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951

0: लेकिन हमारा धर्म एक है, मतलब एक है, इंसानियत।
1: तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए।

0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा जगत ने एक महान और बहुमुखी कलाकार को खो दिया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार और विधान परिषद के उपसभापति डॉ. राम वचन राय ने नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पटना के गांधी मैदान स्थित जेपी कोलंबर पर आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोगों ने जेपी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के लिए रामविलास पासवान के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जयंती 5 जुलाई को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने पिता और पार्टी के संस्थापक को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय राजनीति में उनके योगदानों को याद किया। उन्होंने दिवंगत नेता की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया है। आर्थिक अपराध इकाई ने मुंगेर में पदस्थापित योजना एवं विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता नारद कुमार दास के 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओयू ने मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना जिले में कार्रवाई की है। जांच एजेंसी के अनुसार नारद कुमार दास के पास ज्ञात वैध आय से 83,53,000 रूपये से अधिक संपत्ति होने का साक्ष्य मिला है या उनकी आय लगभग 65% अधिक है। चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। किशनगंज के तैयबपुर में सबसे अधिक 183 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं सहरसा के सत्तरकटैया में 106 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिले में धूल भरी आंधी चलने के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।
1: दिनांक 9 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। वे वैशाली जिले के रहने वाले हैं। जापान के नागोया में 18 से 24 अक्टूबर तक होने वाले इन खेलों में प्रमोद भगत के साथ पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल भी तिरंगा थामेंगी। प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश और बिहार का नाम रोशन किया था। यूएनआई के वरिष्ठ पत्रकार और बिहार झारखंड के प्रदेश कोऑर्डिनेटर विनय कुमार की पत्नी प्रेमलता का आज सुबह निधन हो गया। उनके निधन पर पत्रकारिता, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। गया जिले के धनगाई थाना क्षेत्र के जंगल में तलाशी अभियान के दौरान एसएसबी और पुलिस की टीम ने जमीन के नीचे छिपा कर रखे हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 9 एमएम की कार्बाइन, मैगजीन और 92 कारतूस बरामद किए गए। कटिहार जिले के रोतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने एक कार से लगभग 18 लाख रूपये मूल्य का 150 ग्राम स्मैक बरामद किया है। इस मामले में कार सवार 3 पुरुष और 1 महिला की गिरफ्तारी हुई है। जब्त कार कटिहार नगर निगम के एक वार्ड पार्षद की बताई जाती है। सुपौल जिले के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से एसएसबी की टीम ने अलग अलग कार्रवाईयों में 163 किलो गांजा और भारी मात्रा में पान मसाला के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को सौंपी पहली किस्त की राशि। मतदाता सूची के विशेष कान पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर आज पटना में विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन। मतदाता सूची से छूटे हुए और युवा मतदाताओं के लिए प्रदेश में शुरू हुआ विशेष पंजीकरण अभियान। और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अब से थोड़ी देर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ पुणे में होगा अंतिम संस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:47 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क। करें।
3: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: 242 लोग जो विमान के अंदर बैठे थे, सभी लोगों की मौत हो जाती
1: है। हाय हाय हाय।
0: 242 लोग में केवल एक मात्र आदमी उस इतना भीषण दुर्घटना में बच गया। कहल जला कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। 242 में वो भी था जिसका नाम विश्वास बताया गया। विश्वास नाम का व्यक्ति, दो भाई, दोनों भाई बैठे थे, एक भाई आगे था, एक भाई पीछे बैठा था। जो विश्वास बचा है उसमें से, उसके देह पर खरोच भी नहीं आई है। 242 लोग में 241 लोग मर चुके, जल करके राख हो गए, लेकिन वो एक व्यक्ति विश्वास नाम का व्यक्ति बच गया, शरीर पर खरोच तक नहीं आई। बाहरे भगवान, तेरी भी लीला गजब है। इसीलिए कहा जाता है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। नतीजा निकलल का बाबू, कोहराम पूरा विश्व में कोहराम मच गया। लंदन जाने वाली फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस इंडिया से उड़ान ले रही थी, लंदन जा रही थी, क्रेश कर गई। 241 लोग मर गए। इतना ही नहीं, 241 लोग तो उस जहाज में थे, और जिस बिल्डिंग पर गिरी है, मेडिकल कॉलेज के मेस में जो लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग, वो लोग भी, बहुत लोग घायल हुए उसमें। मीडिया में तो अभी बता रहा है कि उसमें का 3 लोग मर गए, 3 लोग गुजर गए, लेकिन और ज्यादा लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जो कि 12 जून को ये घटना है, 12 जून का ये घटना है, और 13 जून को 10-11 बजे के करीब में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी उन लोगों से मिलने के लिए गए जो लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तो बाबू, नतीजा निकला क्या? आगे कवि जी लिखलन है, का लिखलन मास्टर?

उस बिल्डिंग में भी, जिस बिल्डिंग में जहाज लड़ी थी, जिस बिल्डिंग के ऊपर जहाज गिरी थी, उस बिल्डिंग के लोग भी बहुत जान को गंवा बैठे, बहुत लोग घायल हुए। लेकिन कहल गेल, का कहल गेल,

सरकार इंडिया सरकार जब पता चला है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उद्यान मंत्री सभी लोग वहां जुट रहे हैं, पैसा से मदद कर रहे हैं, पैसे लोगों को दे रहे हैं, लेकिन उन यात्रियों के परिजनों का कहना है जो यात्री मर गए, इस दुनिया से अलविदा हो गए, उनके परिवार वाले रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और सरकार से एक बात कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। का गुहार लगावत हूं भैया? सरकार से गुहार लगावत हुए लोग, परिवार के परिजन लोग, परिवार के लोग कि अरे करे सब रुदन।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
7: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
6: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
7: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
6: कहाँ?
7: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
1: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
1: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन, डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ, डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
1: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-999-27-982।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62-112 पे।
12: परिजन लोग जे जे जहाज के अंदर मर गए बाबू, ओकर परिवार जन आज सरकार से गुहार लगावत बाकी साहब। पैसा आप दे रहे हैं, पैसा से क्या हमारा जो आदमी चला गया मर गया वो आ सकता है, उसकी जान मिल सकती है? ऐसा काम मत कीजिए, पैसा से लोगों को खरीदने की कोशिश मत कीजिए, पैसा से ईमान मत खरीदिए साहब। अगर करना ही है आपको तो अपने हिंदुस्तान के अंदर अपने नियम कानून में बदलाव लाइए।
13: अरे वाह,
12: जितनी पुराने जितना पुरान जहाज बाड़िंसन ए पुरान जहाजन के बदल के नया करे के कोशिश करा, या तो ए पुरान जहाजन के रिपेयरिंग करा।
13: वाह,
12: खैर जो भी हो अब तो जाने वाला चला गया, अब वो आ नहीं सकता है बाबू, लेकिन ये जहाज क्रेश कैसे हुई अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकला है। इस पर मीटिंग पर मीटिंग हमारी सरकार हिंदुस्तान की सरकार कर रही है, लोग कर रहे हैं कि आखिर क्रेश होने का कारण क्या है। अब उस जहाज में एक यंत्र होता है जिसमें उड़ान जब जहाज वो लेती है या कितने दूरी पर आकाश में जा रही है, फिर क्या उस जहाज के अंदर जो भी होता है उसमें डेटा होता है। अब जब वो यंत्र मिलेगा उस जहाज का तब पूरा खुलासा हो जाएगा कि आखिर जहाज के क्रेश होने का कारण क्या था। कवि जी टेरी के अंदर भाव दिए हैं क्या? बड़ के दा मास्टर, और बढ़ जा

0: सुख गई जीवन की सब हरियाली।
1: कवि जी एक बात लिखलन है, का लिखलन? अल्लाह के लाइन दिहल गई।

0: आखिरकार बाबू अनुमान लगाया जा रहा है कि विमान के यात्री से लेकर के और जो मेडिकल कॉलेज पर जहां विमान क्रेश की है ओ वहां से लेकर के 250 लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, करीब करीब इतना 250 लोग के मरने की अनुमान है। आखिर ये क्या हो रहा है? ये विधि का विधान है बाबू। हम कहते हैं कि आज लोग जगह जगह ये घटनाएं होती जा रही है, आए दिन सुनने को मिल रहा है ऐसी घटना, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
1: वाह,
0: सरकार को ध्यान देना चाहिए, काहे कि इतना बिजी लोगों का लाइफ हो चुका है, लोगों का इतना बिजी जिंदगी हो चुका है कि कम समय में बहुत कुछ करना लोग चाहते हैं, इसलिए हवाई सफर करते हैं। तो कवि जी अंतिम प्रमाण में गाना का एक लाइन दिलन बढ़ के दम आस्टर कि जबला सारा विभाग में कड़ाई ना होई

अगर कड़ाई ना हुई विभाग में, कौनो विभाग में, कौनो लाइन में सरकार कड़ाई ना करी, तो आए दिन ऐसा रोज घटना सुने के मिली और देखे के मिली। कवि जी के ये कहना बाका, जब ले दोषी पर विशेष कार्रवाई ना होई, ए भैया जब ले दोषी पर विशेष कार्रवाई ना होई, तब ले देश या समाज के भलाई ना होई।

0: श्रोता लोगिन ई रहल रेडियो रिमझिम पर आज के बिरहा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि आज के बिरहा रवा सभी के बहुते अच्छा लागल होई। तो अगर रवा सभी चाहत बानी ए पर अपन सुझाव या शिकायत हमनी तक पहुंचावे के तो हमनी के व्हाट्सएप नंबर बा 98527888291 और ईमेल आईडी बा radiorimjhim@gmail.com और हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज पिन कोड 84 14 28। रोज सभी कोनो भी माध्यम से अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेज सकत बानी। तो चलिए अब हमके जाए के दी इजाजत, नमस्कार और इस सुनत रहे अपना बोली के पहचान रेडियो रिमझिम 90.4।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझिम, सुनो दिल से।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए।

0: मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
1: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
2: रेडियो रिमझिम
1: सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
6: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
7: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
8: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
8: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
8: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
8: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
9: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी। संतोष फर्नीचर डॉक्टर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम।
10: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
9: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
9: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
9: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90

0: सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to 10,000.
0: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेट थ्रेशोल्ड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशो भूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
3: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
4: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीपफेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
5: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को एआई का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है एआई का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
3: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
4: आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगरपालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
5: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूं।
3: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: सेंसेक्स 1,045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 रुपए पर बंद हुआ।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
7: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं, इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में लगभग सभी ब्लॉक्स में 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
1: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुर्गन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening, this is Akashwani, I am VC Pramod with the news at 9. The headlines, GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees, no changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says, growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential, calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within next month to ensure AI safety and tackle deepfakes, announces Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classic.
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
11: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
10: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
11: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
10: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
11: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
10: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
11: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
10: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
11: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
10: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
10: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
11: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
11: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
15: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। जिला जज ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। शिक्षक निर्वाचन को लेकर मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण की तैयारी शुरू। 1 महीने तक अभियान चलाकर मतदाताओं का किया जाएगा निरीक्षण। उद्यमी योजना के चिन्हित लाभार्थियों को मिली प्रथम किस्त। पैरा खिलाड़ी ने जीता गोल्ड मेडल और मजदूरों का कराया गया रेस्क्यू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिला जज श्रीमती गीता गुप्ता की अध्यक्षता में आज बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान गोपालगंज सदर प्रखंड के कटघरवा पंचायत के खाप मकसूदपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती गीता गुप्ता ने तमाम न्यायिक पदाधिकारियों के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी। बिहार विधान परिषद के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 2026 के सफल और सुचारू संचालन को लेकर जिले में प्रतिनियुक्त मतदान दल के पदाधिकारियों और कर्मियों का प्रशिक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू किया जाएगा, इसकी तैयारी कर ली गई है। प्रथम चरण का प्रशिक्षण 10 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 16 अक्टूबर को अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक जिला परिषद गोपालगंज के सभागार में आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस दौरान पीठासीन अधिकारी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान पदाधिकारी तथा माइक्रो ऑब्जर्वर के कार्य एवं दायित्वों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इधर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के आदेश के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के उपरांत निर्वाचक सूची में छूटे हुए तथा युवा और प्रथम बार पात्र मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 11 अक्टूबर से 1 महीने तक का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत BLO द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण से पूर्व की निर्वाचक सूची और वर्तमान निर्वाचक सूची का मिलान कर ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया जाएगा जो पूर्व की सूची में शामिल थे लेकिन वर्तमान सूची में सम्मिलित नहीं है। चिन्हित मतदाताओं के घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा और अहर्ता पाए जाने पर प्रपत्र 6 के माध्यम से अनिवार्य रूप से निर्वाचक सूची में पंजीकरण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत अंतिम रूप से चयनित एवं प्रथम चरण के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए पटना के बापू सभागार में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें MSME केंद्र का उद्घाटन करने के साथ ही चयनित लाभुकों के बीच योजना के प्रथम किस्त की राशि का वितरण किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी गोपालगंज एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया और चयनित अभ्यर्थियों को उद्यम स्थापना, वित्तीय सहायता के समुचित उपयोग एवं परियोजना संचालन से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। जिला पदाधिकारी ने लाभुकों को निर्धारित परियोजना के अनुरूप राशि का उपयोग करते हुए अपने उद्यम को सफलतापूर्वक संचालित करने की शुभकामनाएं दी तथा संबंधित अधिकारियों को लाभुकों को आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। उचका गांव प्रखंड के नितेश सिंह ने पैरा ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीतकर राज्य, देश और जिले का नाम रोशन किया है। बताया जा रहा है कि उनके इस उपलब्धि के पीछे गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का सराहनीय सहयोग रहा है। नितेश सिंह ने गोपालगंज के सांसद का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गोपालगंज के सांसद से पैरा ओलंपिक गेम में खेलने के लिए किट का सहयोग मांगा था। किट की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है और उन्हें किट उपलब्ध कराने में गोपालगंज के सांसद ने अहम भूमिका निभाई थी और उसी किट से उन्होंने तैयारी की और अपने मेहनत के दम पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर राष्ट्र का नाम रोशन किया। इसके बाद उन्होंने गोपालगंज के सांसद का आभार व्यक्त किया। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में बैकुंठपुर के लगभग दर्जन भर मजदूर फंसे हुए थे। उन्होंने वीडियो जारी कर बैकुंठपुर के विधायक, सरकार के शिक्षा मंत्री और गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक से सहायता की गुहार लगाई थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया में भी इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी और सरकार के शिक्षा मंत्री और बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी ने इस वीडियो के आधार पर मामले का संज्ञान लिया और पुलिस अधीक्षक ने रतलाम के पुलिस अधीक्षक से बातचीत की, जिसके बाद रतलाम पुलिस उन मजदूरों से संपर्क कर सुरक्षित उनका रेस्क्यू कराई और वहां से मुक्त कराकर सभी मजदूरों को ट्रेन में बिठाकर उनके गृह जिला गोपालगंज के लिए रवाना किया गया। मजदूरों ने गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी और बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी का आभार व्यक्त किया। हथुआ थाना क्षेत्र में एक युवती से मारपीट करने और चाकू का भय दिखाकर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपी सिराज अहमद उर्फ नामू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह रूपंचक प्रीतम शाह के टोला निवासी जमीर अंसारी का पुत्र है। गिरफ्तार आरोपी को पूछताछ करने के बाद आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर धान अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 के लंबित CMR के समतुल्य अवशेष धान की राशि संबंधित पैक्स समिति के कैश क्रेडिट खाते में 13/10/2026 तक अनिवार्य रूप से जमा कराने का निर्देश दिया गया है। सभी शाखा प्रबंधक और पैक्स के अध्यक्ष तथा प्रबंधकों को यह राशि जल्द से जल्द जमा करने का निर्देश दिया गया है। हथुआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने 88 लीटर देशी शराब के साथ दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और एक ई रिक्शा भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यह कार्रवाई छोटा कोइरली के पास की। यहाँ ई रिक्शा को पकड़ा गया, इसके अंदर से शराब मिली, जिसके बाद इस मामले में अंकुश पटेल पिता उमेश पटेल और गोविंद कुमार यादव पिता योगेंद्र चौधरी, ये दोनों साकिन गंभीरपुर थाना नौतन जिला सिवान के निवासी हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी ई रिक्शा और शराब को जब्त कर दोनों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त सुरेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह रघुनाथ यादव के पुत्र हैं और बथुआ महुआ टोला निवासी बताए जा रहे हैं। इन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी जयचंद शाह उर्फ जयचंद गोड़ बताया जा रहा है, जो बढ़वा का निवासी है। पहले से इस पर मामला दर्ज था, पुलिस ने इसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार करते हुए आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज गोपालगंज में इंडी गठबंधन के तमाम अलायंस पार्टनरों ने सरकार के विरुद्ध जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद यहां गोपालगंज में जिला पुलिस अलर्ट थी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर सभी चौक चौराहों पर तमाम पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों को तैनात किया गया था, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन को संपन्न कराया जा सके और प्रशासन की सक्रियता से प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। इस दौरान जोरदार तरीके से इंडी गठबंधन के तमाम अलायंस पार्टनर के नेताओं ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और केंद्र सरकार के नेताओं का पुतला दहन भी किया। उचका गांव थाना की पुलिस ने भी 115 लीटर से अधिक देशी शराब को जब्त किया है। इसमें तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि वाहन जांच करते हुए पुलिस ने उचका गांव के नवादा परसौनी के पास नदी के किनारे झाड़ी से 115 लीटर से अधिक देशी शराब को बरामद किया, जिसे जब्त किया गया है। इस दौरान तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने शराब को जब्त करते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए आवश्यक अनुसंधान शुरू कर दिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला जज ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। शिक्षक निर्वाचन को लेकर मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण की तैयारी शुरू। एक महीने तक अभियान चलाकर मतदाताओं का किया जाएगा निरीक्षण। उद्यमी योजना के चिन्हित लाभार्थियों को मिली प्रथम किस्त। पैरा खिलाड़ी ने जीता गोल्ड मेडल और मजदूरों का कराया गया रेस्क्यू। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
16: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
17: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
18: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
17: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
18: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
17: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
18: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
17: संपर्क करें 84710309 या 97665750।
19: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
20: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
19: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
20: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
19: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
20: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
19: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
21: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894470 या 9198886973।
22: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
23: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
24: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
25: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
24: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
25: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
26: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
27: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
26: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
28: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
29: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
19: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
30: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
19: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
21: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
19: संपर्क करें 9939365923।
31: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
32: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू। सो

अरे आप अच्छे गाने का फरमाइश करें। एक सुरतागढ़ कल थे जो हमारे पास मैसेज किए हुए थे और उनके तरफ से गाने के फरमाइश ऐसी पहुंची थी जिसको चेंज करना पड़ा, तो आप डायरेक्ट गाने के फरमाइश वैसे करें जो चेंज ना करना पड़े, डायरेक्ट आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। तो आप फरमाना चाहते हैं तो फरमा सकते हैं, अभी कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है, यदि जितने जल्दी आप फरमाइश हमारे पास भेजेंगे उतनी जल्दी आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा। मेरा पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मैंने तुझको चाहा ये मेरी मेहरबानी। सुरेश जी त्रिबिरवा से जुड़े हुए थे, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, नमस्कार गाना आ लौट के आजा मेरे मित, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। नाम सगीर अंसारी फ्रॉम तेजपुर शाम से डेडिकेट दिलीप राम जी को और कमरान को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें और आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हुए पहले गाने के फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं। सुरेश जी की फरमाइश सुनते हैं हम सब रेडियो 96.4 FM पर।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रेडियो एम जी एम 94 FM पे सुन रहे थे। और यदि आप भी इस तरह के गाने सुनना चाहते हैं, इस तरह के गाने पसंद करते हैं, तो बिल्कुल आप फरमाएं और आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी की जाएगी। और यहाँ पे कुछ मैसेज और भी पहुँचे हुए, तो मैसेज देखते हैं। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि अर्ज किया है जो मेरा ना था वो मेरा हो ना पाया, अर्ज किया है जो मेरा ना था वो मेरा हो ना पाया, आँखों में आंसू थे मगर मैं रो ना पाया, एक रोज़ उसने कहा हम ख्वाबों में मिलेंगे, और मेरी किस्मत तो देखो उस रात में सो ना पाया। सुनो भाई नमस्कार, और कैसे हैं आप सब, मस्त है ना? बिल्कुल मस्त, आप सबके बीच उपस्थित हूँ और आप लोगों का साथ रहेगा तो कार्यक्रम भी मस्त और गाने की फरमाइश भी मस्त आएगी, तो मिजाज भी मस्त रहेगा। और कहते हैं कि आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, रोहित देहरादून से गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ। अभी मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर, कैसे हैं, नाइस प्रोग्राम, मैं भी जुड़ गई हूँ निशु फ्रॉम झिरवान से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मिसेज पहुंचा हुआ है सोनू बाबू, हम भी जुड़ गए हैं और मैडम भी जुड़ी हैं, और इन्हें एक मेरे माध्यम से गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल स्वागत करते हैं आप दोनों का, बन रहे हमारे साथ। गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश। यहाँ पे पहुँचा हुआ है सगीर अंसारी जी के तरफ से गाने का, बोल देते हैं आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
0: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

रसा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम जिम 94.4 FM पे और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहाँ से मैसेज करें यानी कहाँ से रेडियो सुन रहे हैं उस जगह का नाम बताना है। कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पर आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो हम शामिल करते हैं। और मेरा नंबर 72 77 16 65 96 शो का, तो आप ज़रूर मैसेज करें यदि आप गाने पुराने पसंद करते हैं। तो पहला मैसेज अभी का पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि धन्यवाद सर, चलिए आप सॉरी लिखा गया है कि धन्यवाद, चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है रोहित जी के तरफ से और गाने का बोल दिया गया है बावला हूँ मैं बावला। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सब रेडियो रमझम 94.4 FM पे।

कमल के शाम रेडियो 94.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनो भैया जी आपका गाना प्ले करने के लिए, और कहते हैं थैंक यू। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एमजेम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मधुसरिया से, राजू कुमार कहते हैं कि सॉन्ग सुनना है, तो आज तो नहीं सुनाएंगे, कल ही आपकी सॉन्ग की फरमाइश पूरी किए थे। और सप्ताह में एक ही बार मौका मिलता है, अगर जगह खाली बनेगा तो हम आपको बताएंगे कि आप गाने की फरमाइश करें। और यदि आप मैसेज पहुँचाए हुए हैं जगह बनता है तो आपकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश रहेगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि आपके गाने प्ले होंगे ही होंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज पहुँचाने वाले वीरेंद्र गुप्ता भैया एंड लवली गुप्ता, और इन दोनों के तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है। फिल्म उपहार से स्वर लाता जी की सॉन्ग है तुम ही रे नगरिया तुम ही रे समरिया, डेडिकेट रोशनी शफाक हिना हजरा शुलोनी आशा निशा शाहजहाँ शाबा निशा गुड़िया मनीषा ब्यूटी नीतू और हमारे साथ आपको और दिलीप भाई को और हमारे जानने पहचानने वाले सभी श्रोताओं को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और यहाँ पे एक और भी मैसेज पहुँचाए हुए कहते हैं कि क्या बात है सभी शहरों के साथ और सभी वालियों के साथ, आगे की मैसेज समझ नहीं आ रही, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं आपकी और सुनते हैं हम सब रेडियो 94.4 FM पे।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे सोशल लाइफ में इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, शुक्रिया सोनू बाबू सॉन्ग प्ले करने के लिए। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए और आपके साथी को भी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि तेरी है ना मेरी है, तेरी है ना मेरी है, वक्त का हेरा फेरी है। रीता गुप्ता त्रिवरवा से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नाम विनोद कुशवाहा, पता हनुमान क्रिक, मुझे गाना सुनना है नाना पाटेकर की याद में पीले पीले, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हेलो प्रणाम सलाम सर जी, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे ऑल लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ, निशा भारती विलेज उजवलिया उचका गांव प्रखंड से, और सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल है राजा मूवी से नजरें मिली धड़कन ने कहा, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और ऑप्शन में भी सॉन्ग है, दूसरा अब कैसा घबराना है, अब कैसा, बिल्कुल नहीं घबराना है लेकिन गाने तो एक ही प्ले होंगे, ऑप्शन में दी गई है। और कहा जा रहा है कि दोनों में से कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए, डेडिकेट करती हूँ आपको एंड सोनी मैम, श्रुति मैम, दिव्या मैम, भारती मैम, मनोरमा मैम, निशा सिंह एंड निशा पांडे, सुधा सिस्टर बतरदे वाली और शिल्पी सिस्टर, रोशनी सिस्टर, साइदा अंसारी एंड प्यारे प्यारे ऑल लिसनर को। इसलिए ऑल लिसनर के साथ एंजॉय किया जाए। रेडियो रमजीम 90.4 एफएम पे आपके गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं।

टुडे एमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। यदि आप भी सुनना चाहते हैं और अब तो समय की समाप्ति होने वाली और बहुत कम समय मेरे पास बचे हुए हैं, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोना भाई नमस्कार, और शुरुआती सॉन्ग से लेकर शगीर जी, वीरेंद्र गुप्ता भैया और सॉन्ग सुपर सुपर, बिल्कुल आज प्यारे प्यारे गाने की फरमाइश पहुंचे हुए थे। और इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम जी दिल्ली से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सो मच, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है नाना पाटकर जी की रील वाली सॉन्ग, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और यहाँ पे संदेश भी दिए हुए हैं कि नाना पाटकर की आज श्रद्धांजलि मना रहे हैं सभी भारतीय, और रिमझिम में जितने भी सभी को गाना सुनाना चाहते हैं, बिल्कुल सुनाइए। और चलिए आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

कमाल के शाम रेडियो रेम छम 9.4 FM पे सुन रहे थे। अभी हम सभी और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है सुपर सॉन्ग वेरी नाइस मैसेज करती है निशा भारती, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है गाना बजाने के लिए धन्यवाद। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रेम छम सुनने के लिए, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है अगली गाने का फरमाइश प्ले करते हैं, और इसी फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम को भी समाप्त करेंगे। यहाँ पे अगले गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, और लिखा गया है कि हाय सर, आई एम तृप्ति फ्रॉम नवादा गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है क्यों ना बोले मुझसे मोहन कैसे मनाऊं, सुनवाना चाहती हूँ अपने सिस्टर एंड आपको। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, और साथ ही इस कार्यक्रम को भी समाप्त करते हैं क्योंकि समय जो है हो गए हैं, और गाने प्ले करने के बाद से फिर से मौका नहीं मिलेगा। हर रोज तो मौका दिया जाता है एक अंतिम गाने प्ले करने की, लेकिन आज इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। आगे एक और मैसेज पहुँचा और लिखा गया है कि निशा जी की सुपर सॉन्ग और पीले पीले ओ मेरी जानी सुपर सॉन्ग। दिलीप जी मैसेज करते हैं बिल्कुल सुपर सॉन्ग रहे दोनों, और अंतिम गाने भी इंजॉय किया जाए, और साथ ही साथ हमें दीजिए जाने की इजाज़त। आप सब सुनते रहे रेडियो रेम छम 9.4 FM जो हमें सस कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिकू कुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1।

समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: अनु
1: ये हमार ना सुनी, जा जाके तू ही समझावा जा। अरे बेटी हम कहले रहली ना, ये बैल हो बैल ही ना सुधरी।

0: परेशानी, हम जाता नहीं, बड़ा जरूरी मीटिंग बा।
1: आज के जवान मीटिंग में परेशान, बात करते हैं।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: खेती में जान देवे के ओके उ देव, हमरा नहीं खे देवे के अनु।
1: ये हमार ना सुनी, जा जाके तू ही समझावा जा। अरे बेटी, हम कहले रहली ना, ये बैल हो बैली ना।

0: हाँ तो करा लोग किसानी, हम जाता नहीं, बड़ा जरूरी मीटिंग बा।
1: आज के जवान मीटिंग में परेशान, बात करते
2: हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आए तोहरा नखरा जैसन फिल्म की रनिया के बाप तोहरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा बाप तोहरा छोड़ गईले हमरे अंगनवा।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार।
2: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
1: हाँ मैडम, मैं 11 बजे से ट्राई कर रहा था, आई लव यू। मैं भी डेली रेडियो रंजीम सुनता हूँ और बहुत इच्छा थी कि मेरी भी एक गाना बज जाए, लेकिन आज वो इच्छा पूरी हो गई। मेरा गाना है प्रसन्न वदनम सौभाग्यदा, संस्कृत श्लोक है
2: जी।
1: इसको प्लीज बजा दीजिएगा, मैं ये खुद सुनना चाहता हूँ और रेडियो रंजीम के ऑल लिसनर को मैं सुनाना चाहता हूँ।
2: नाम बता दीजिएगा अपना।
1: मेरा नाम धनंजय कुशवाहा, कैलगढ़, बिहार।
2: जी जी, गाना किसको सुनवाना है?
1: गाना मैं रेडियो रिमझिम के ऑल लिसनर को सुनाऊंगा और मैं खुद सुनूंगा और आपको भी सुनाऊंगा।
2: जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: शुक्रिया,
2: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपके ड्यूरिंग मिशन 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: सुरभि बोल रही हूँ, जो कॉलेज में आ रहा।
0: जी जी कैसी हैं सुरभि जी?
1: ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप क्या कर रही हैं?
1: कल लगा रही थी।
0: जी आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: हमको सुनना है जिंदगी।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है? जी तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: सुनंदा
0: बस सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो, सलाम अलैकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम।
6: रेशमा बोलते हैं पठानपट्टी से।
7: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: कैसन बन जी?
7: हम ठीक बनी, रोवा बताई, रोवा कैसन बानी?
6: ठीक बनी हम।
7: सब का होता हुए है?
6: सीरियल देखा तो नहीं।
7: अच्छा,
6: याद कर तो नहीं। और सब बताई?
7: और सब तो ठीक बा।
6: ठीक बा घर पर सब ठीक बा?
7: हाँ,
6: रहा तुम जी भेटा नहीं थी।
7: अच्छा, आज तो भेटा गई नहीं?
6: आज तो भेटा गई। और सब कल बनी?
7: हाँ, नाश्ता पानी हो गई बा। तब बता दी आज कौन सा गाना सुने?
6: गाना सुने के बाद नसीब फिल्म के।
7: अच्छा, गाना के बोल?
6: गाना का बोल बा, हमको मिला नहीं जो नसीब में नहीं था, ये लग सुना दे।
7: अच्छा जी, चले ठीक बाबे।
6: बाल से भोजपुरी में आजकल बात होता जी?
7: सब क्यों भोजपुरी है के डिमांड करे तो का कर जाओ।
6: सुन रहे करनी है, बड़ा भोजपुरी से बात होता रहता से। सही बात बोले तो भोजपुरी सही लागे ला। बोले थोड़ा सब तो हिंदी बोलते वाले की जैसे अपन भाषा बतियाओ तो सही रहे।
7: तब गाना क्यों सुनेबो करे? हम
6: गाना सुने हम नॉर्मल में सुने रानी बाड़ी, करिश्मा बाड़ी, हरि के नाम रखता, विश्राम बड़न, निशान बड़न, पप्पू बड़न और सब कोई जितना लोग हमारा चिन्ह था सब कोई सुनी, सब कोई का नाम याद नहीं थे उतना।
7: हाँ जी जी, कोनो बात नहीं है, सब हरिये बोल दे।
6: हाँ, सब हरे बोल दे, सब कोई हमारा गाना सुनी जे जे हमारा चिन्ह था जाना था।
7: ठीक
6: तो बोलने वाला सुनने वाला।
7: चलिए ठीक बात, आप रेडियो रूम से कॉल करनी है खाती, बहुत बहुत
6: ठीक।

0: मैम
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: मैम हम जाकिर हुसैन बिहार गोपाल यादवपुर से।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: सब ठीक है मैम, अपना बताइए।
1: मेरा भी ठीक है
0: जी मैम। आज हम भी सोचे रहे थे कि हर कॉल लगाएंगे तो कॉल लगाएंगे, कॉल लगाते लगाते कभी भी थक जाते हैं ना। हाँ तो इसीलिए हम कॉल लगाइए क्या मानेंगे, तो 11 बजे 1 मिनट लगा रहे हैं।
1: अच्छा तो अभी तो लगातार कॉल आए जा रहे हैं, आप जिसका आ जाए।
0: कोई टाइम नहीं दे।
1: हाँ
0: जी मैम, गाना सुनना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा।
0: जी मैम, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया।
1: जी और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: जी मैम, हमारे दोस्त लोग हैं सूफी आलम, मेराज आलम और हितेश शर्मा और गोविंदा शर्मा, संदीप और सुशील और रेडियो जितने परिवार है वो।
1: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: ओके मैम
1: जी, रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो मैडम
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: मैडम मेरे को गाना सुनना है। सलाम को मैडम।
5: वालेकुम अस्सलाम, आप अपना नाम बता दीजिएगा।
6: ठीक है, शमशेर
5: जी। शमशेर जी कहाँ से हैं आप?
6: पानीपत से।
5: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
6: मैडम मेरे को उतना भी गाना नहीं सुना था जितना मैं अपना गाना सुन सुना था। शीशे का दिल मेरा पत्थर का जवान चीर टूट गया,
5: यही गाना सुनना है।
6: ठीक है,
5: और गाना किसी को सुनवाएंगे जी?
6: हाँ, सबसे पहले आपको, उसके बाद मम्मी को, उसके बाद मेरे भाई को, जितने तमाम सुनने वाले उन सबको।
5: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
6: मैडम मैं गाना कब सुनाऊंगी?
5: ये आपको गाना कल शाम को 5 से 7 के बीच में सुनने को मिलेगा।
6: ठीक है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत रेडियो रूम जिम 90.4 एफएम में।
0: हाँ नमस्ते मैडम
1: जी। नमस्ते
0: जी,
1: जी क्या हाल चाल है आप?

0: अपन सुनाई क्या हाल चल रहा है भाई।
1: हमारे तो ठीक बार रोवा बताए। खाना पीना हो गए?
0: खाना पीना हो गया मैडम। तब कैसन बनी मैडम आप?
1: बस एक पानी।
0: और सब बताई खाना वाना हो गया?
1: हाँ खाना हो गया बा।
0: आज भी पवन सिंह के छठ के गाना सुनूंगी।
1: पवन सिंह के छठ के?
0: छठ के हाँ।
1: गाना के बोल भी बताए।
0: जोड़े जोड़े फालावा जो कैसे ना पवन सिंह गावे हम। वही
1: गाना के होके सुनेबो करे।
0: आती लोग सुनवाए घर में मम्मी पापा के बस।
1: गाना प्ले करता नहीं। रेडियो रंजीम में कॉल करे खाती बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: जी रोज भाई सूर्य प्रणाम बा, कैसन वानी?
2: जी जी हम ठीक बानी, रवा बताई रानी जी कैसन वानी?
3: राधे राधे।
2: राधे राधे।
3: और बताई नाश्ता वास्ता हो गई बा?
2: हाँ नाश्ता हो गई बा।
3: चलिए अच्छी बात बा, नाश्ता कर ले लेवानी बा। और बापरे बापरे हमने के कहे नहीं तो ना गावे नहीं, और दिन बड़ा गावत रही मन तो कवे जो सामने रहती तो खूब जागरा करती।
2: अच्छा ना, कबो कबो मन कर ला गाना अच्छा लगे
3: काय मन करे काय मन करेला हम कही तो काय ना गई बताई ना काय ना गई हमने के मन ना करेला रे मुँह से गाना सुनने के हमने के बेखादी बदी के गावे नहीं। हमके तो काफी गुस्सा हो गया, बाकी गुस्सा आते हुए बड़ा अच्छा लगे, हम कहीं रही तो बड़ा हंसत रहेगी। चला आज तो कसर पूरा कही नहीं ना, और काफी अच्छा अंजाद में गाना गई, अब तो गाना काफी प्यारा रे भजूरी जाए चंदा ले आवा खबरिया। बाप रे धीरे धीरे गावत रहूंगी हम, कितना कही नहीं, कितना दिन से कही नहीं गीत गाई रहूगा, बाकी अच्छा लगे पूरा सपोर्ट बा हमारा तरफ से रहुआ खाते। और सच में दी जब से रोवालो दोनों आदमी आये वानी लो पूरा माहौल के बदल दे वानी लो। और सच में एक बात और हम बताओ चाहते नहीं, और हम हर चैनल पर पकड़ा आ जानी हंसी से, और जो नंबर शब्द बा राधे राधे सब कोई पकड़ लेला क्या आई रानी है।
2: और आवाज राउर शब्द राउर हंसी जनबावे पहले ही पकड़ में आ जाला
3: जी, और खुल के हाथ में हमारा गाड़ी आज हिट दे देता नहीं रोवा के। और एक बात और बताओ तनी, और जो मैसेज पड़े के अंजाद बा काफी बड़ा झकास लगेला, तो कहीं तो निक लगेला रानी की तरफ से बहुत मस्त मैसेज पड़ेगी। और जो ये नया फोन आई बन कम्बा कैसन टाइम पर मोबाइल हमारा हाथ से जला हम छटपटा के रह जानी, और देखी वो रिकॉर्डिंग भेज के रुआ गाना हम छोटी सी अपन आवाज रिकॉर्ड करके भेजे ना चलू थे हटा भी देनी तुरंत, और तुरंत हाथ से फोन चला गए हमारे शंकर जी मैसेज के लिए रही सभी जी के लिए रही क्यों की जवाब हम ना दे पाए। चली बात तो बड़ा झकास आज गाना रवे ऊपर छोड़े भाई, आज तो कौनो कसर ना छोड़े सबरी रवे ऊपर आज
2: गाना फरमाइश हमने ऊपर।
3: हाँ और ना तो कहा हमेशा हम अपने फरमाइश सुन ले बनी रहो लोग तो नहीं पता चली ना।
2: अच्छा चले ठीक है,
3: और ऐसे में तो गाना सिलेक्ट करे के और आवी नहीं लो स्टार्टिंग में गाना काफी अच्छा अच्छा होना
2: तो गाना जन सुने डेडिकेट करें
3: जी खास करके रहुआ के और मुरामना दीवानी और सोनू सर वानी और कुछ रेडियो दोस्त वानी लो तो हम सोनी जी के ना सुना बाकी हुआ के। और आरजे भास्कर जी वानी, देवेंद्र जी वानी, बर्दी जी वानी, आजाद अंसारी जी वानी, संदीप जी वानी, और करिश्मा जी वानी, रेशमा जी वानी, और दोनों भाई बहन वानी लो, और पप्पू जी वानी, और बाकी जितना छूट गए लो रानी की तरफ से सबको ये से खाए ज्यादा बात कर ले वानी। और सॉरी क्योंकि अगर नाम ना ले लो कि हम तो हमारे नाम तो काफी चर्च में चले ला तो सब लोग के, और उमा शंकर जी वानी, और ऐसे ऐसे बहुत चली प्ले करी और पानी पिए रहे रानी तो ज्यादा बात करा के रहे
2: गाना प्ले करता नहीं
3: प्ले करी, और छोड़ के तो दिल नहीं के करत बाकी छोड़ देता नहीं मजबूरी बात और खुल के हंसे के बाद। और दी और ये गाना तो फिर अली जी भी सुन ले।
2: अच्छा जी चलिए ठीक है,
3: और अच्छा चलिए, और कोई मोबाइल मिली तो जरूर जुड़े में ना मिली तो वही तेरा मुखा मार के सुने मन मार के
2: जी रेडियो रिमझिम में कॉल करनी है खाती। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेमिशन 90.4।
0: मैं सुधीर कॉल कर रहा हूँ, कोरिंगीवा जिला देवघर झारखंड से है।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
1: जी हम भी ठीक हैं।
0: जी उधर गोपालगंज का मौसम का क्या हालचाल है?
1: गोपालगंज का मौसम तो अभी काफी सुहाना बना हुआ है।
0: जी इधर भी थोड़ा मौसम धूप वाला है, वो लग रहा है जैसे बारिश होगी।
1: तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है?
0: ये सुना दीजिए फिल्म धरती के पुकार के, लता मंगेशकर और मुकेश आवाज में। गीत के बोल है कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो अहाँए हजूर।
1: सुनाएंगे
0: जी, इससे पहले मैं माको और रेडियो रिम्यूम के जितने भी लिसनर हैं देश विदेशों में सबको सुनाना चाहता हूँ मैं।
1: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिम्यूम 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम।
2: जी हम

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: मुनरमा मैम की भारती मैम
5: जी, मैं भारती बोल रही हूँ।
6: अरे मैम, कब से फोन कर रहे हैं, बिजी बिजी बिजी बता रहा है।
5: जी जी, तो कॉल आएंगे तो बिजी तो बताएगा।
6: बोलिए, खाना हो गया?
5: जी जी, मेरा खाना हो गया। वैसे आपका नाम बता दीजिएगा।
6: मेरा अर्चना देवी।
5: और कहाँ से हैं आप?
6: जी, सोनपुर से।
5: अच्छा जी, आप पहली बार जुड़ रही हैं या दूसरी बार?
6: दूसरी बार जो गए हैं। एक बार सोनी मैम से बात हुआ था।
5: अच्छा जी,
6: हमको गाना सुनना है।
5: बता दीजिए कौन सा।
6: ओ मैया का गाना, जो चंदा चंदा वाला नहीं है, चंदा उछलने के लिए पर्ची।
5: कौन सा?
6: पवन सिंह का गाना है।
5: पवन सिंह का नया है या पुराना?
6: पुराना है।
5: गाने की कुछ लाइन याद है?
6: नहीं, यही चंदा का टाला भौजी, यही सही है गाना। ठीक है, मैं यही सुना
5: दीजिए। बोल रही हूँ गाना किसी को सुनवाना?
6: हाँ, सब कुछ सुनेगा।
5: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।
6: आज बज जाएगा? मैं
5: कल बजेगा?
6: आज नहीं बजेगा। ठीक है, मैं नमस्ते।
5: नमस्ते।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू सुल्तानगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, सुन रहे हैं रेडियो
0: जी। तो अभी कौन सा गाना सुन रहे हैं आप?
1: जी पिक्चर का नाम है सिर्फ तुम।
0: और गाने की बोल?
1: गाने की बोले पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझना है क्या करूं।
0: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: भारती मैम को, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, गजराज गोपाल होता है, जितेंद्र धाकड़ और अमर सिंह भील, इन सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
1: धन्यवाद मैडम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो,
2: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4
6: जी। नमस्कार, क्या हाल चाल है जी?
5: नमस्कार, मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: हम भी बढ़िया हैं। और सब कैसे हैं? कल तो बारिश करवा दिया तो गोपालगंज में, मौसम आपका सुहाना हो गया है।
5: जी जी,
6: बताइए, हम लोग गर्मी से परेशान है महाराज।
5: इधर थोड़ा सा भी ज्यादा गर्मी पड़ता है तो बारिश हो ही जाता है।
6: बताइए, दिल्ली है पहाड़ी इलाका, यहाँ गर्मी पड़ रहा है गोपालगंज में, बारिश हो रहा है, ये तो अन्याय कर रहे हैं हम लोग के साथ। ऊपर वाला
5: पॉल्यूशन ज्यादा है, क्या ही खींचेगा।
6: कम से कम पॉल्यूशन जहाँ पे ज्यादा होता है तो वहाँ पे ना रखना चाहिए, ताकि पॉल्यूशन खत्म हो जाए और आदमी अच्छे स्वच्छ और साफ वातावरण में रहे। बताइए, जहाँ पे खुला एरिया है वहाँ पे बारिश हो रही है, वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी हो रही है तो बारिश हो रही है, हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं।
5: कोई नहीं, आपके यहाँ पे होगा।
6: आंसर कीजिएगा, करना होगा जी। रामसर कहाँ कर रही है आप लोग? होगा बाकी भैया के साली वाला कहाँ? वैसे ही मौसम महाराज बादल आके चेहरा दिखा के चला जा रहा है। और सब बताइए।
5: और सब ठीक है।
6: तो काफी देर से हम लगा रहे हैं, कम से कम 160वां बार लगा है ये नंबर मेरा। और बताइए,
5: आज गाने की फरमाइश।
6: गाने की फरमाइश है, आज हिंदी इतना कहते हैं नादान घुंघरू पायल की।
5: कौन सा?
6: तौबा कहते हैं नादान घुंघरू पायल की।
5: और गाना किसी को सुनवाना भी
6: है? आप हैं, रानी मुखर्जी जी हैं, कबीर भाई हैं, सोनू भाई हैं, मामा भाई हैं, अक्सरी जी हैं, गाटा भाई, मुकेश भाई, उसके बाद भाई हैं, रजत सिंह भाई हैं, उसके बाद जो है सरिता जी हैं, बबीता जी हैं, गुड़िया जी हैं, नेहा जी हैं, रोश जी हैं, और बाकी सबकी सहेली जितना है लोग उनको सुना दीजिएगा। सभी को सुना दीजिएगा। चलिए ठीक है।
5: Okay.

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: इसके लिए भी धन्यवाद। मैं संजय कुमार शाह, ग्राम पोहरा मनसिंगा, पूर्वी चंपारण बिहार के।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: मेरा हाल बहुत बढ़िया है, आपका सुनिए, आप कैसी हैं? आप पूरे रेडियो रिमझिम संपूर्ण परिवार कैसे हैं?
0: हमारे अच्छे हैं।
1: जी जी, आज मौसम का हाल बताइए, उधर के मौसम कैसे रहता है? बारिश होता है कि नहीं अभी?
0: जी, बारिश तो हुआ था और इस समय काफी सुहाना मौसम बना हुआ है।
1: जी जी, इधर भी यही है, अभी धूप को भी छांव चल रही है।
0: हाँ हाँ, तो कौन सा गाना सुनना है आज?
1: आज गाना सुना दीजिए, कितनी दिनों की बात मिले हो जरा मुझे बताओ सनम।
0: ओके, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: अब उसमें हो गया सबसे तो पहले आपको रेडियो संपूर्ण परिवार को, और दोस्तों हो गया खाना से मोहम्मद सादी जी, कोहे से उत्तम कुमार जी, राम रस्ते सब कुछ बगान से अरविंद कुमार, कला बलपुर से नरेश सोहनी, दीपक दासुदेव भंड ठाकरे, झुन्ना साहब भगन रैया दुरुप मिथुन, धनराज प्रसाद कुशवाहा, राम भगन राम भाई जी भैरूगंज से, हमारे नाम से जाने पहचान तमाम दोस्त को विशेष रचना दीजिए, मोहम्मद सलाय अंसारी मझवलिया को, रामचंद्र कुमार मुखिया, शंकर प्रसाद शंभू लगात, हमारे नाम से जाने पहचान तमाम दोस्त को, विशेष करके रेडियो इंजन से मुहबत करने वाला संपूर्ण परिवार का सुनाते हुए अभी आप फिर करेंगे। नमस्ते
0: जी। नमस्ते, रेडियो रमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone kindi bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
6: जी प्रणाम।
5: प्रणाम,
6: कैसे बने?
5: हम तो ठीक बने, रोगा बताइए, रोगा कैसे बने?
6: हमारे बाप भारती जी से होता न। अरे हमारे बाप तो भारती जी से होता न।
5: हाँ,
6: एक जैसा होकर जाता ना।
5: अच्छा,
6: उनका धीमा बार और थोड़ा तेज बार, इतना ही बस ना तो मिलता जुलता था।
5: तब और सब बताए, हाल चाल सुनाई?
6: ठीक बा, बहुत परेशान बने, कम से कम 300-350 बार कौन कहीं।
5: अरे बाप रे बाप, लागत लाइन बहुत ज्यादा।
6: 350 अब कहने की अब लास्ट करते नहीं है, अब एक बाद देखे 12:30 बजे तक चलो। फरमाइश का दिया ध्यान में नहीं किया वो।
5: कहे जी रो, फरमाइश ध्यान में नहीं किया?
6: हमारे कुछ अलग डिमांड रहा है।
5: तब गाना भुला गई नहीं का?
6: ना, हमारे कुछ अलग डिमांड सोच ले रही ना।
5: सब बताई,
6: हम सोच ले बनी की आज रोहड़े से सुनी, रोहड़े चॉइस से, वो ऐसे ना बताए कि कौन गाना सुना है। ये तो आई डिमांड भाई पूछे के भाई, सब लोग कहेंगे तो कहते करला कि अपना पसंद सुना दे, ताकि आज रोहड़ा पसंद से या रोहड़ा मुंह से सुने की चाहते नहीं की हो जाना।
5: जाने की बोल, तेरी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है।
6: हमारा सुना है ना, और जितना लोग सुनी सब लोग सुन ली।
5: बिल्कुल,
6: कुमार मिश्रा दिल्ली से।
5: चले फिर, ठीक बात, अब गाना प्ले कर दो। मुझे कॉल करनी है, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।
1: बिनु गोल छोटे नमस्ते।
0: जी जी, आपको प्रिपेयर चुके प्रणाम।
1: नगर छोटा नहीं पैर छुके पनाना कही जाला।
0: तो कहा अगलो भाई बता इतना चले लानू क्यों क्यों के पैर छू सकता।
1: गोपालगंज का मौसम कैसा हुआ?
0: जी जी, गोपालगंज के मौसम बढ़िया बा।
1: धूप निकल बा?
0: हाँ, एकदम हल्का धूप निकल बा।
1: भी हल्के धूप निकल बा। कल थोड़ा लेट से जुड़े ने, थोड़ा काम ज्यादा रह गए वही से।
0: चलिए, कल
1: तो हम तीन बजे जुड़े नहीं। और सब बताए?
0: और सब ठीक पावे।
1: खाना खा के हेलवानी की?
0: हाँ हाँ, खाना खा के हेलवानी।
1: कैसे आवाज बहुत सलो आवाज है?
0: ना ऐसा कोनो बात नहीं। कौन सा गाना का फरमाइश है?
1: गाना का फरमाइश बजा दूंगा, चंदन चंचल के बारे में बजा दूंगा।
0: गाना के को
1: सिगली सब ले रानी।
0: और गाना के सुना होंगे बा?
1: सबसे पहले रजा के सुनाए के बा।
0: अच्छा।
1: और मनोरमा दीदी के और रानी जी के सुनाए के बा, करिश्मा जी के, राघव जी के, उत्तम सोनी के और रेशमा जी के और सोनू सर के, पंकज सर के, अफसर सर के, सोनी दीदी के, दिव्या दीदी के और स्पेशल में डायरेक्टर सर के।
0: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: बालस्थान फोन मनोरमा दीदी पर नाम
7: दीदी
6: भारती दीदी है क्या रहुआ?
5: आवाज नहीं की पहचाना
6: ना है बदल के पहचाना
5: ना ना ऐसा कोनो बात नहीं है
6: ऐसा बात बोल ही बाबे
5: ना सब बढ़िया बार हुआ बताई रहुआ कैसन बानी
6: हम ठीक बनी खाना उना हो गल बा
5: हम
6: निर्मा दीदी कहाँ बनी तो गाना सुने गुआ हमारा एगो
5: बिल्कुल बता दी कौन सा
6: सिंह के बजा दी कौनो
5: और गाना क्यों के सुनवाई को करे
6: सबसे पहले रहुआ के और मनोरमा दीदी के सोने दीदी के और आफ्टर सर के और सोनू सर के गणेश के सिंहन और रानी दीदी और उत्तम सोनी और राघव जी रेशमा जी काजल जी और हम हमार बिटू भैया और हम माई पापा सबके सुनील जे छूटल बस सबके सब हरे कह देता
5: जी और गाना प्ले करता नहीं सुनत रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: थैंक यू।

0: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रुमकिन 90.4 एफएम में।
1: क्या हाल है मैम
0: जी? मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम तो अच्छे हैं। भारती मैम बोल रही हैं ना?
0: जी।
1: मैं अहमद अली सारिया वार्ड नंबर 1 है।
0: जी जी,
1: दिनों बाद में याद किए हैं। लगता नहीं है जल्दी कॉल, इतना ट्रैफिक जाम रहता है आपकी गाने की गाड़ी के पटरी पे, पूछिए मत।
0: कभी कभी हो जाता है,
1: बहुत कभी कभी नहीं, हमेशा। बहुत मुश्किल से कॉल लगता है। आज हमको सॉन्ग सुनना है,
0: बता दीजिए।
1: सॉन्ग सुनना है हमको, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: हाँ हाँ, सबसे पहले तो आप दोनों लोग को, आपको और मुनर्मा मैम को
0: जी,
1: और अख्तरी को, राघव जी को, कमरान भाई को और दिलीप भाई को, आज जो भी रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को है।
0: तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
1: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए। आज बज जाएगा क्या?
0: कल बजेगा।
1: कल बजेगा, ठीक है, ओके। शुक्रिया मैम गाना बजाने के लिए।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Bye.

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: to enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones. Subscribe to Filmi Gaane channel.
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।